107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 24 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मैं राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:01 हो रहे हैं और आपकी मित्र तरुश्री आप सभी के समक्ष उपस्थित है भक्ति भावों से परिपूर्ण कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। तो चलिए सदैव की तरह इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ।

श्रोताओं, भक्ति वो ज्योति है जो हमारे अंतर मन को प्रकाशित करती है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल सच्चे मन और प्रेम की आवश्यकता है। जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो जीवन में कोई कठिनाई हमें रोक नहीं पाती।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो। आस्था वो शक्ति है जो पत्थरों को भगवान बना देती है। ये विश्वास का वो दीप है जो जीवन की हर अंधेरी रात को रोशन करता है। जब आस्था गहरी होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा में स्वयं को पूरी तरह से अर्पित करना। जब हम पूरी निष्ठा से समर्पण करते हैं तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। आइए सुनते हैं प्रभु के नाम एक और मधुर भजन।

श्रोता, भक्ति में वो ताकत है जो जीव को संसारी विषय विकारों से सुख नहीं बल्कि आत्मा परमात्मा के सुख में पहुंचा देती है। परम सुख स्वरूप, परम रस स्वरूप परमात्मा के अनुभव में जगा देती है। और जब कृष्ण भक्ति की बात होती है तो बस यही आस होती है कि जरा पास में बैठो

श्रोताओं, अब समय हो रहा है कि ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यात्रा समापन से पहले एक मधुर भजन आप सभी के लिए पुष्पांजलि प्रोग्राम में। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद मैं लेकर हाजिर होंगी फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा के साथ कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ अतीत के आईने से लेकर देश और दुनिया की ताजा खबरें अब नहीं रहेंगी आपसे दूर। जी हाँ, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम इनसे मिलिए, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। रसबहार प्रोग्राम होगा सुबह 9 बजे से, और सुबह 9:45 पर सुनिएगा कुछ भक्ति गीत, प्रोग्राम होगा अर्चना। सुबह 11 बजे से सुनिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम हम नवाज, से आज आप सुनेंगे ऋतु और आशीष के साथ। म्यूजिक आवर प्रोग्राम लेकर आएंगे दिन में 3:45 पर होगा प्रोग्राम मेल मिलाप। शाम 4 बजे से सुनना ना भूलिएगा अपनी पसंद के सॉन्ग्स, प्रोग्राम होगा आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, और आपकी पॉजिटिविटी को डबल करने के लिए हम रोज लेकर आते हैं मॉर्निंग मंत्रा। आज के मॉर्निंग मंत्रा में हम लाए हैं महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस के विचार। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस का कहना था, सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जिस दिन व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब कुछ जान चुका है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान का सागर असीम है और हर नई खोज हमें विनम्र बनाती है। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। जनजातीय समुदायों का समग्र विकास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर विशेष ध्यान इस लक्ष्य का अभिन्न अंग है। इनका समग्र विकास ही देश को समावेशी विकास का स्वरूप प्रदान करेगा। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी सोशल मीडिया पर जागरूकता भरा मैसेज शेयर किया है, जिसमें लिखा है, खांसी अगर रुक नहीं रही तो सोचिए नहीं, जांच कराइए। अंदाजे पर नहीं, जांच पर भरोसा करें। 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नजदीकी आयुष्मान आरोग्य शिविर में जाकर आज ही जांच कराएं। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, अतीत के आईने में नजर डालें तो आज की तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की तारीख यानी 24 जून 1564 को महारानी दुर्गावती मुगलों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थीं। 24 जून 1863 में प्रसिद्ध इतिहासकार वीके राजवाड़े का जन्म हुआ। 24 जून 1869 को क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर, जिन्हें इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ। 24 जून 1963 भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये थी अतीत के आईने से खबरें, लेकिन अतीत से निकलकर अभी हम आ जाते हैं वर्तमान में। और वर्तमान में यानी कि अभी प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर की फ्रीक्वेंसी पर।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ

0: FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
1: वन जीरो टू पॉइंट टू FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और इस समय टाइम हुआ है सुबह के 7:33:48। आज है 24 जून 2026, दिन है बुधवार का। और जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग है जी।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की अहम भूमिका है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक समेत कई हस्तियां शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद हुर्मुज पूरी तरह खुल गया है। पहली बार एक दिन में 35 पोत पार हुए, जिनमें से 11 पोत भारत आ रहे हैं। इनमें कच्चा तेल, LPG, उर्वरक और अन्य सामान है। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
0: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
1: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं अपने कानपुर महानगर की कुछ खबरों की तरफ। CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में संचालित डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा कोर्सेज में एडमिशन के लिए लास्ट काउंसलिंग कल यानी 25 जून को होगी। ट्रैफिक से जुड़ी खबर की बात करें तो हमीरपुर में यमुना पुल की सड़क पर मरम्मत के कार्य के चलते कानपुर हमीरपुर रोड पर यातायात 26 जून की रात 8 बजे से 28 जून की सुबह 8 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। और किसी भी तरह के वाहन चलाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, अब उनका ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL रिन्यूअल की जो तारीख खत्म होने के 30 दिन बाद भी वैध माना जाएगा। इस दिशा में MV एक्ट में प्रावधान करके कानून भी बना दिया गया है, जुलाई 2026 से ये अमल में लाया जाएगा।

और दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हॉकी के खेल की बात की जाए तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल यानी मंगलवार को 1 गोल से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से पटकनी दी। इस जीत के साथ ही भारत ने प्रो लीग के लंदन चरण की शानदार शुरुआत की।

और दोस्तों, अब मौसम से जुड़ी खबर की बात की जाए तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सुबह हुई झमाझम बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 41 और मिनिमम टेम्परेचर 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के कारण 25-26 जून को गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है और लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार हैं।

दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। फिलहाल मुझे यानी आज आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें समाचारों के साथ। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगू के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा

0: दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून।

0: जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मॉनसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
2: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamam bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other.

0: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए।
1: विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत दुनिया का एक बड़ा पावर हाउस बन चुका है, जो अब सिर्फ विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खुद नई तकनीकें बना रहा है। अंतरिक्ष और रॉकेट तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोटेक और क्लीन एनर्जी, रिसर्च और पेटेंट में तो भारत तीव्र गति से अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और नवाचार को स्थानीय समस्याओं के समाधान से जोड़ने के लिए जय अनुसंधान का नारा दिया और अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सुनिए ये प्रेरक भेंट वार्ता। वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से भेंट कर रही हैं दीपशिखा गुप्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, प्रोफेसर शर्मा का परिचय आप सबको दे दूं। आप IIT कानपुर से BTech करने के उपरांत पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने MTech किया केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके पश्चात बफेलो यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया। साइंस के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हुए आपने नैनो साइंसेज, कोलाइड्स आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यूनेस्को पदक आदि के साथ साथ 2025 में भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ये तो हुआ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी का परिचय, लेकिन आज उनके बारे में और जानेंगे, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शर्मा आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर दीपशिखा जी।
2: प्रोफेसर शर्मा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी साइंस के क्षेत्र में?
3: तो साइंस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, स्कूल डेज से साइंस में, मतलब साइंस की फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था मुझे उस वक्त से। मैं इनफैक्ट साइंस सब्जेक्ट मैंने लिए थे, 11th में मैं बोर्ड का टॉपर था, तो उस वक्त लोग कहते थे कि IAS बनना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में था और मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च और टीचिंग में। तो मैंने कहा कि मुझे टीचर बनना है, तो पहला मैं सोचता था कि फिलॉसफी करूंगा, तो लोगों ने कहा कि अगर फिलॉसफी करोगे तो टीचर बनोगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करके बन जाएंगे टीचर, डजंट मैटर। ये नहीं है कि साइंस में कुछ बहुत एक्सेप्शनल चीज है, हम जो भी चीज जिसमें हमारी रुचि हो उस पे पूरा ध्यान देके थोड़ा उसमें अपना पूरी तरह से कर्तव्य की तरह उसको करेंगे तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी और हम खुश भी रहेंगे। तो साइंस में जैसा मैंने बताया लगाव था, क्योंकि मुझे नए शोध में इंटरेस्ट आता है और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि और चीजों में भी बहुत ज्यादा शोध होता है, मतलब नई चीजें सीखने की, नई चीजें खोजने की जितनी संभावना है मुझे साइंस में दिखी उस वक्त मुझे उतनी नहीं दिख रही थी और चीजों में, तो इसलिए मैंने साइंस किया। और साइंस में भी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट खाली एक चीज समझने में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजों को समझ सके साथ साथ में। तो जैसा कि मैंने BTech, MS और PhD केमिकल इंजीनियरिंग में किया, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत तरह तरह की चीजें की, तो लोग सोचते थे कि मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे मैं कि कंडेंस

मेटाफिजिसिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे कि मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ. इनफैक्ट इन द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंट्री मैं मटेरियल साइंस के अंतर्गत ही लिखा हुआ है मेरा नाम. तो जैसे कि पूरे देश के अंदर मैं 15वां साइंटिस्ट हूँ, 15वें नंबर पे हूँ मटेरियल साइंस के अंदर. तो ये मैंने वहीं से देखा, मैंने उनको नहीं बोला कि मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, पर उन्होंने मतलब कुछ भी समझ के अपना वो उसमें किया. ऐसे बायोमेडिकल साइंस में कार्य किया, नैनो टेक्नोलॉजी में कार्य किया, और मैंने कुछ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में भी रिसर्च किया. तो इस तरह से जहां भी आपको क्यूरियोसिटी हो, जहां भी आपको लगता हो कि ये नई चीज है, उसमें आपकी रुचि हो, तो आप उसमें कार्य कर सकते हैं. वैसे भी आजकल जो साइंस है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है. पहले जो हुआ करता था कि भाई एक ही, जैसे आप केमिस्ट हैं, फिर कहते किस तरह के केमिस्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, फिजिकल हैं, ग्रीन हैं, रेड हैं, क्या हैं, तो उसमें ही हम सिमट कर जाते थे. पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा का और जो मतलब कार्य करने का, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रॉब्लम को सॉल्व करना. उसका उद्देश्य नहीं है कि मैं कौन हूँ. तो अगर मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ लेकिन मैं पानी साफ नहीं कर सकता, तो मेरा कोई उपयोग नहीं है. तो अगर हो सकता है कि कुछ चीजें मैं जानता हूँ कि पानी को कैसे साफ किया जाए, लेकिन मैं सब चीज नहीं जानता पानी को कैसे साफ किया जाए. तो कुछ इसमें आएगा फिजिक्स का, इसमें आएगा बायोलॉजी का, कुछ इंजीनियरिंग आएगी, कुछ इनफैक्ट सोशल साइंस आएगी. क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने एक सोल्यूशन खोज लिया पानी को साफ करने का, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य में आएगा. उसकी इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ेगी, उसका मार्केट देखना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में क्या है वो देखना पड़ेगा, उसका डिजाइन देखना पड़ेगा, उसकी एस्थेटिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंगल देखना पड़ेगा. तो ये सब जब तक नहीं होगा हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. खाली ये कहना कि बस मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर ही है, तो उससे मतलब की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती. इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा. मेरा अनुभव ये रहा कि चाहे आप उसको फिलोसॉफी कहें या हिस्ट्री कहें, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, उसके सीखने के अंदर इंटरेस्ट है, और मैं जो भी कार्य करता हूँ उसको भी प्रभावित करता है. अगर मैंने कहीं बाहर से सीखा तो वो जो चीज है जो उस क्षेत्र में अभी तक लोगों को पता नहीं है, बाहर वालों को पता है, उस क्षेत्र में पता नहीं है, तो मैं उसको नया कोई आइडिया बाहर से लेके आऊं, तो उसमें उससे ज्यादा मतलब अच्छे शोध होता है, उससे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होता है. तो मैंने हरदम यही किया है. तो मैं हरदम डाइवर्सिटी, विविधता जिसको कहते हैं, तो चाहे वो ज्ञान में हो विविधता, चाहे वो हमारी नॉलेज में हो, चाहे वो हमारे आसपास किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो विविधता जेंडर की हो, वेमेन मैन सभी को मिलके जो प्रॉब्लम डिफाइन और सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे वो एज की हो. तो ये है कि जैसे कमेटी के अंदर क्या ये क्यों है कि सिर्फ 50 साल के ऊपर लोग ही होते हैं कोई भी कमेटी के अंदर. मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था तो मैंने इसके लिए रूल बना दिए थे कि हर कमेटी के अंदर कम उम्र के भी हो, ज्यादा उम्र के भी हो, जेंडर भी हो उसके अंदर, जो वेमेन साइंटिस्ट हैं वो भी हो, मैन भी हो, और मतलब कि जो दूसरे मतलब रीजन्स के हैं जिनकी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सभी हो. तो उसका ये कारण है कि हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो एक तरह के लोग ही नहीं समझ सकते, उसके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए. तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कब आएंगे, जब हमें थोड़ा टॉलरेंस हो और लोगों के लिए, न केवल ये कहें अरे इसको क्या आता है, ये तो बहुत यंग है, इसको क्या पता है. वो कहते हैं इस तरह के जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं जिनको स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, उसके कारण हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते. तो मेरा लाइफ का लेसन शुरू से ही रहा कि विविधता. अब उसका कैसे डेवलप हुआ, मेरे पिताजी जो थे वो इरिगेशन में इंजीनियर थे, वो थोड़े ज्यादा ही ऑनेस्ट थे, तो उनका ट्रांसफर हर साल में हो जाता था. तो मैंने मतलब 11वीं क्लास करने तक करीब 8 स्कूल चेंज किए. तो कभी इधर पढ़े, कभी उधर पढ़े, कभी हिंदी में पढ़े, कभी इंग्लिश में पढ़े, कभी सेंट्रल बोर्ड में पढ़े, कभी राजस्थान बोर्ड में पढ़े. हर साल नए दोस्त होते थे, कभी कोएड था कभी नहीं था, नए टीचर होते थे, उनकी पढ़ाने की शैली अलग अलग थी सबकी. तो लेकिन उससे मुझे कभी परेशानी नहीं हुई. कहने का मतलब यह है कि उससे विविधता का मतलब समझ में आया, कि बजाय ये कहने के कि नहीं नहीं मुझे एक ही तरह की चीज पसंद है, एक ही तरह का खाना पसंद है, एक ही रेस्टोरेंट पसंद है. आजकल क्या मैं देख रहा हूँ कई जगह कि हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड हैं, 12वीं क्लास तक साथ साथ रहे, फिर वो कॉलेज भी साथ साथ चले गए, और उसके बाद ठीक है अलग अलग जगह चले गए, लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विविधता को समझने के लिए. तो उसमें क्या होता है कि अब जो लोग हमारे जैसे नहीं है उनसे बात नहीं करेंगे तो हमें कोई नई चीज सीखने को नहीं मिल सकती. तो जो लोग 17 साल साथ साथ रहे उन्होंने एक दूसरे से सीखना बंद कर दिया, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे की तरह ही थे, उनकी एज भी बराबर थी. अच्छा मैंने ये भी देखा जिनकी एज बहुत अलग हो हमसे, उनसे अच्छा संवाद स्थापित नहीं कर पाते. मैं 3 साल अपने नाना के साथ रहा, तो वहां पर वो 60 साल के ऊपर लोग रहते थे सारे, और मैं था 6 साल का, तो मेरे को उनसे बहुत कम्फर्ट था. तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा ये तो बुढ़ा आदमी, ऐसे कैसे बात करेंगे. अभी जो मेरे दोस्त हैं वो 5 साल से लेके 95 साल तक के हैं, ओके, उन्हीं से मुझे वो सीखने को मिलता है. और खासकर पीपल 20s में है, 30s में, 40s में, माई यंगर फ्रेंड्स, उनसे मुझे

0: साइंस भी सीखने को मिलती है, अब एआई है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो रही है, कुछ भी है, तो मैं हरदम उतना जानता हूँ जितना हमारे यंगर लोग जानते हैं। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई देखो, आजकल लोग बहुत ये कहते हैं कि मैं जेन जी हूँ, मैं जेन अल्फा हूँ, मैं मिलीनियल हूँ, मैं बेबी बूमर हूँ, आप बेबी बूमर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बना लिया है, मतलब उस जैसा कि ऐसे है कि लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ा आदमी है। मैं कहा ऐसा है कि ओल्ड आदमी कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आई एम यंग एंड यू आर यंगर, और भी लोग जो मुझसे, वो यंग है, मैं यंगर हूं और मेरे से यंगर है। तो विविधता को समझने का मतलब ये है कि हम उनका स्टीरियोटाइप नहीं बना लें। तो अगर ये हम समझ लेंगे ये आदमी बहुत यंग है, ये बुड्ढा है, ये औरत है, ये आदमी है, तो उनसे जो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो उसमें हमारा जो संवाद है वो ना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है। तो ये सबसे गहन जो चीज मैंने दुनिया में देखी है, समझी है, सोची है, वो सिर्फ यही है कि चाहे साइंस हो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, लेकिन हमें डाइवर्सिटी, विविधता जब हम समझेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उसके द्वारा एक्साइटमेंट होगा, उसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये सबसे अहम बात है सोसाइटी में। हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, भारत में हरदम ऐसा ही था कि हमारी कल्चरल रिचनेस डाइवर्सिटी से आई, जबकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे वो मोनोलिथ बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यही स्टैंडर्ड है, ऐसा ही रंग हो, ऐसा ही मतलब की परिपाटी हो, यही कल्चर हो, इसी भगवान को माने, इसी बुक में विश्वास करें, तो वो सभ्यता अलग है। हमारी जो सभ्यता थी वो सभ्यता बहुत स्टेबल है, क्योंकि डाइवर्सिटी के द्वारा स्टेबिलिटी आती है, और जो एक दूसरे की मतलब नकल की हुई सोसाइटी होती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती कभी, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड हो, जब कोई नया चैलेंज आएगा वो कॉलेप्स हो जाएगी। डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया, तो सामान्य भाषा में हमारे उन लिसनर्स के लिए क्या आप बता सकते हैं कि इस फील्ड में क्या काम आपने किया और क्या प्रभाव रहा उसका?
0: तो पहले मैं बताऊं कि नैनो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो का मतलब है कि एक मीटर लें, नैनोमीटर, एक मीटर लें उसका एक बिलियन टाइम स्मॉलर, छोटा उससे एक बिलियन टाइम स्मॉलर जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। तो कई चीजें जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा उसको देखते हैं, वो नैनो होती है। अगर उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टी समझें उसको नैनो साइंस बोलते हैं, और उसका उपयोग करें किसी चीज के लिए, जैसे कि आजकल हम नैनो ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, जो है चिप्स बनती हैं, इस सब के अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग होता है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसी भी नैनो जो मीटर की चीजें हैं, नैनोमीटर हो, 10 नैनोमीटर हो, 100 नैनोमीटर हो, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको कैसे समझें कि वो क्या कार्य करती हैं, उनको कैसे उपयोग में लाएं, तो ये सब नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा संभव होता है। मेरी खुद की रिसर्च जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में थी उससे रिलेटेड है नैनो फैब्रिकेशन, नैनो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। आप कोई छोटी चीज बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, वो तो आप देख भी नहीं सकते, आपको कोई मशीन ड्रिल लेके नहीं बना सकते, तो उसके लिए वो नैनो ड्रिल क्या चीज है, उसमें कोई भी आपको कोई छोटी चीज बनानी हो, उसको बनाने के दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो उसके अंदर आप कोई मशीन टूल यूज करें, या चाहे लेजर वेजर यूज करें, कुछ रेडिएशन यूज करें, उसके द्वारा बनाएं। एक दूसरा मेथड है बनाने का, उसको बोलते हैं सेल्फ असेंबली। जैसे कि आपने देखा कि नेचर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर वृक्ष हो, कुछ भी चीज है, तो उसको कोई बना नहीं रहा, वो अपने आप बन रही है, और उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सेल हैं, सेल के अंदर भी चीजें हैं और भी छोटी हैं नैनो स्केल की, उनको मतलब कोई मशीन के द्वारा नहीं बन रही, अपने आप बन रही है, उसको कहते हैं सेल्फ असेंबली। तो सेल्फ असेंबली जिसके अंदर नॉलेज भी हो, जैसे डीएनए है उसके अंदर नॉलेज है कि वो सेल्फ असेंबल कैसे होगा, तो हम इस तरह के नए मेथड बनाए। तो मैं सेल्फ असेंबली में कार्य करता था, तो ये चीज है कि हमने बहुत सारे कुछ चीज बनाई लेकिन वो सेल्फ असेंबल होके कोई दूसरी चीज बन गई जो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी मशीन को यूज किए। तो इस पे कार्य किया था, मेरे ज्यादातर कार्य इस पे है। और ये समझना कि जब चीजें बहुत छोटी होती हैं तो किस तरह का बर्ताव करती हैं, वो किस तरह का बिहेवियर उनका होता है, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये समझना, इसकी जो थ्योरीज होती है उस पे मैंने कार्य किया था। और फाइनली मैंने कार्य किया बायोसेंसर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए। बायोसेंसर मतलब ऐसे कि बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्शन, जब आपके पूरे बॉडी के अंदर 2-4 ही सेल हो कैंसर के, तो उनका पहले पता करना कि भाई इसकी संभावना है कैंसर होने की, इसके पहले कि वो बनना शुरू हो जाए, तो इसके लिए बहुत सेंसिटिव बायो सेंसर की जरूरत होती है। तो वो हमने बहुत तरह के बायो सेंसर बनाए नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित।
1: प्रोफेसर शर्मा, अभी बहुत अच्छी बातें आपने बताई अपने कार्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जिस पर आपने रिसर्च किया, जिस पर आपने कार्य किया, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक गीत का, तो हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: हाँ, एक मेरा गीत था बहुत प्रिय।

0: इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद एक बार फिर से लौट आए हैं अपने कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से, जिन्हें 2025 में भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। साइंस के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। और आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर शर्मा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बतौर सेक्रेटरी एक लंबे समय तक कार्य किया और कई सारी पॉलिसीज के भी आप मेकर रहे वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है जो करंट पॉलिसीज हैं इस समय भारत में, वो विज्ञान के प्रसार और प्रचार में कहाँ तक सहायक हैं?
1: बेशक बहुत सहायक हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे देश को इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बदल रहा है, देश बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है। तो जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, मैंने 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था 2015 की जनवरी में। उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ जो करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। तो उसके द्वारा हमने बहुत सारी सुपर कंप्यूटर की चीजें भारत में ही बनाना शुरू की, और उसका लक्ष्य है कि करीब 50 सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर विकसित करके उनको एस्टेब्लिश करना। उनमें से 20 से ज्यादा हो भी चुके हैं और अभी कार्य चल रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम प्रिपेयर्ड रहे, कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। दूसरा था मिशन जो कि बहुत अहम था, करीब 6 साल पहले लॉन्च हुआ, मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दूसरा है उसका, क्योंकि साइबर फिजिकल का मतलब है कि साइबर लाइक AI और फिजिकल लाइक फिजिकल मशीन, उन दोनों के संगम से जो चीज बनती है, मतलब इंटेलिजेंट मशीन, उसके लिए मिशन शुरू किया, वो भी 4,000 करोड़ रुपए का। अब उसको 6 साल हो गए। तो ये जो AI अभी शुरू हुई है, तो हमने शुरू से मतलब 8 साल पहले इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि ये हो जाएगी, तो कि हमें इसमें समय नहीं गंवाना।

0: पड़ा। पिछले 6 साल के अंदर उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह इस मिशन के द्वारा डेवलप हो गए। अब वो आगे बढ़ेंगे, मतलब AI तो बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो हमने उसके लिए जो फाउंडेशन, जो नींव थी, उसकी शुरुआत कर दी। इसी तरह से तीसरा मिशन शुरू हो गया, वो है क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। वो बहुत तेज से उभर के आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत कार्य किया गया था पहले, और अब वो है करीब 6,000 करोड़ रुपए का। तो उसके द्वारा जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन, और ये जो सारे अपने बैंकिंग वगैरह होती है उनको बहुत चैलेंज हो जाएगा अगर उनके कोड है जो टूटने लग गए फॉर एग्जांपल, तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब जो दिशाएं हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी मिशंस के द्वारा डेवलप की जा रही है, वो सब फ्यूचरिस्टिक है, तो जिससे कि देश प्रिपेयर्ड रहे उसके लिए। उसके साथ साथ ही अभी एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है, वो है 1,00,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है जिसको RDI फंड बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। वो क्या होगा कि इंडस्ट्री जो है वहां पे रिसर्च हो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तक हम सोचते थे सिर्फ यूनिवर्सिटी IIT में रिसर्च होगी, लेकिन इंडस्ट्री में जो रिसर्च होती है वो बहुत उपयोगी होती है, तो उसको भी आगे बढ़ावा मिलना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा नए प्रोडक्ट आएंगे, उसके द्वारा हम कॉम्पिटेटिव रहेंगे वर्ल्ड के अंदर। तो अब है जो 20,000 करोड़ रुपए पर साल 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, उसके द्वारा मुझे लगता है कि इससे बहुत परिवर्तन आएंगे। तो इस तरह बहुत सारे मतलब कार्य हो रहे हैं, काफी मंत्रालय हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनका बजट भी बढ़ता जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट भी पहले से काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं और उनकी संख्या भी बढ़ गई है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया IIT कानपुर में 1990 में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर, तब हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 6 PhD स्टूडेंट थे और फैकल्टी मेंबर 20 थे। फैकल्टी मेंबर 30 हो गए, लेकिन PhD स्टूडेंट 100 के ऊपर। मतलब कि रिसर्च का जो महत्व है वो बढ़ता गया। पहले रिसर्च का महत्व बहुत कम था, तो 90 के दशक के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, न रिसर्च के लिए पैसा था, न कल्चर थी, कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद ये बढ़ता गया, तो अब ये बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से, और बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसने बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के विकसित हुआ हो। तो ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिना साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ भी विकास संभव नहीं है, और है जो हम वापस कॉलोनियल टाइम हो जाएगा अगर मानव पीछे छूट गए तो।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रोफेसर शर्मा, लंबे समय तक IIT कानपुर में आपने अध्यापन कार्य भी किया, बहुत सारे बच्चों के आप रोल मॉडल भी रहे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कई सारे बच्चों को आपने गाइड किया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके आइडियल कौन थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे?
0: देखिए, मेरा कोई एक आइडियल कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं हीरो वर्शिप में कभी भी विश्वास नहीं किया, लेकिन हर आदमी गुरु है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी से ज्यादा सीखा, किसी से कम सीखा, किसी से नहीं सीखा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ऐसा बनना है, आपको अपना बनना है, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, एंड सो हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर आदमी की एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, तो आप किसी की नकल नहीं कर सकते। अच्छा क्या है, मैंने प्रॉब्लम ये मेजर देखी है, सब लोग कहते हैं गांधी जी की बड़ाई करते हैं, लेकिन कर कोई नहीं सकता। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है, क्योंकि मैं कहता तो हूँ कि ये चीज बढ़िया है, इसका मुझे अनुकरण करना है, लेकिन कर नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या होता है कि थ्योरी एक हो जाती है और प्रैक्टिकलिटी और एक्सपीरियंस एक हो जाता है। तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हालांकि बचपन में मेरे कुछ हीरो थे, और मेरा सबसे बड़ा हीरो था रुद्र, महाभारत में है रुद्र। तो मेरे हीरो, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई अर्जुन होगा, शिव होंगे, या कि कृष्ण होंगे, या कुछ उस तरह के ज्यादा होते हैं, राइट, लेकिन वो बहुत अलग तरह के करेक्टर थे रुद्र। उनका नाम शायद उन्होंने सुना हो, नहीं भी सुना हो, प्रोटो शिवा। तो जैसे कि शिव का नाम ऋग्वेद में नहीं आता, रुद्र का नाम आता है खाली। तो ऐसे है कि बट दोज आर मिथिकल हीरोज। तो रियल सी व्हाट हैपेंस इज दिस, इन रियल लाइफ आप किसी को हीरो बनाते हैं, उसको पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये तो कितना बदमाश है, देखो ये तो हमारी ही लिव अप टू आवर आइडियल्स। तो पहले आपने उसको हीरो बनाया, फिर अपने आइडियल उस पर थोप दिए, फिर कहा कि ये आदमी हमारे हिसाब से खरा नहीं उतरता, और न आप उसका अनुसरण कर पाए, न वो आपका अनुसरण कर पाया। मेरा मानना यह है कि देखिए, आपको अच्छी चीजें, इफेक्टिव चीजें बहुत सारे सोर्सेस से सीखने को मिलती हैं, और वो सब इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, वो सब हमारे हीरो हैं। तो अगर मान लो कि ये रिक्शा वाला है, मैंने देखा कई रिक्शे वालों को, तो एक बार मैंने देखा, मेरे को बचपन की बात है, नहीं मैं बीटेक कर रहा था, मैं गया था सिटी, मैंने देखा एक रिक्शे वाला बहुत तेज धूप के अंदर, बहुत गर्मी के अंदर, ऐसे एक हैंडल पे सिर लगा के और पांव गद्दी पे रख के सो रहा था। मैंने कहा देखो, दिस मैन इज सो सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। फिर मैंने ये इस पे जाया, रिसर्च किया कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है लाइफ के अंदर। हम सब ये सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस के लिए हम ये करेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगी, पर हम गलत सोच रहे हैं। तो अच्छा, अभी मैं बताऊं आपको, एक कॉन्फ्रेंस में गया दिल्ली में, उन्होंने बुलाया, वो कॉन्फ्रेंस ही हैप्पीनेस पे थी। तो सब लोग, अपने अपने विद्वान लोग विचार प्रकट कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो कोई प्रोफेसर था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कुछ पेज थी, सेलिब्रिटी थे, कोई था, ये सब है ना। वो बहुत गंभीर बातें कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो मेरा नंबर आया तीसरा नंबर, तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि पहले आप सब लोग खुश हो जाओ, फिर बात करना हैप्पीनेस की। आई सी वेरी सीरियस पीपल हियर। मैंने कहा यहाँ पे कोई चीयरफुल तो दिख ही नहीं रहा मुझे, ये ऐसा अपनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है। मैंने कहा पहले आप हैप्पीनेस सोचो। फिर मैंने कहा कि देखिए अभी मैंने उनको दो चार जोक सुनाए तो उन सबको पसंद आए। फिर मैंने कहा देखिए अब मैं जा रहा हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए, आई हैव टू मीट माय फ्रेंड्स नाउ, आप अपनी कॉन्फ्रेंस करो और मैं अपने फ्रेंड्स के जाके बैठता हूँ। सी द प्रॉब्लम नाउ विद आवर नॉलेज इज वेरी बुकिश एंड देन इज रीइन्फोर्स्ड। सी अपनी बुक्स कहती है कि आप हीरो कौन होने चाहिए, तो वो बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं कि ये है हीरो, वो है हीरो, बाकी लोग बढ़िया नहीं है। सो इससे किसी का आज तक पर्पस सॉल्व नहीं हुआ हीरो बनाने से। मैं तो मतलब कि जो बॉलीवुड के हीरो उनको नहीं जानता। अभी क्या हुआ कि मैं एक पार्टी में गया था, 10-1 लोग ही थे उसमें, एक्सक्लूसिव पार्टी थी। तो मैं एक आदमी मैं बगल में खड़ा था, मैं उसे पूछा आप क्या करते हैं, तो बोला मैं सिंगर।

0: समझें कि वो ह्यूमन है और उनसे आप जो कुछ सीख सकते हैं, जो उनसे कार्य करवा सकते हैं, वो बेशक आप करवाइए।
1: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि लेट पीपल रिमेन ह्यूमन और वी शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो चलते चलते प्रोफेसर शर्मा, हम चाहेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, बहुत से छात्र हैं जो विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए कुछ एक संदेश हम चाहेंगे आज आप साझा करें।
0: देखिए, जिज्ञासा जो है ना, क्यूरियोसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के विज्ञान में। हर नॉलेज एक्चुअली विज्ञान है, तो हमने उसको अलग कर दिया। आजकल वो सोचते हैं कि एक विज्ञान है, एक फिलॉसफी है, ऐसे सोचते हैं लोग, वो गलत है बिल्कुल। हमारी सारी जो नॉलेज है वो विज्ञान है, और पहले उसको उसी तरह से लिया जाता था। हमारी संस्कृति में भी हर चीज को डिबेट करके, रेशनली उसको डेटा के द्वारा, उसको एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसे तोला जाता था। ऐसा स्टैटिक नॉलेज कोई नहीं थी। तो ये जो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी है टू लर्न मोर, वही सब कार्य करती है। पैशन, क्यूरियोसिटी कि भाई ये खाली मेरी जॉब नहीं है, ये खाली मेरी जॉब नहीं है, जॉब भी है, लेकिन उसके अलावा क्या मैं कि एक व्यक्ति के रूप में क्या मैं डेवलप हो सकता हूँ? तो मेरा दिमाग कैसे डेवलप होगा? मेरा दिमाग सिर्फ इसे डेवलप होगा कि मेरे को नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। नई चीजें सीखने को तभी मिलेगी जब मुझको क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे कार्य करता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। एंड फाइनली द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो साइंस, क्योंकि साइंस जो हम पढ़ते हैं वो कभी नहीं बताएगा कि इस लाइफ का मतलब क्या है। तो उसका मीनिंग ओनली वी ब्रिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज नो मीनिंग, इज व्हाट यू नो मीनिंग दैट वी ब्रिंग टू लाइफ, ये दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग। तो हाउ डू वी कल्टिवेट दैट, कि इसका क्या मतलब है, यानी इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका विजडम क्या है। तो ये सब करने के लिए हमें क्यूरियोसिटी की जरूरत है। और आपको अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो जिंदगी में इंपॉर्टेंट है वो ये है, पैशन, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ। बाकी चीजें बताई जाए, डाइवर्सिटी है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपको अगर सीखना है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप अपने ऐसे लोगों से नहीं सीख सकते, उसके दूसरे तरह के लोगों से सीख सकते हैं। तो ये सब किस लिए है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने, और आज आपसे मिलकर हमें लगता है ना केवल विज्ञान बल्कि जीवन और जीवन के अर्थ को भी समझने में कहीं ना कहीं हम सभी को सहायता मिली है और मिलेगी। फिलहाल आज हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं कि उनके कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, के वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसे उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता द्वारा की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए।

यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर। एक बार फिर शुरू हो गया एक नया दिन, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ। और एक बार फिर मैं यानी आज आशीष लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम रसबहार। आज रसबहार प्रोग्राम में हम बात करेंगे सफलता की। जी हाँ दोस्तों, आज हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का असली मतलब क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे।

जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। जी हाँ दोस्तों, वो बात है सफलता की। जब भी सफलता की बात होती है तो हमारे मन में किसी बड़े अधिकारी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन या किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर उभर आती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जिसके पास धन, पद, प्रतिष्ठा और पॉपुलैरिटी है वही सफल है। लेकिन क्या सफलता की डेफिनेशन इतनी ही है? अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि सफलता का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग है। एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना सफलता है। एक किसान के लिए अच्छी फसल उगाना सफलता है। एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स को योग्य बनाना सफलता है। एक माँ के लिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना सफलता है। यानी कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को सार्थक रूप से पूरा करने का नाम है। फिलहाल अभी हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सुनवाएं एक अच्छा सा गाना। वन जीरो टू पॉइंट टू एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रसबहार।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज रस बहार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है। दोस्तों, आज के समय में लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमक दमक को देखकर लगता है कि सफलता का मतलब केवल पॉपुलैरिटी और वेल्थ है। सच्चाई यह है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक सफलता उसकी बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक संतोष से मापी जाती है। वैसे जब हम कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं तब भी तो हमें संतोष मिलता है, तो देर किस बात की, चलते हैं अगले गाने की ओर।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रसबहार, और आज रसबहार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि सफलता यानी कि सक्सेस का सही अर्थ क्या है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, ऊंचा पद है, लेकिन उसकी लाइफ में शांति नहीं, रिश्तों में अपनापन नहीं और मन में संतोष नहीं है, तो क्या उसे वास्तव में सफल कहा जा सकता है? शायद नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना काम करता है और अपने परिवार के साथ खुश है और रात को चैन की नींद सोता है, वो कहीं ज्यादा सफल हो सकता है। यानी कि सफलता का बहुत पैसे, बड़े घर और ऊंचे पद से कोई लेना देना नहीं।

दोस्तों, सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं। ये छोटे छोटे प्रयासों, निरंतर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो आखिर में सफल जरूर होता है।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रसबहार, और आज रसबहार प्रोग्राम में हम ढूंढ रहे हैं सफलता का असली मतलब। दोस्तों, सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है मानवता। अगर हमारी उपलब्धियां केवल हमारे लिए हैं और उनसे समाज या दूसरों का कोई भला नहीं होता, तो उनकी इंपॉर्टेंस लिमिटेड रह जाती है। लेकिन जब हमारी सफलता दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लाती है, तब सफलता की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के अगले गाने की ओर।

दोस्तों, सफलता कोई आखिरी मंजिल नहीं है। लाइफ में हर अचीवमेंट के बाद एक नया टारगेट हमारा इंतजार करता है। इसलिए सफलता को केवल एक मंजिल के रूप में नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली जर्नी के रूप में देखना चाहिए। ये जर्नी हमें बेहतर इंसान बनाती है, हमें एक्सपीरियंस देती है और जीवन का सही अर्थ समझाती है।

इस गाने के साथ ही आज का रसभर प्रोग्राम अब यहीं पर वाइंड अप होता है। फिलहाल मैं यानी अजय आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में विविधा प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 9:45 हो चुके हैं और विविधा के अंतर्गत हम लेकर हाजिर हैं भक्ति गीतों का प्रोग्राम अर्चना। अर्चना कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं महेंद्र कपूर के गाए इस भजन के साथ।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में अग्निकांड की घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी इमारत का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे मंजूरी मिली है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या कोई अन्य व्यावसायिक कार्य को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग संस्थानों का सर्वे करने का निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिजली सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की जांच भी शामिल है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत राज्य सरकार आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम में अवसंरचना, आईटी और आईटी आधारित सेवाएं, वैश्विक क्षमता केंद्र और प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश पर आधारित 3 सत्र होंगे। इन सत्रों में संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस रोड शो का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी, निवेशक अनुकूल नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में उभरते अपार व्यावसायिक अवसरों को बेंगलुरु में निवेशकों और उद्योगपतियों के सामने प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय सीयूटी 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी पद पर 3,446 अभ्यर्थियों का चयन किया है। आयोग ने बीते वर्ष 13 जुलाई को इसकी लिखित परीक्षा कराई थी। कल आयोग ने इसका परिणाम घोषित किया। कृषि निदेशक रिक्त पदों के अनुरूप जनपदों में इन अभ्यर्थियों को नियुक्त करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुभकामनाएं दी। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा ने की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत में कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम है सुगंध माटी की।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा,
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

राम राम प्रणाम श्रोता पंचन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर। 10 बजकर हो गए हैं मिनट 4 और आज है बुधवार और हम अंजू शुक्ला लेके आए गए हैं कार्यक्रम सुगंध माटी के एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया लोकगीत। और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अपन पूर्वांचल, सब जगह की खुशबू, मतलब माटी की खुशबू समेट के ये कार्यक्रम में आप सबके लिए अब से लेके 11 बजे तक आपके मनोरंजन के फुल इंतजाम। तो बस सुनत रहा है और ये पहला गाना कल्पना पटवारी की आवाज में, बहुत बढ़िया भोजपुरी लोकगीत।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अब भैया धुन से तो समझ ही गया हुआ कि गाँव नहीं कौन कौन सी है राजस्थानी के बहुत बढ़िया ही मेहंदी गीत। भैया देखा शादी ब्याह के माहौल और मांगलिक कार्यक्रम के माहौल फिर शुरू हो गवा है। बहुत जनन के घरे में शादी पड़ी होए, ब्याह पड़ा होए, हल्दी मेहंदी संगीत कुल के तैयारी करे कहा है भैया। तो तैयारी में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट का होत है बतावा, वो होत है कि डांस तरीके मटकब चटकब मजा आवत है भाई। गीत संगीत और नाच गाना ना हो तो जोन त्योहार है, फंक्शन है, शादी ब्याह का माहौल है, रीति रिवाज रसम ये सब भाई अधूरा अधूरा लागत है ना। तो चला ये मेहंदी गीत न तैयारी करे हुआ तो ये पर डांस के प्रैक्टिस कर ले जा।

बस यही तरह कुतल मंगल सहनाई बाजत रहा है, शुभ शुभ घड़ी सबके जीवन में, सबके घर आंगन में आवत रहा है, बरसत रहा है खुशियाँ अपार। ये तो शुभकामना हम सबके तरफ से आप सबके लिए हमेशा हमेशा रहा थे। केहू के जीवन में कौनो दुख के घड़ी अवे न करे, और अचानक आवे वाली तकलीफ तो बिल्कुल नहीं, बस भगवान की कृपा सब पर बनी रहा है। ये तो शुभकामना ये हम सभी आशीर्वाद दी थे, और शुभकामना आप सबों की तरफ से हमों को मिलती है। भैया कहे से कि 24 साल हो ही गए, हाँ यही तो न यही स्टूडियो में बैठी रहे 24 साल पहले, आज की तारीख रही 24 जून 2002, आई रहे बिल्कुल मासूम मासूम से आए, मतलब मासूम तो हम अब ही एकदम हंसत खिलखिलात वही तरह, लेकिन भैया वह तर वह टाइम के बात करी तो इतना नहीं बोलत उलत रहे, हाँ लेकिन जब हेमा बैठे ई जौन हार्ट सीट ये है तो हेमा तो बोलब जौन शुरू करे तो फिर चुप पे नहीं भाई, 24 साल से बोलती नहीं यही। अब ऐसे जो उन्हें आप सबके प्यार मिलत है ना तो हमारा हौसला बढ़ जाते, और देखा बहुत जने शुभकामना देता है उन सबके धन्यवाद दिल से। और सुगंध माटी कार्यक्रम में चारों कैथी के सुगंध लेके आए ही अपने पूरे भारतवर्ष के, हाँ इतना सुंदर मेहंदी गीत हमका तो बहुत पसंद है, हम तो कुल है पर नाच लेते थे हाँ। और ऐसे आपका जो है नाचे प्रैक्टिस करे को तो इठियाउर हम सुनाए देते हैं, वैसे अगर गाड़ी उड़ी चलावा था तो मतलब

ई नहीं कि संभाल के आए, ठीक समझ गया ना। हाँ और घरे में है हमार जो भौजी हरे यहाँ है, आंटी जी हरे यहाँ, बहनी हरे यहाँ, तो वह सभी अपन काम करत करत देखा तो सैया में जो है काम करत करत जब मन नाचे लागत है ना मयूरेस, तो कमो अच्छे से होते, यही लिए हम बढ़िया बढ़िया गौने ही सुनावत ही तो मन मयूर कर नाचे दिया।

छाछ पी लिया। वैसे तो बहुत जने के तो अबे सबेर भय हो आए चाह पियत हुई है चुस्की लई लई के देखा, लेकिन जेका जेका काम पे जाए कहा वो काम पे निकल चुका है। अब बहुत मन ही तो काम पे पहुंच भी गए हाँ हाँ। और देखा जब काम के बात होते तो एमा जो नहाए आप सबके ऊर्जा बढ़ावे काम हो करे थे रेडियो और FM रेनबो। और FM रेनबो पर भी जो ना बुधवार और शनिचर का हाँ जाना थे ना शनिचर यानी शनिवार सैटरडे हाँ। और सवेरे 10 बजे ताई लेके 11 बजे ताई आप सुना थे कार्यक्रम सुगंध माटी की ठीक। और शनिचर का तो हम बोली थे अवधि देखा अवधि तो अब बोला थे ही कैसे कि ये हमका आवत है भैया राजस्थानी पंजाबी तो तनी तुनी कोशिश कर ली थे, लेकिन जो है जब अवधि के बात आवत है तो शनिचर के तो दिन हमारे सबके फिक्स हो गया है भैया के अवधि जो नहीं सुनाई जाए अवधि लोकगीत आप तक पहुँचावा जाए और अवधि में बात हो। लेकिन जब बुद्ध के बात आवत है भाई तो एमा जो है अलग अलग प्रांत के सुगंध अलग अलग प्रांत के माटी की खुशबू आप तक पहुंचावे का पूरा प्रयास किन जाते और ई एकरे लिए कहे से कि हमरे सबके पास बहुते अलग अलग जगह से दूर दूर से श्रोता पंचायत जुड़त हैं। और वैसे अगर बात कीन जाए अपने उत्तर प्रदेश के और खास तौर पर लखनऊ के तो भैया ही गंगा जमुनी तहजीब के शहर बाट है। और एहमा जौन है चाहे जौनी भाषा बोली के चाहे जौने प्रांत के मनई आए जाएं हम सबे ओका बाह फैलाए के ओका स्वागत करी थे और इस घुल मिल जाते कि जैसे जौन है का बताई जैसे कि जौन है चाय में जब चीनी डाल देना घुल जाते या दूध में पानी डाल दे हाँ वो ज्यादा बढ़िया उदाहरण है दूध हम पानी मिलाए देते दे ब्या तो पता न लागे कि कहाँ का पानी और कहाँ बाटे दूध। बस वही तरह लखनऊ में सब आए के घुल मिल जाते रच बस जाते हाँ। और यही लिए ये कार्यक्रम सुगंध माटी के बुध वाले दिन आप सब सुना थे अलग अलग प्रांत के अलग अलग अंचल के जो उन भाषा बोली है ओ मालूम गीत गौनई मजेदार मनोरंजन होत सबके है। तो चला यही बात पे एक ठी और आपका लई चलता ही पंजाब पंजाबी में सुनाई थी गौनई लेकिन ओकरे पहले बताए दी भैया बहुते जने ईमेल भेजत हाँ हाँ। मोनू भैया विकास भैया और देखा नीलू बहिनी आशा बहिनी राजकमल यादव भैया पिंकी बहिनी मुनेश कुमार भैया और देवशंकर भैया सबे जो है मेल वेल करे हैं एक सबका हम पढ़ब लेकिन ओकरे पहले आपका सुनाई थी एक ठी पंजाब बोली में बहुत सुंदर गीत हाँ। यू में जो ना बहुत खूब सुंदर के डांस हो सकते हैं करा चाह तो कही ले हाँ बिटियन से कही दिया करे नान लड़के जो एमर उमर उछलत कूदत हाँ हाँ। अभी देखा एक जने बताए हैं कि वाह वाह मजा आवत है उनके नातिन में जो है नातिन या की बिटिया आते अभी पढ़ब घघरा पहन के नाचत यह है हाँ। तो बस यही आनंद मैं माहौल बना रहा है सुन रहा FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: ये बहुत अंग्रेजी में पिटर पिटर कई देती है यही रिचा, देखा तो कैसे अंग्रेजी में पिटर पिटर कई के गई है। देखा भैया वैसे वो जरूरी है, हिंदी अंग्रेजी पंजाबी मतलब बहुत जरूरी है। देखा सब भाषा आवे चाहिए और सब भाषा समझे जरूर चाहिए, ना बोल पावा लेकिन समझ के अपनी भाषा में जवाब दे दिया। हाँ देखा यही लिए अंग्रेजी हिंदी बहुत जरूरी है, अपन मातृभाषा तो बहुत जरूरी है। और वैसे जब कहा जाते संगीत के बारे में तो भैया संगीत कि कौनो बोली भाषा नहीं होता है। देखा आपका भले गौ नहीं ना समझ में आवत हो लेकिन मजा जरूर आवत हो, है ना। हाँ मजा आवता है नहीं आवता है, देखा हमका बहुत जने बतावत हाँ कि कार्यक्रम के आनंद लेता है। देखा चला ईमेल अगर पढ़ी तो भैया विकास भैया हमका गांव सलीद तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से सुनता है और कार्यक्रम के प्रशंसा लिख के भेजे हैं, बहुत धन्यवाद भैया। मोनू भैया का कहा था, कहा था अंजू बहन जी को प्रणाम, राम राम, 24 साल का साथ बहुत सराहनीय, बहुत धन्यवाद भैया। आपो सब साथ है, सुरुज जुड़ा है यही लिए नहीं बना। और कहा थे कि हमरे नानी जी भी आपके प्रोग्राम सुन रही हैं और राम राम करत है, राम राम नानी जी। कहा थे कि पिछली बार आपके प्रोग्राम हमरे साथे नानी जी मिस करे रहीं तो नानी जी थोड़ा थोड़ा हमसे गुस्सा रहीं। अरे दैया नानी हो, ए नानी गुस्सा उस्सा ना हुआ कर। हाँ देखा आपके लिए तो हम सब इतना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम बनाई थे सुनाई थे और मोनू जी जो उन्हें आपका सुनावा थे हैं मोनू बेटवा आपके हैं, तो देखा यही तरह हंसत मुस्कियात कार्यक्रम का सुनत रहा कर और हमका सबका खूब ढेर का असीस देवा कर। हाँ

0: तो नानी जी थोड़ा थोड़ा हमसे गुस्सा रहे ना। अरे दैया नानी हो, ए नानी गुस्सा उस्सा ना हुआ कर। हाँ देखा आपके लिए तो हम सब इतना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम बनाई थे, सुनाई थे, और मोनू जी जो उन्हें आपका सुनावा थे हैं, मोनू बेटवा आपके हैं, तो देखा यही तरह हंसत मुस्कियात कार्यक्रम का सुनत रहा कर, और हमका सबका खूब ढेर का आशीष देवा कर। हाँ आशीर्वाद ओके बहुत जरूरत रहा थे। अच्छा आगे कहा थे कि लेकिन आज आपका सुन के प्रसन्न है, और आज हमारे नानी करेला की सब्जी और बेसन की रोटी बनावत आपके प्रोग्राम सुने के बाद जरूर हाथ से चूल्हे पर बनी रोटी खावे। अरे वाह गजब, ये कुल तो मजा भैया, चूल्हा बनी हाथे के जो पोई रोटी होते ना ओके तो स्वाद बिल्कुल अनोखा होते। चाहे जितना बड़ा तो स्टारर होटल में जाए खाए लिया खाना, वो मजा ना आए ना पौव्या। हाँ अच्छा देखा नीलू बहनी कहा थी अंजू जिज्जी को मेरा राम राम, सभी श्रोता पंचन का राम राम। अंजू जिज्जी हम तो सनिच्चर के इंतजार करते रहे, आपकी आवाज सुन के अच्छा लाग आ जाओ। और कहा थी जिज्जी एक बात आपके मजे के बताती हूँ। हाँ बहनी बतावा बतावा अबली ये तो लिख के भेजे है, तो कहा कि लिखा था ही। हाँ बताऊ बताओ हम ही अपनी जवानी। हाँ का बताई देखा का लिखे हाँ कि मेरी दोस्त पीहू पूर्णिमा मनु स्नेहा सोनी आरती दीपशिखा दीदी अतीक सिद्दीकी भैया धर्मेंद्र भैया अवनीश भैया सभी लोग अपने अपने ऑफिस में सुना था आपको। अंजू जी ये सब कानपुर के, अच्छा आकाशवाणी कानपुर परिवार के हैं भैया। देखा सबका हमारा राम राम है, और जितना जने सुनता है सबका राम राम प्रणाम। बस यही तरह जुड़ा रहा, देखा एफएम रेनबो लखनऊ हो चाहे आकाशवाणी कानपुर हो, देखा सब एक परिवार के चचेरे मसोरे भाई बहन यही हम सब है। हाँ और देखा आशा पांडे बहनी राधे राधे भेजे हैं, सुबह से प्रोग्राम सुनती हैं और हर गाना कनेक्ट हो रहा है। बस यही कनेक्शन तो चाहिए बहनी, देखा जब कनेक्शन जुड़ जाते है, जब तार एमुर से उमुर जुड़ जाते, बिजली वाला ना ही दिल के तार हाँ मन के तार जुड़ जाते ना, तब है तो बढ़िया कार्यक्रम निकल के आवते है ना। हाँ बढ़िया मनोरंजन और दिन भी जीवन भी सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाते फर्स्ट क्लास एकदम। एक ठी ईमेल आओ पढ़ दी पर देखा गौने इंतजार करती है, और यह हाँ यह वाला ईमेल रहा राजकमल यादव भैया का, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से हमका सुनता है पर नाम हम बिल्कुल बढ़िया ही नहीं कही भैया। कहा थे मजा आएगा वह दीदी हमारी बेटी हिमांशी यादव घगरा पहन के डांस कर रही है मैम जी, हो सके तो। अदेखा भैया तब की दाई जो आए रहे ना तो आप कहे रहे हाँ बलेश्वर यादव भैया के गाँव नहीं के लिए, तो देखा हम आपसे वादा कर रहे थे ना अगली बार आऊबे तो जरूर सुनवाऊबे, तो हम पहले से एकर ले के आई ही। हाँ और आपके साथ ही कहा था कि सुनता है रमजान हमारी वाइफ संगीता यादव सावन कुमार अनिकेत अंशिका अर्चना भाभी पकड़ियापुर से सुन रहे हैं। सबको नमस्ते भैया, नमस्ते सबका नमस्ते।
1: गोरखापुर के हो गोरखापुर के
2: जिया जिया जिया।

बात का बात भैया, मजा आवा कि नहीं आवा, आवा होए जरूर, कहे से कि ये रहे अजमगढ़ के बालेश्वर यादव भैया, जाने माने सुप्रसिद्ध लोक गायक लोक कलाकार, और इनके आवाज में ई गौनई एक लोकगीत बहुत चिर परिचित बहुत प्रसिद्ध लोकगीत आप सब तक पहुंचा 100.7 FM रेनबो पर। आप सुन रहे प्रोग्राम सुगंध माटी की, 10:40 का वक्त हो गया, मैं हूँ आरजे अर्जु शुक्ला। और भैया देखिए, आप लोगों ने ईमेल का भेजा है, इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, अवधि बोली कि खड़ी बोली बोली आए, देखा हमका तो जो उन्हें कार्यक्रम में अवधि बोली पसंद है, हमारे श्रोता पंचनों को बहुत पसंद है, तो अवधि पढ़ी थे आए, देखा ये जो उन्हें

ई जौन हार्ट मेल प्रोग्राम है ना, ई तो हमका दिल का दर्द दे दे एक दिन। हाँ एहमक ईमेल इहूं प्रोग्राम में बतावा ले। अबे 10 बज के हो गया 40 मिनट, 2 बजे वाले कार्यक्रम का ईमेल फरमाइशी गीत लिख के भेज दे हैं यहाँ हैं छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता भैया। देखा आप सबके बहुत बहुत नमस्कार, 2 बजे ईमेल भेजा ई वाला ठीक। अच्छा ई जौन हमारे पड़ोस पड़ोसन ये हैं के पिंकी बहिनी अमीनाबाद में, हाँ ही एक पड़ोसी यहीं मतलब, तो जो ना हमका लिख के भेजे हैं कौनो ठीक कविता, एक ठीक कविता बहुत सुंदर के कहा थी अंजू मैम का सुर मीठ बोली मनवा मक खुशियन घोली, 24 बरस से रेडियो पर सबके दिल में जगह बनौली। आय हाय धन्यवाद बहिनी धन्यवाद। आगे लिखा थी भोर भयत आवाज सुनाई दिन भर मन मुस्काई, दुखियन का ढांढस बंधावे खुशियन के गंगा बहाई, मेहनत लगन और मुस्कान यही है उन यही आहे उनकर पहचान, ऐसन आरजे बहुत कम मिले जिनसे बढ़त रहे सम्मान, ईश्वर से ऐसन अरज हमारी खुश रहे अंजू मैम प्यारी, 100 बरस तक चमकत रहे आवाज रहे सबकी दुलारी। वाह बहिनी बहुत बहुत धन्यवाद, कहा थी 24 बरस की बहुत बहुत बधाई अंजू मैम, आपकी आवाज यूं ही लाखों दिलन में मिठास घोलत रहे, बहुत बहुत प्यार बहुत स्नेह और बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपका। इतनी सुंदर लाइन आप लिख के हमरे लिए भेज दी है यहाँ कि काबताई जीव प्रसन्न होएगा हमार। अब मुनेश कुमार भैया गांव भानपुर हरउआ जिला लखीमपुर खीरी से राम राम भेजा था, कहा थे कि कल लखनऊ के अच्छा जौन ई दर्दनायक घटना भय रही ओकरे बारे में लिखा यहाँ कि सतर्क रहो, एक लापरवाही की कीमत कई जिंदगियां चुका देती है, हादसा होते ही सबकी नींद टूटती है, काश पहले आंख खुल जाती माँ की गोद सुनी कर गई, एक छोटी सी चूक किताबें जल गई पर सपनों की राख आज भी उड़ रही है, जो बच्चे कल देश का भविष्य थे आज वो बस एक खबर बनकर रह गए हैं। हाँ भैया दूसरों की गलती से सीख लो यारो, वरना अपनी गलती की सजा बहुत भारी होगी, सुरक्षा की दीवार छोटी सही पर गिरे तो पूरा घर ढह जाता है, सतर्क रहो तो कल मिलोगे, लापरवाही करोगे तो याद बन जाओगे और ऐसी घटना किसी के साथ दोबारा ना हो, दिवंगत आत्माओं को शांति और घानों को शीघ्र स्वास्थ्य मिले। बिल्कुल भैया पूरे आकाशवाणी एफएम रेनबो की टीम की ओर से भी यही प्रार्थना यही कामना और हम सबको सजग रहना होगा, इसीलिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ हमने एक विशेष एपिसोड के अंतर्गत आज आप सबको सजग और जागरूक रखने के लिए ही प्रस्तुत किया था। और वैसे इस मुद्दे पर हमेशा बात होनी चाहिए, हम सबको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मुनेश कुमार भैया। अब आंचल बहनी काव लिखती हैं अंजू दीदी, अच्छा 24 साल बेमिसाल हम सबके साथ, वैसे तो हम आपके साथ 7 साल से जुड़े हैं, आंचल अंकित से ट्राइबर अली से हमका ईमेल भेजा था, वकील अहमद भैया ये हैं कटका हथूरी जिला सीतापुर से, साहिबा शाजिया समास रिंकी पिंकी महक सबके नाम लिखे हैं, गुलबशा अमन पप्पू मामा हमारे जो सांड में रहते हैं सबके नाम लिख के भेजे हैं और कार्यक्रम के तारीफ करे हैं। और भैया आम के बगिया में बैठे हैं और एक जनी लिखे हैं श्रेया कुमारी हैं, अच्छा श्रेया कुमारी रांची झारखंड से और आलमबाग में हमका सुनती हैं, जोहार मैम हाँ आपो कराम जोहार, कहती बहुत बहुत बधाई अपनी आपकी जर्नी डे के लिए। आगे लिखती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और अलग अलग राज्यों का गीत बज रहा है काफी अच्छा लग रहा है, मेरे झारखंड के नागपुरी गीत बजा देते तो मेरी माटी की यादें ताजा हो जाती है। ए बहिनी अगली दाई जो अवे ना तो जरूर लेके अवे झारखंडो वाला गीत है, और देखा अब जो कोशिश रहा था कि देखा एन वक्त पे नहीं, हम तो पूरी तैयारी पहले से प्लेलिस्ट बनाए के लेके आई थे। हाँ और देखा मुनेश कुमार भैया हमका कुछ खाए पिए भेज दे हैं, हाँ घर पर बनाए हैं आकर खा जाइए, अरे दैया एक एक देख ले ना तो जो उन्हें मतलब मुँह से आवाज नहीं खाली पानी निकरे, और जानता ही काव आटे श्रोता मंचा निकाव भेजे हैं कौन चीज के फोटो बताई, ओका कहा थे पानी पूरी गोलगप्पा, हाँ अरे दैया एक बहुत जने और बहुत कुछ कहा थे लेकिन पानी पतासा हाँ यो कहा जाते, लेकिन देखा भैया ये सब जो उन्हें अपराध की श्रेणी में आवत है, हाँ जब प्रोग्राम करत रही तो ये सब कुल ना भेजा कर हमका सबका, हाँ तो चला भैया देखा एक गवनी और सुनाई, हमरे लगे बहुत जने के ईमेल आवा है ओका पढ़बे, लेकिन पहले ये बहुत मीठ के नीक के गवनी, और देखा जीजा सालिक रिश्ता बहुत प्यारा होते बहुत स्नेह भरा होते आए उही पे है गवनी, हाँ हंसी मजाक तो चलत है भाई, हाँ बुरा नहीं मानिक चाहिए।

तो मनोरंजन के हिस्सा होता है घर परिवार में, हंसी मजाक तमाम तरह के, यही तरह हंसी चिटोली कही के आनंदमय माहौल बना रहा जाए, यही हमारे सबके शुभकामना है भैया। उधर से बच के हो गए हैं 50 मिनट और देखो बहुत सारे ईमेल आएगा। वहाँ सोनू परवाना भैया कहा था है का कहा थे कि माटी की सुगंध प्रोग्राम सभी तक आपन खुशबू भेजता है, गाँव में दादी नानी चाची भौजी भैया दादा सबको बहुत नीक लगता है। हमारे दोस्त ब्योहारी भी, मतलब अच्छा दोस्त और व्यवहारी भी प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, मनोज तिवारी जी, बाल गोविंद जी, रामचंद्र जी, भागचंद्र, प्रेमचंद्र, उमाशंकर जी, अंजू बहनी, एकदम जबरदस्त चला था प्रोग्राम सुगंध माटी की, आपकी सनिचर के अपने साथी विजय भैया कल ही आए हो तो खुशी होए। अरे तनी अबे रुका, तुरंत विजय का फोन लगाई थे, हाँ कहाँ बाटे आए, चला आया सनिचर का, देखा कहा देखा आवत है नहीं आवत है, वो उनके ऊपर निर्भर कर रहे थे, भैया हम बुलाए जरूर ले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, राम राम कहे आए। और विनीत कुमार भैया लिखे हैं ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से माटी सुगंध प्रस्तुत करने वाली अंजू शुक्ला जी को गुड मॉर्निंग नमस्कार प्रणाम भेजे हैं और कहा थे बोली बहुत मीठी सुरीली और प्रोग्राम अच्छा करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डिमांड भेजे है भैया देखा ये सब फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं ना, लेकिन आप सबके जौन रिक्वेस्ट आवत है, जौन डिमांड आवत है, उसका सबका ध्यान में रखी थे और कोशिश करबे कि अगली नाई जो अवे तो जरूर आपका गाँव नहीं सुनोबे जौन आप लिखे हैं कलाकार के नाम। अच्छा अब एक बादे मेल करें हाँ रोशनी रावत बहनी और काव कहा थी रोशनी रावत है कहा थी कि राम राम प्यारी अंजू दीदी आप कैसी 24 साल हो गए तो हम एक साल के रहें। अरे देखा भैया तो है उम्र सबका मालूम पड़ गए हैं, ये तरह नहीं लिखे चाहिए देखा हम हूँ अच्छा कम पड़ी गए हैं, चला कोनो बात नहीं, शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बत कही बहुत लुभावत यह है सुंदर प्रस्तुति, देखा चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुनती हैं सफीपुर उन्नाव के रहने वाली हैं, सब श्रोता पंचन के नाम लिख के भेजे हैं। और यही तरह जो उन्हें विजय ब्रिजेश सिंह दीपू भैया भी हमका मेल करे हैं और इन्हों बधाई दे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, पापा जी दवा लेने आए, अरे भैया पापा जी ध्यान रखा सब स्वस्थ रहा है यही हमारी कामना। अंगद यादव भैया आजमगढ़ से सुनता है शिवराम निजामाबाद आजमगढ़ से कहा था अपने माटी के गीत सुन के मजा आएगा वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नीलू शर्मा बहनी भी पूरी फैमिली की ओर से शुभकामना भेजे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और जो उन्हें कार्यक्रम की प्रशंसा लिखे हैं धन्यवाद सबका धन्यवाद। आसिफ भैया भी तेलंगाना से सुनता है इन्हों सबके नाम लिख के भेजे हैं, सवेरे से नहीं सुन पाए अभी हमसे जुड़ा है कोनो बात नहीं भैया सुनता रहा। अजय सिंह कुमार भैया भी राम राम लिखे हैं गुड मॉर्निंग आपों के और गौनई बहुत अच्छी लागत यह है अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद और 22 साल से हमसे जुड़ा है हाँ भैया बस इसी तरह जो है प्रेरणा देते रहा सबका और हमका जो शुभकामना भेजे है अकेले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मोनू भैया कहा था प्रोग्राम तो मैं तो जलवा है बहन जी 24 साल का अनुभव बोलता है भैया अनुभव तो है ये है हेमा तो कौनो दूर आए नहीं और अनुभव जब रहा थे ना तो वो सर चढ़ के बोले थे पता लागत है हाँ और यही ले कहा थे बड़े बुजुर्गन का आशीर्वाद उनके मार्गदर्शन बहुत जरूरी होते। चला एक हरियाणवी सुनाई देता ही ओकरे बाद फिर कार्यक्रम भैया पूरा होने वाला है 10:53।

अरे भैया, लेकिन हम कौनो घूंघट उंगट की ओट में नहीं छुपे जाते ही, अब वही मिली थे आपसे कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में, यानी कि एफएम रेनबो पर। अब भैया चला चला देखा हाउस दीक्षित यानी अनिल कुमार दीक्षित भैया हमका ईमेल भेज दिया एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड से, कहा थे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम इज नाइस सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स सो ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया हमारे जन्मदिन उन्होंने नाइन हमारे है वर्क एनिवर्सरी। अरे देखा यही कही थी जब आई रहे आप सबसे मुखाते बहरे ओका हो गया 24 साल। हाँ तो यही लिए हमका शुभकामना भेजे आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बस यही तरह प्रेम स्नेह प्यार मोहब्बत बनाए रहा जा और सुनत रहा 100.7 FM रेनबो, कहा से कि यही एक चैनल है जो ना आपके अपना बाटे आए, तो बस यही तरह अपन अपनापन बनाए रहा जा। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो सुगंध माटी की। मैं आज बस इतना ही, राम राम प्रणाम।

0: डू एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं
1: ऋतु।
0: और ऋतु, सबसे पहले तो सभी जो श्रोता हैं हमारे, उनका स्वागत है और आपका भी स्वागत है।
1: बिल्कुल आशीष, मैं भी स्वागत करती हूं अपने सभी श्रोताओं का और तुम्हारा भी।
0: स्वागत और नमस्कार के बाद ऋतु, एक बात बताइए, जब मैं सुबह यहां पर मॉर्निंग में आया हुआ था ये अपने आकाशवाणी केंद्र में, तो बरसात हो रही थी, भीगते भागते किसी तरीके से जल्दी से आ गया था। तो अभी बताइए कि मौसम के क्या हाल चाल है अभी।
1: भाई मौसम के सुबह भले ही बहुत अच्छे मिजाज रहे होंगे आशीष, लेकिन इस समय जब मैं आई मौसम बहुत खराब था, बहुत तेज धूप है, बहुत गर्म है और कहते हैं ना कि मौसम बदलता रहता है।
0: यानी कि मौसम ने जो है ना बिल्कुल यू टर्न ले लिया है।
1: बिल्कुल।
0: और एक मिसाल दी जाती है ना कि भाई मौसम की तरह मत बदल जाइएगा, तो आज का मौसम बिल्कुल उसी तरह का है कि सुबह कुछ था और इस समय कुछ
1: और है।
0: फिलहाल मौसम है, मौसम तो बदलता ही रहता है, लेकिन हम लोग हमनवा प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं और आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक टॉपिक्स, साथ में बहुत अच्छे अच्छे गाने। और चर्चा कर ली जाए कि आज हम कौन से टॉपिक में बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीतिज्ञ दिवस है आज।
0: जी हाँ, और साथ में हम बात करेंगे मानवीय मूल्यों के बारे में, जैसे कि दया करुणा, इनका क्या महत्व है, मानवीय मूल्य हमारी लाइफ के लिए कितने जरूरी हैं, इन पर बात करेंगे। साथ ही साइबर फ्रॉड से किस तरह बचाव हम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय साइबर फ्रॉड के कई सारे केसेस सामने हमें देखने पढ़ने और सुनने को मिलते हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे।
1: साथ ही वीवी गिरी की पुण्यतिथि है, तो हम उनको भी याद करेंगे आज, और साथ में स्टार्टअप और रेसिपी भी होगी।
0: ऋतु, एक चीज और हमारे लिसनर्स को बता दीजिए कि वो कौन सा टॉपिक है जिसपे आज वो अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं।
1: तो आशीष, आज हमारा टॉपिक है साइबर फ्रॉड से बचाओ। इस पर हम अपने श्रोताओं के जो है विचार आमंत्रित करते हैं, और उसके लिए हमारी ईमेल आईडी हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: जी हाँ, एक बार फिर से हम ईमेल आईडी आपको बता दें कि AIRKANSOMEDIA@gmail.com। और इस ईमेल आईडी पर आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं कि साइबर फ्रॉड से किस तरह हम बचाव करें। फिलहाल अभी हमनवा प्रोग्राम में आ रहा है ये पहला गाना।

0: तो आशीष, दिन चढ़ चुका है और इस दिन चढ़ने के साथ ही हमारा हमनवा प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन की। आज 24 जून को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमन इन डिप्लोमेसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीतिज्ञ दिवस। और इस दिवस का उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को सम्मान देना और अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
1: कूटनीति यानी डिप्लोमेसी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसके माध्यम से देश आपसी संवाद, सहयोग और समझदारी से अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं और वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजते हैं। कूटनीति का मूल उद्देश्य शांति, सहयोग और सौहार्द स्थापित करना है।
0: बिल्कुल, और इतिहास गवाह है आशीष की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। शिक्षा, ज्ञान, राजनीति, खेल और सामाजिक सेवा के साथ साथ कूटनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार और वैश्विक संगठनों की प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
1: बिल्कुल ऋतु, महिलाओं की विशेषता उनकी संवेदनशीलता, धैर्य, सहनशीलता और संवाद क्षमता होती है। यही गुण उन्हें एक सफल कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो शांति, समानता और मानव कल्याण को अधिक महत्व मिलता है। उनकी भागीदारी से समाज और विश्व दोनों अधिक समावेशी और संतुलित बनते हैं।
0: बिल्कुल, और भारत की अनेक महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाया है। इनमें विशेष रूप से विजयलक्ष्मी पंडित का नाम उल्लेखनीय है। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज तथा अनेक महिला राजनयिकों ने वैश्विक मंचों पर भारत का प्रभावी प्रतिनिधित्व जो है वो किया है।
1: जी बिल्कुल ऋतु।

0: और वर्तमान समय में दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आर्थिक समानता और मानवीय संकट। इन चुनौतियों से निपटने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो समाज और राष्ट्र दोनों अधिक मजबूत बनते हैं।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीतिज्ञ दिवस हमें ये संदेश देता है कि महिलाओं को केवल अवसर ही नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का स्थान भी मिलना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर और नेतृत्व के लिए सक्षम बनाना होगा ताकि वे भविष्य में देश और दुनिया का मार्गदर्शन कर सके।
0: महिलाओं का सशक्तिकरण केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के विकास का मार्ग है। तो आइए इस अवसर पर हम सभी महिलाओं के योगदान का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लें।
1: और आशीष, जहां महिलाओं को सम्मान और अवसर मिलता है वहां शांति, प्रगति और समृद्धि का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है।
0: बिल्कुल।

0: और आशीष, अब हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में लगभग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है साइबर फ्रॉड से बचाव, और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: बिल्कुल ऋतु, आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। अब बैंक की लंबी लंबी लाइन्स में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर बैठे पैसे भेज सकते हैं, बिजली पानी के बिल जमा कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी करते ही हैं। लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष तुमने, साइबर ठग हर दिन नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य किसी भी तरह लोगों की व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी प्राप्त करना होता है। एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी जीवन भर की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा ऋतु, और जैसा कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आजकल साइबर अपराधी बैंक अधिकारी, बीमा एजेंट, कुरियर कर्मचारी, एटीएम कार्ड बंद होने, पुरस्कार जीतने या नौकरी दिलाने का लालच देकर लोगों से ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और अन्य गोपनीय जानकारी मांगते हैं।
0: बिल्कुल, और याद रखिए दोस्तों, बैंक कभी भी फोन, मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपका ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड या यूपीआई पिन नहीं मांगता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है तो समझ लीजिए कि वो धोखाधड़ी का प्रयास कर रहा है।
1: और साइबर ठगी का एक सामान्य तरीका यह भी है, फर्जी लिंक भेजना, है ना। आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आ सकता है जिसमें लिखा हो कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपको कोई विशेष इनाम मिला है। ऐसे मैसेजेस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आपकी निजी जानकारियां अपराधियों तक पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आ जाए तो आप बहुत सावधान हो जाएं।
0: बिल्कुल, और सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग भी साइबर अपराधियों के लिए अवसर बन गया है। वे फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं और किसी न किसी बहाने रुपयों पैसों की मांग करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से बचें।
1: और ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय और सेफ वेबसाइट्स का उपयोग करें। किसी वस्तु पर अधिक छूट या बहुत बड़ा ऑफर दिखाई दे रहा हो तो उसकी जाँच जरूर कर लें, लालच में ना आए। और अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। मोबाइल में स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या पासवर्ड जरूर लगाएं। समय समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को अपडेट करते रहें।
0: जी, और बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर साइबर ठग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं आशीष, जो तकनीकी जानकारी कम रखते हैं, और परिवार के सभी सदस्यों को ये जानकारी जरूर दें कि किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, पिन या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, ओटीपी, पिन या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए। और अगर कभी आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो घबराने की जगह तुरंत कार्रवाई करें। सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और अपने अकाउंट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं और भारत सरकार के चच्चू ऐप पर

0: रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात भी ये बता दें कि अगर आपको आप बैंक को 3 घंटे के अंदर अगर आपके साथ कोई घटना हुई है और साइबर फ्रॉड की, तो 3 घंटे के अंदर अगर आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, सूचित कर देते हैं, तो आपका कटा हुआ पैसा, आपके साथ फ्रॉड किया हुआ पैसा वापस भी आ सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बैंक अधिकारी अजय कुमार, आइए जानते हैं क्या है उनके विचार।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं अजय कुमार, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य प्रबंधक, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के डिजिटल युग में साइबर ठगी एक बड़ी चुनौती बन गई है। साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं, कभी लॉटरी या इनाम के लालच देते हैं, तो कभी फर्जी लिंक भेजकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, बैंक कभी भी फ़ोन, संदेश या ईमेल के माध्यम से आपका एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन नहीं मांगता। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है तो उसे बिल्कुल साझा ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही प्रयोग करें। सोशल मीडिया पर प्राप्त होने वाले आकर्षक ऑफरों और संदिग्ध संदेशों से सावधान रहें। अपने मोबाइल और कंप्यूटर से समय समय पर सुरक्षा अपडेट अवश्य करें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो घबराएं नहीं, तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। साइबर सुरक्षा केवल सरकार या बैंकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाएं। धन्यवाद।

0: आशीष, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अपने श्रोताओं से उनके विचार मांगे थे साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए, तो भैया मोनू सेठ जो कि हमारे नियमित श्रोता हैं, इनका मैसेज आ चुका है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैं पढ़ देती हूँ कि इन्होंने लिखा है कि डिजिटल पेमेंट और साइबर ठगों के बीच एक निरंतर युद्ध जारी है। जहाँ तकनीक हमें सुविधा दे रही है, वहीं ठग नए नए तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। डिजिटल लेन देन न केवल समय की बचत करता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाता है।
1: इसके आगे इन्होंने लिखा है कि यदि हम तकनीकी रूप से जागरूक रहें और अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे OTP या पिन किसी से साझा ना करें, तो डिजिटल भुगतान वित्तीय आजादी का सबसे सशक्त माध्यम है। और मेल करने के लिए भैया मोनू सेठ को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक मेल और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रही है, क्या
0: बिल्कुल
1: है?
0: ये आंचल सेठ, अंकित सेठ की है ये, और इन्होंने लिखा है कि अधिकांश साइबर क्राइम के मामलों में कार्रवाई करने में मात्र इसलिए देर होती है क्योंकि घटनाओं की सूचनाएं पुलिस को समय से नहीं मिल पाती हैं। घटना के त्वरित बाद पुलिस को सूचना मिलने पर खातों से कटे रुपयों की निगरानी में आसानी होती है, लेकिन देखा जाता है कि घटना होने के 8 से 10 घंटे अथवा कई मामलों में कई दिन बाद फरियादी थाने पहुंचता है। ऐसे में पुलिस को त्वरित सूचना मिले इसके लिए हमें, मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि हमें जल्दी यानी 3 घंटे के अंदर, जैसे कि तुमने अभी पहले बताया था कि 3 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर देना चाहिए, और अगर हम 3 घंटे के अंदर बैंक को सूचित कर देते हैं तो हमारा जो अकाउंट है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। अगर कुछ पैसे कटे हैं तो उसके अलावा अन्य पैसे फिर आगे नहीं कट सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ अगर 3 घंटे के अंदर हम जल्दी से सूचना बैंक को देते हैं तो हमारे कटे हुए पैसे वापस भी आ सकते हैं। तो ये आंचल अंकित सेठ को बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और ऋतु, अब हम बढ़ते हैं अपने हमला प्रोग्राम के अगले टॉपिक की ओर।
0: बिल्कुल, और जो अगला टॉपिक है, ये विषय केवल चर्चा का विषय नहीं है आशीष, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाने वाली चीज उसकी बुद्धि ही नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद मानवीय मूल्य है। तो हम बात करने जा रहे हैं मानवीय मूल्यों जैसे कि दया, करुणा आदि का क्या महत्व है।
1: दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी, सहयोग, क्षमा, सम्मान और संवेदनशीलता जैसे गुण ही मानवता की पहचान है। अगर हमारे पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन मानवीय मूल्य ना हो तो हमारा जीवन अधूरा माना जाएगा।
0: बिल्कुल, और दया का अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर उनके प्रति सहायता और सद्भाव की भावना रखना। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी घायल पशु की

0: सहायता करते हैं, तब हम दया का परिचय देते हैं।
1: करुणा दया से भी आगे की भावना है। करुणा हमें दूसरों के दर्द को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना सिखाती है। करुणा वो शक्ति है जो इंसान को स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल, और आज के आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही लोगों के बीच दूरियां भी बढ़ी हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे समय में मानवीय मूल्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये मूल्य हमें जोड़ते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और समाज में प्रेम, शांति तथा भाईचारे का वातावरण तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने। और देखिए ना, मशीन और मानव में यही तो अंतर है भाई। मानव में दया है, करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है, ईमानदारी है, सहयोग है, क्षमा है, सम्मान है, संवेदनशीलता है। और मशीन में तो हमने
0: मशीन है
1: हमने कोई एक ऑर्डर दिया और मशीन ने पूरा कर दिया, है ना। मानवीय मूल्य हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

0: सही कहा रितु आपने। और देखिए ना, मशीन और मानव में यही तो अंतर है, है? भाई मानव में दया है, करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है, ईमानदारी है, सहयोग है, क्षमा है, सम्मान है, संवेदनशीलता है। और मशीन, मशीन में तो हमने
1: मशीन है
0: हमने कोई एक ऑर्डर दिया और मशीन ने पूरा कर दिया, है ना। मानवीय मूल्य हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दयालु और करुणामय व्यक्ति के मन में शांति रहती है, दूसरों की सहायता करने से आत्मसंतोष मिलता है, तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना ही सच्ची मानवता है।
1: और विद्यार्थी जीवन में इन मूल्यों का विशेष महत्व है। यदि छात्र बचपन से ही दया, करुणा और सम्मान जैसे गुणों को अपनाते हैं तो वे आगे चलकर अच्छे नागरिक और जिम्मेदार इंसान बनते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है।
0: महान संतों और महापुरुषों ने हमेशा मानवता का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया, जबकि गौतम बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया।
1: मानवीय मूल्य दया और करुणा किसी भी सभ्य समाज की आत्मा है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और मानवता की भावना को सदैव जीवित रखेंगे।
0: बिल्कुल।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और इस समय कार्यक्रम चल रहा है हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष, और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं
3: ऋतु। तो आशीष, बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्टार्टअप। आज के समय में जब पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है, तब कुछ युवा उद्यमी ऐसे भी हैं जो कचरे को संसाधन में बदलकर समाज और पर्यावरण दोनों की सेवा कर रहे हैं। फूल बायोमटेरियल स्टार्टअप इसी सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्टार्टअप मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों के कचरे को रिसाइकिल करके उपयोगी और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाता है।
2: इस स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2017 में कानपुर के युवा उद्यमी अंकित अग्रवाल ने की थी। उन्होंने देखा कि मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में फूल चढ़ाए जाते हैं और बाद में उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे नदियों का प्रदूषण बढ़ता है और जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचता है।
3: और इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसके माध्यम से फूलों के कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदला जा सके। इसी विचार से फूल.co की शुरुआत हुई।
2: और भारत में प्रति वर्ष लाखों टन फूल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। पूजा के बाद इन फूलों को अक्सर नदियों, तालाबों या खुले स्थानों में फेंक दिया जाता है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जल प्रदूषण बढ़ता है, फूलों में मौजूद रासायनिक पदार्थ पानी को दूषित करते हैं, दुर्गंध और गंदगी भी फैलती है और जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा होता है। फूल स्टार्टअप ने इसी समस्या को अवसर में बदल दिया।
3: आशीष, और हम बता दें श्रोताओं को कि फूल स्टार्टअप कैसे काम करता है। कंपनी विभिन्न मंदिरों से प्रतिदिन फूलों का संग्रह करती है। इन फूलों को विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाता है और फिर उनके अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कि अगरबत्ती, धूप और हवन सामग्री, जैविक खाद, आवश्यक तेल और फ्लेदर, जो कि कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
2: फ्लेदर एक जैविक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री है जो फूलों के अपशिष्ट से बनाई जाती है। ये चमड़े का वैकल्पिक रूप है।
3: हाँ बिल्कुल, और इसकी विशेषता यह है कि पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना तैयार किया जाता है, पर्यावरण के अनुकूल है, फैशन उद्योग के लिए टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करता है।
2: फूल स्टार्टअप का सबसे बड़ा योगदान पर्यावरण संरक्षण है। इससे नदियों में जाने वाले फूलों के कचरों में कमी होती है, जल

0: प्रदूषण नियंत्रण रहता है, कचरे का रिसाइकिल होता है, स्वच्छता को बढ़ावा और सतत विकास को समर्थन मिलता है।
1: बिल्कुल, और ये स्टार्टअप केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करता बल्कि महिलाओं को रोजगार भी प्रदान करता है। कंपनी में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं जो फूलों की छटाई, प्रसंस्करण और उत्पाद निर्माण का कार्य करती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।
0: फूल स्टार्टअप को भारत और विदेशों में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये स्टार्टअप आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये साबित करता है कि नवाचार के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वैसे ऋतु, फूलों की बात हुई है तो कोई एक ऐसा गाना सुन लिया जाए जिनमें फूल की चर्चा हुई हो।
1: बिल्कुल आशीष,

0: रितु, आज 24 जून है और आज है अपने देश के चौथे राष्ट्रपति, महान श्रमिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी वीवी गिरी की पुण्यतिथि।
1: बिल्कुल आशीष, वीवी गिरी का पूरा नाम वराह

0: गिरी वेंकट गिरी था। उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को बहरामपुर ओडिशा में हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए। वहां उन्होंने स्वतंत्रता और श्रमिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें 1916 में आयरलैंड छोड़ना पड़ा।
1: भारत लौटने के बाद उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। वे भारतीय मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बने और रेलवे कर्मचारियों और अन्य श्रमिक संगठनों का नेतृत्व किया। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: स्वतंत्रता के बाद वीवी गिरी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे, श्रम मंत्री बने और उत्तर प्रदेश, केरलम और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे।
1: सन 1967 में वीवी गिरी अपने देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व संभाला। बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करके वे 24 अगस्त 1969 को भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। और यहां पर एक बात बताते चलें कि वो एक भारत के ऐसे एक मात्र राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र रूप से चुने गए।
0: बिल्कुल। और वीवी गिरी को श्रमिकों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। देश के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।
1: 24 जून 1980 को भारत रत्न वीवी गिरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन श्रमिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उनका योगदान आज भी प्रेरणा देता है।

0: ऋतु, हमनवा प्रोग्राम में अब हम आप पहुंचे हैं रेसिपी सेगमेंट के अंतर्गत।
1: बिल्कुल, और आज हम लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए दक्षिण भारतीय कढ़ी, जिसको कहते हैं मोर कोलंबू।
0: तो ये दक्षिण भारतीय कढ़ी है मोर कोलंबू, तो इसकी क्या सामग्री है जरा ऋतु बताएंगे?
1: बिल्कुल बताएंगे। सामग्री ये है कि दही और छाछ के लिए हमें सबसे पहले खट्टा दही 1.5 कप लेना है, पानी 1 कप लेना है छाछ के लिए, मसाला पेस्ट के लिए कद्दूकस किया हुआ नारियल 1/2 कप, हरी मिर्च 2 या 3 लेनी है, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, भीगी हुई अरहर की जो दाल है वो 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, कच्चा चावल 1 छोटा चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच।
0: अच्छा, तड़के के लिए इसमें क्या लिया जाएगा, इसकी भी सामग्री बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: तड़के के लिए लेना है नारियल का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं 2 चम्मच, राई ये सरसों 1 चम्मच, मेथी दाना 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता 1 से 12 पत्तियां आपको लेनी है, साबुत लाल मिर्च 2 लेनी है, हींग 1 चुटकी, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक स्वादानुसार, और आप इसमें डालने के लिए सब्जियां भी ले सकते हैं, और अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, तो कद्दू और भिंडी ये सब्जियां आप इसमें ले सकते हैं।
0: और बनाने की विधि इसकी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के लिए आप एक मिक्सर जार में कद्दू कस किया हुआ नारियल, अरहर दाल, चावल, जीरा, धनिया, अदरक और हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें और एक महीन पेस्ट बना लें। इसके बाद दही को फेंटें, एक बाउल में दही लें और उसमें पानी डालकर छाछ मट्ठा बना लें, इसमें हल्दी और नमक मिलाएं। आप अलग से छाछ ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही मिश्रण तैयार करें। अब तैयार किया हुआ नारियल का पेस्ट इस दही या छाछ के मिश्रण में अच्छी तरह मिला लें।
1: और अगर सब्जी आपने सोचा है कि सब्जी डालना है, तो यदि आप इसमें सब्जी जैसे कद्दू या भिंडी डालना चाहते हैं तो एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और सब्जी को थोड़ा भून लें, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर उसे तब तक पकाएं जब तक कि वो नरम ना हो जाए।
0: जी हाँ, और इसके बाद आपको तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए एक अलग तड़का पैन में तेल गर्म करें, राई, मेथी दाना, हींग, साबुत लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता डालें। जब राई चटकने लगे तो जो है उसे पकी हुई सब्जी या दही के मिश्रण में डाल दें। और कढ़ी को पकाने के लिए अब गैस को बिल्कुल धीमा कर दें। गैस इसलिए धीमी करने के लिए कहा जा रहा है कि ताकि दही जो है ना वो फटे नहीं। दही और मसाले के मिश्रण को पैन में डालें, इसे 1-2 मिनट तक गर्म करें और याद रखें इसे उबालना नहीं है, बस किनारों से हल्के बुलबुले आने तक गर्म करना है और गैस बंद कर दें। आपका स्वादिष्ट मोर कोलंबू यानी कि दक्षिण भारतीय कढ़ी बनकर तैयार है। इसे आप चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं।
1: बिल्कुल, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो इसे बना सकते हैं। भाई कुछ डिफरेंट है ना, वैसे तो कढ़ी हम लोग बनाते ही हैं, पर ये डिफरेंट कढ़ी जो आज आशीष बनाकर लाए हैं इसे आप लोग जरूर ट्राई करें।
0: फिलहाल अभी आ रहा है प्रोग्राम का, आइए अगला गाना।

0: आशीष देखो ना, बात करते करते पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया।
1: और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारा प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। तो मुझे यानी आरजे आशीष
0: और ऋतु को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियात तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि देश में अब तक लगभग 83% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। लगभग 315 जिलों में वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना है और इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही सीमित है। इनमें से अधिकांश जिले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हैं। प्रदेश सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्लों की गायों पर आधारित डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान देगी। पात्र गोपालकों को अधिकतम 11,80,000 रूपये तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत इकाई लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा और महिला पशुपालकों को प्राथमिकता

दी जाएगी। इस योजना में गिर, सहीवाल और थार पारकर जैसे उन्नत नस्लों की गायों पर धारी डेयरी इकाई स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक गोपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ के लामाटीनियर कॉलेज की शूटिंग टीम के कप्तान राजवीर सिंह कक्कड़ ने नई दिल्ली में आयोजित 39वीं उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। राजवीर ने अंडर 18 यूथ वर्ग की 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में 400 में से 383 अंक हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गंगा दशहरा व ज्येष्ठ दशमी गंगा स्नान पर्व के अवसर पर कछला बॉर्डर व कछला गंगा घाट क्षेत्र का जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय और एसएसपी अंकित शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चित्रकूट जिले के 15वें वित्त आयोग के तहत 2,62,00,000 रुपए की लागत से 5 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 1 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण चिल्ला माफी, चुरहे, केशरुवा, बरदरा, तीरमऊ और सरधुआ ग्राम पंचायतों में होगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में बीपीएचयू की स्थापना होगी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
4: और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
6: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
7: समझे जनाब यारी।
6: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ भाई, मोनाली ठाकुर की इस प्यारी सी आवाज के साथ स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 12:08 का वक्त और ये जो वक्त है वो कहता है कि भाई प्रोग्राम शत्रुपा की शुरुआत हो जाती है। और आज जो होता है डे, वो होता है स्पेशल डे हमारे जायका और बेकरी का, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसी जो कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारे व्यंजन से जुड़ी होती है। तो बस ऐसी ही बातों को लेकर के आपकी दोस्त जरीना हाजिर है एक बार फिर से। वैसे भाई मौसम ने बड़ा आज हम सभी के साथ गेम खेल दिया है। सुबह से हम सभी लोग रिसीव कर रहे थे मैसेजेस कि भाई आज कुछ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, और हम सभी को लग रहा था कुछ तो आज मौसम में बढ़िया होने वाला। लेकिन भाई 12 बजते दोपहर आते आते हम सभी के सपनों पर पानी फिर चुका है। सूरज देवता बढ़िया सा बिल्कुल चमचमा रहे हैं और रोज की तरह चमचमा रहे हैं, जहां थोड़ी सी डिसहार्टनिंग हम सभी को हो रही है कि भाई थोड़ा सा तो बारिश, मतलब हल्की फुल्की हवा चल ही जाए। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बिल्कुल हम सभी भी ऐसे ही कायम है। आई होप कुछ शाम तक बढ़िया सा मौसम कमाल दिखाए। और आज जिस तरह से हम बात करते हैं ना शत्रुपा में आज के सेगमेंट पर, तो मैंने सोचा कि जब हम भारत की बात करते हैं, हमारी कंट्री की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो है लाजवाब खान पान, जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर शहर, हर राज्य, हर गली का एक अपना स्वाद है, जो अपने साथ इतिहास, संस्कृति और लोगों की भावनाओं को बिल्कुल समेटे हुए है। तो चलिए कुछ ऐसा ही बढ़िया बढ़िया मैं परोसने वाली हूँ आपकी प्लेट में भी। क्या है वो बात, उसके लिए फिलहाल इंतजार करिए। अगला गाना जो है वो भेजूंगी आप सभी के रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए इस गाने को। और उसके बाद बहुत सारी बातें करेगी आपकी दोस्त जरीना आज आप सभी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.

जी हाँ दोस्तों, फिल्म बर्फी का था ये प्यारा सा गाना आप सभी की रेडियो सेट पर। और इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को, अपने घर में अगर आपको लगता है कि ना आपको घड़ी मिलाने की जरूरत है तो बस मिला लीजिए, 12:18 का वक्त हो रहा है। और साथ ही ये देखिए सेकंड जो है 58, और ये देखिए बस 58 कहा ही था उसके बाद ये सेकंड्स पूरे हो चुके हैं, 12:19 का वक्त हो चला है। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज है वेंसडे, तो आज हम बात करते हैं भाई कुछ खान पान की। कहते ना जायका सिर्फ खाने में नहीं होता जनाब, कभी कभी पूरा शहर अपनी पहचान थाली में परोस देता है। यस, यही है बिल्कुल हमारे देश की पहचान, जहां पर हजार चीजें उसको जब यूनिक बनाती हैं तो उनमें आता है एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो है उसका खान पान। देश के अलग अलग जो हमारे प्रदेश हैं या राज्य हैं, अलग अलग तरह से खानों से बिल्कुल भरे हुए हैं। जब कोई कहीं घूमने जाता है ना, तो घूमने के साथ साथ वहां के अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनमें क्या कुछ खास है, इसकी लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई जाने क्या खाएं यहाँ पर और क्या खास है। जितना हमारा यूनिक देश है उतना ही यूनिक यहाँ का खाना भी है। वही कहते हैं ना, जुबान पर जो स्वाद ठहर जाए वही असली पहचान बनता है, और भारत का हर व्यंजन अपने प्रदेश का मेहमान नवाजी भरा पैगाम बनता है। यस, यही होता है। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो कौन भूल सकता है पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी। यस, सर्दियों का मौसम हो और बिल्कुल मक्खन से सजी हुई रोटी हो और साग हो तो ऑब्वियसली किसको नहीं भाता। सेम एज जब हम बात करते हैं पंजाब की खुशबू की थाली में जब वो उतर जाती है ना, तो सीरियसली हर किसी का मन डोल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पता है स्पेशली ये सारी डिशेस को ट्राई करने इन प्रदेश में जाया करते हैं। वहाँ के जो पराठे हैं या परौंठे जिनको हम कहते हैं, वो शायद ही पूरे देश में उस तरह के मिले। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना अलग अलग प्रदेशों की, तो हमेशा बहुत सारी खुशबू, खाने की खुशबू ये प्रदेश अपने में समेटे हुए हैं। ऐसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो दाल बाटी चूरमा। यस, मतलब बहुत ज़्यादा कृति जो है वो अपने आप को खाने में भी समेटे हुए हमारे देश में। तो ऑब्वियसली जब हम देखें इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा ब्लेस फील होता है कि हम उस देश में बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारी थाली में।

नजर आती हैं। और जैसे कि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि घी में डूबी बाटी, मसालेदार दाल और मीठा मीठा चूरमा, तीनों मिलाकर ऐसा स्वाद रचते हैं जिसे एक बार खाने वाला इंसान कभी भूल नहीं सकता। तो बस ये है राजस्थान की खासियत। तो आज हम बात करेंगे ऐसे अलग अलग जगहों पर और क्या क्या यूनिक चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपसे करने वाली हूँ वो ये है कि भारत में खोती हुई पारंपरिक डिशेज, शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो आज से 20-25 साल पहले हम सभी के घरों में बना करते थे, अब शायद वो हमारे थालियों से मिस होते जा रहे हैं। तो उसकी भी बात करेंगे, बट फिलहाल अभी जो है वो अगला गाना है चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज में, बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंजॉय करते हैं इस गाने को और उसके बाद बहुत सारी बातें आप सभी के साथ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: टूटना बिखरना और फिर से सवरना, चंद लम्हात में एक उम्र बसर करना, यूं तो तमाम रंग हैं इस रुपहली जिंदगी में, पर मुझे हर वक्त है तेरे नूर से तरबतर रहना। मकतबे इश्क में मसरूफ रहने की कवायद से दो चार रहने वाला दिल दर्दमंद नजर आने लगे, गजलों के मायने जब खुद को अपने अपने से लगने लगे, एक शायर के अशार जब दास्ताने हयात बयां करने लगे, तो जहन से निकले सुरीले सफरनामे की तस्दीक किया करता है आबशार। सुनिए हर रात 9 से 10 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: कितनी मुद्दत बाद मिले।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, अरिजीत की आवाज थी अभी अभी आप सभी के रेडियो सेट पे। और इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को कि भाई प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, और हम सभी बात कर रहे हैं भारत के यानी हमारे देश के अलग अलग जायकों की। भाई कहते हैं ना कि खुशबुएं जो हैं वो सिर्फ महकती नहीं है बल्कि याद बन जाती हैं, और जब वो खुशबू है जो शायद ही किसी के जहन से कभी भी जाए, हैदराबाद की बिरयानी हो या लखनऊ की बिरयानी हो, ऑफकोर्स हमेशा से एक बहुत बड़ा कंपटीशन दोनों में रहा है, और जो बिरयानी के शौकीन है शायद ही वो इन दोनों स्वाद को कभी भी भुला पाए या कभी भी इनसे दूर होना चाहे, है ना। करते ना पश्चिम की तरफ यानी पश्चिम भारत की रंगत का, तो राजस्थान की हम बात कर ही चुके हैं, दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला, यस, और साथ ही में खांडवी, महाराष्ट्र का वड़ा पाव और पूरन पोली। पश्चिम भारत का हर व्यंजन अपने आप में एक पहचान है। यहाँ का खान सादगी और स्वाद का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और सीरियसली जब इस जगह, इस साइड यानी वेस्ट साइड हम जब भी जाते हैं तो इनकी जो खासियत है, इनका जो लुत्फ उठाना है, वो आई डोंट थिंक कोई भी कभी भी मिस करना चाहेगा। आपको पता है स्पेशली राजस्थान जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि हम लोग भैया पानी से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं। यस, जिस तरह से वहाँ के लोग घी का, देसी घी की हम बात करें, इस्तेमाल करते, कहा जाता है शायद ये उन्हीं की कैपेसिटी के उतना उस तरह से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, और वो खाने में जो खुशबू है उनके घी की वो हमेशा ही उस खाने को महकाती रहती है। तो जब भी आप जाइए तो ज़रूर ट्राई करिएगा इन सारी डिशेज को, और बिल्कुल भी इनसे अछूता ना रहिएगा। अच्छा, इधर हमने अगर बात की तो ऑब्वियसली हम बंगाल की भी बात जरूर करना चाहेंगे। बंगाल का रसगुल्ला, यस, रसगुल्ला, और ये शायद अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। जो मीठे के शौकीन लोग हैं या जिनको मीठा पसंद आता है वो ऑब्वियसली इसको खाए बिना रह नहीं सकते। और आपको पता है एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, यूजली बंगालीज हैं या जो बंगाल के लोग हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी सुबह होती है तो नाश्ते में कुछ भी खाने से पहले वहाँ के लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। और जितनी यहाँ पर हमारे लखनऊ, हमारे यूपी में नाश्ते में पूरी, सब्जी, पराठे ये सब चलते, उतना ही वहाँ पर नाश्ते में मिठाइयाँ भी चलती हैं। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट ज़रूर जाइए, सॉरी बंगाल ज़रूर जाइए, और वहाँ पर आप ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिठाइयों का आप स्वाद ज़रूर चख सकेंगे। तो बस देखिए, इसी तरह सैर करते करते और मीठे मीठे व्यंजन को सूंघते, खुशबू उनकी लेते और महसूस करते हुए वक्त बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम उन डिशेस की भी बात करेंगे आज जो हमारी थालियों से कहीं ना कहीं मिस होती जा रही हैं। तो बस थोड़ा सा ज़रूर वक्त मैं चुराऊंगी, गाना आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रही हूँ, और उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी ही। तो चलिए इस गाने को इन्जॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, जितने मीठी मिठाई होती है मुझे लगता है उतनी ही मीठी होती है इन फीमेल सिंगर्स की आवाज़ भी। जैसे कि मोनाली ठाकुर की आवाज़ थी अभी अभी आप सभी के रेडियो सेट पे, और इतना प्यारा सा गाना आप उन्हीं की

आवाज में सुन रहे थे फ्रॉम द फिल्म दम लगा के हईशा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बता देते हैं कि आज प्रोग्राम शत्रुपा में हम सभी बात कर रहे हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से बढ़िया बढ़िया खाने हैं जो मशहूर हैं। और अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सोशल नेटवर्क के या सोशल साइट्स के हमारी जिंदगी में आने से बहुत सारी चीजें नेगेटिव तो हुई, लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव हुई जो मतलब खान पान के सेंस में, वो ये है कि हम यहाँ अपने घर बैठे या अपनी जगह पर रहते हुए पूरी दुनिया पूरे देश के डिशेज के बारे में पता कर पाते हैं। और जब हम वहां जाते हैं तो बड़ी इजीली हम उन चीजों को देख करके पहचान लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं ना। मतलब आज से कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो इतना हम सिर्फ सुनते ही थे, हमें नहीं पता था कि फला डिश कैसी दिखती है, कैसी होती है या उसका फीडबैक क्या होता है। लेकिन जब हम इस तरह से सोशल साइट्स या रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हमारी नजरों के सामने आती हैं। और सीरियसली नजरों के सामने क्या आती हैं, नाक में वो खुशबू जरूर बिखेर देती हैं जो इन खानों में हम स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं ना। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम, यस ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया है। मतलब अगर आप यूपी में भी देखें तो बहुत ज़्यादा लोग साउथ इंडियन डिशेस भी खा रहे हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट्स ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि साउथ इंडियन डिशेज जो हैं वो सिर्फ वही सर्व की जा रही हैं, या सिर्फ पंजाब की खुशबू, या सिर्फ जो इधर राजस्थान का खाना है वो सर्व किया जाता है। तो एक संस्कृति का कहते हैं ना मिंगल होना, मेल जोल जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हम जिन जगहों पर रहते हैं वहां बढ़ चुका है, जो शायद बहुत ही अच्छी और बड़ी ही गर्व की बात भी है। और बिल्कुल ऐसे ही हम बिल्कुल हमारे देश में सबसे ऊपर का पोर्शन कैसे छोड़ सकते हैं, कश्मीर का रोगन जोश और गोवा की फिश करी, एमपी का पोहा जलेबी, छत्तीसगढ़ का चीला हो या झारखंड का धुसका, अगर आपने खाया हो तो सीरियसली आपको बेहद पसंद आएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का हर कोना अपनी थाली में एक नई कहानी परोसता है। यही विविधता भारत को स्वादों का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा देश बना ले जाती है ना। यही हम बात अगर देखें तो ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कहीं मिठास दिल जीत लेती है और कहीं मसाले जो हैं वो यादगार बन जाते हैं। Yes, तो ये तो हो गई बात हमारे देश में अलग अलग जगहों के अलग अलग खानों की। लेकिन एक जो बात हम हमेशा से आपसे करना चाहते हैं, जो हमारी पारंपरिक डिशेस हैं जो खोती जा रही हैं हमारी थाली से, उस पर हमें लगता हम सभी को विचार करना चाहिए। मतलब अगर हम इन पारंपरिक, इन ट्रेडिशनल डिशेस की बात करें जो शायद आप कुछ साल पहले तक अपने घर में भी देखते थे, बनते हुए देखते थे, आपकी दादी, आपकी नानी या बहुत पहले शायद आपकी मम्मी भी वो बनाया करती थी, लेकिन अब उन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं सिर्फ मिस करते हैं। शायद इसमें एक रीज़न ये भी है कि जो वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से हम सभी पर हावी हो रहा है तो वेस्टर्न खाना भी उसी तरह से हावी हो जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो खोती चली जा रही हैं। तो उसके लिए कुछ राइम एंड रीजन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं और क्या क्या डिशेस हैं जो होनी चाहिए पर नहीं है, उसको हम बताएंगे आपको अगले कट में। फिलहाल ये अगला सा गाना जो है प्यारा सा, और ये है श्रेया घोषाल की आवाज में, इसको भेजते हैं आप सभी के रेडियो सेट पर और एंजॉय करिए इस गाने को। और आप भी जरा सोच लीजिए, माइंड में सोचते चलिए कि कौन कौन सी ऐसी डिशेस हैं, ऐसे कौन से खाने हैं जो कभी हमारे घर की, हमारी रसोई की जान हुआ करते थे और शान हुआ करते थे, आज वो शायद नहीं है, हम सिर्फ उन्हें मिस कर रहे हैं। मेरे माइंड में तो बहुत सारे हैं, आप भी सोचते रहिए। फिलहाल हम नेक्स्ट बात करते हैं उन पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आंचल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर, हर सुबह 7 बजे। अरे

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ दोस्तों, और धड़कन लखनऊ की पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जहां हम बात करते हैं आज के दिन यानी बुधवार को यानी वेंसडे को जायका या बेकरी की। और आज हम हमारे देश की अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के डिशेस को बखूबी बहुत प्यार से चख कर आ चुके हैं, और अब हम फिलहाल

जो बात कर रहे हैं वो है कि कौन सी ऐसी डिशेस हैं या कौन से ऐसे खाने हैं जो आज के समय में हम सभी की थाली से गायब हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जो स्वाद कभी रसोई की शान थे, आज बस किस्सों और यादों की पहचान है। और ऐसे बहुत सारे खाने हैं। अच्छा, मैंने कहा था आप भी सोचिए सोचिए और आपके जहन में क्या क्या आता है। खैर, ये शायद आप सोच ही रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो फटाफट से मेल करके बता भी देते हैं, क्योंकि हमारी मेल्स जो हैं वो यहाँ लगातार खुले रहते हैं। तो उसमें नीलम सिंह ने अभी बस तुरंत ही टेक्स्ट किया है कि बाजरे का राब इनकी दादी हमेशा बनाया करती थी और वो अब घरों में नहीं बनता है। यूपी सिद्धार्थनगर से इन्होंने मेल लिखा है। तो नीलम सिंह जी, आपने वैसे मेल दिया, ये प्रोग्राम मेल का था नहीं, बट स्टिल ये बहुत अच्छी चीज है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई और आपने अपने माइंड एक्सरसाइज करके मुझे वो चीज बता ही दी कि क्या आपके घर से गायब हुआ है। यस, ऐसा ही था भाई। यूपी की अगर हम बात करें तो एक समय था जहां पर लगभग हर घर में बाजरे का राब बना करता था। और ये मैंने, खैर सही बताऊं तो, खाया नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है। मेरे फादर इस चीज़ का हमेशा से जिक्र करते थे कि पहले घरों में बनता था। उनकी माँ, मतलब मेरी दादी जी, हमेशा इस चीज़ को बनाया करती थी, इस डिश को, जो अब के समय में शायद सोचना भी बेहद मुश्किल हो चुका है ना। अच्छा, अगर देखें तो अभी थोड़े टाइम पहले ही विंटर्स में मटर का सीज़न गया है और शायद ही बहुत कम ऐसे घर हों जिनमें निमोना बना हो। और निमोना एक ऐसी डिश थी जो मटर का सीज़न जब एंड होने लगता था तो घरों में ज़रूर बना करती थी। अब बहुत कम ऐसे घर बचे हैं जहां पर ये डिश अभी भी बन रही हो। वहीं कभी कभी गांवों और घरों में बहुत प्यार से बनाई जाती थी ना रागी की रोटी, जौ या सत्तू, कोदो या कुटकी, इन सब मोटे अनाजों की खिचड़ी, है ना। अब वो भी शायद विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को इजी लगता है भाई दाल चावल मिक्स किया और खिचड़ी बना दी, तो अब इन्हीं पर लोग ज़्यादा स्विच हो चुके हैं ना। मोए के लड्डू हुआ करते थे, फरा खैर पहले तो थोड़ा सा बैकडेटेड हुआ जा रहा था, लेकिन अभी जिस तरह से फिर से क्रेज़ आ गया फरा का, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी ऑल्सो कि एटलीस्ट जिस तरह से मार्केट में कुछ कुछ जगहों पर अब फरा देखने को मिल गया है, तो दिल बिल्कुल हरा भरा रहता कि एटलीस्ट ये डिश जो है वो फिर से वापस आ चुकी है ना। और सेम एज अगर हम बात करें ठुसका, ये भी कहीं ना कहीं अब हम सभी के घर से, हम सभी के किचन से विलुप्त हो चुका है। और आज की जो आने वाली पीढ़ी है ना, मतलब अभी भी हम बात कर सकते हैं, या जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए तो शायद ये सब भूली बिसरी बातें हो जाएंगी। वैसे बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आ रहा है, शायद आपने सुना हो कि एक घर में हम सभी के, खासकर लखनऊ में बना करते थे उल्टे पुल्टे बेसन के, वो भी बिल्कुल विलुप्त से हो चुके हैं। और आज से 10-15 साल पहले ये बहुत ही कॉमन सी डिशेस हुआ करती थी, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी डिशेस है जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती थी और कहीं से नुकसान भी नहीं हमारे शरीर को पहुंचाती थी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे ट्रेडिशन को, हमारी परंपरा से जुड़ी थी, तो हम सभी को हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुई थी। तो अगर कभी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर में क्या बनाए, क्या आज बनना चाहिए, तो कोशिश करिए उन डिशेस पे वापस जाने की जो आपको लगता है पहले, बहुत पहले हम खाते थे, बनाते थे, और अब वो हम नहीं बनाते। देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा सीरियसली ये चीज़ करने में, और शायद घर के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो हमारे खाने हैं ना वो सिर्फ स्वाद से नहीं जुड़े होते, वो हमारे इमोशंस होते हैं। और बहुत सारे आप भी शायद इस चीज़ को फील करते होंगे, आपके घर में बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील करते होंगे या बात भी करते होंगे, फला टाइम पे मेरी माँ या मेरी दादी वो खाना बनाया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था, और अब नहीं बनता। तो कभी हम सभी को मिलकर ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जब लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कोई ऐसी डिश ज़रूर महीने में एक बार एटलीस्ट ट्राई करें जो आपको लगता है कि अब आपकी रसोई से, अब आपके घर से, या अब आपकी यादों से गायब हो रही है ना। तो चलिए, मैं पूरी उम्मीद में हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे घरों की कोई भी ऐसी डिश जो हमेशा से चली आ रही है, वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, बिल्कुल भी गायब ना हो, बिल्कुल भी विलुप्त ना हो, इसके लिए ज़रूर कोशिश करिए। और इसी बात के साथ अब प्रोग्राम शत्रुपा से आपकी दोस्त जरीना को दीजिए इजाज़त। अगला प्रोग्राम लेकर के जल्दी से वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर छोड़े जा रहे हैं, फ्रॉम द फिल्म चलते चलते। तो एंजॉय करिए इस गाने को और जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में आतंकवाद रोधी और सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियों और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व आज अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा है। इस मौके पर हजारों भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तड़के से ही गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गए थे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और मां गंगा को पुष्प व दीप अर्पित किया। इस दौरान कई बच्चों का मुंडन संस्कार भी सम्पन्न कराया गया। ब्रजघाट और तिगरी गंगा तीर्थ स्थल पर मेले का आयोजन भी किया गया है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन और खसूसी तहकीकाती टीम SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिशजदगी के जायवकू का मुआयना किया। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामानिगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा,
1: हमें कुछ आज मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनदिम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदाम का शन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाजत

0: नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तुलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकाती टीम ने कल लखनऊ में जाए वकूह का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का एहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, आईटीए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। यूपीटेट 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अजला के 955 मराकज पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निजाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। बस हम वही हैं, आप भी वही हैं। प्रोग्राम जो है वो बदल चुका है, वो है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात। और होठों पे तेरी बात को लेकर के आपकी दोस्त जरीना फिर से हाजिर है। भाई इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल से काम होता है। हम देते हैं आपको एक टॉपिक जिसमें हमारे दिमाग में तो कुछ कुछ चल ही रहा होता है, और जब हम आपको टॉपिक देते हैं तो आपका दिमाग हमारे दिमाग से भी और भी ज्यादा तेज चलने लगता है। जो भी थॉट्स, जो भी विचार आपके जहन में आते हैं वो हम चाहते हैं कि आप हमें भेजें, किस पर? FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com पर। LUCKNOW वाला लखनऊ है, LKO मत टाइप करिएगा। FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com इस पर भेजेंगे आप अपने विचार हमारे टॉपिक पर, और हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे आपसे भी और हमारे बाकी सभी लिसनर से भी। भाई और ये जो म्यूजिक का तड़का है वो तो ऑब्वियसली हमेशा ही लगता रहता, तड़के पे तड़का, तड़के पे तड़का, बस इसी तरह हमारा ये जो खिचड़ी है वो पका करती है। तो आज प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। होता क्या है ना, हम सभी अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल तब मानते हैं जब हमें लगता है ना कि भैया बस अब अच्छे से जिंदगी सेटल होगी, बढ़िया जॉब लग गई है, अच्छा खासा पैसा वैसा आने लगा, घर वर बनवा लिया है, बस अब हमारी जिंदगी बिल्कुल सेटल्ड है। और लोगों को लगता है वही इंसान सक्सेसफुल है जो ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में कर पाते हैं। लेकिन क्या यही इनफ है, या इतने से ही आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी सज रही है और संवर रही है? इसमें एक फैक्टर जो ऐड होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो होता है हम सभी का कैरेक्टर, यानी हमारा चरित्र। अब यहाँ पर जहाँ इंसान आजकल की भागदौड़ में फंसा हुआ है, पैसा कमा ले, ये कर ले, वो हासिल कर ले, गाड़ी खरीद ले, घर बनवा ले, ये सारी चीज़ों में जो इंसान है वो अपना कैरेक्टर यानी चरित्र का निर्माण जो है वो भूलता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो चरित्र निर्माण है वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे आज के लिए कितना जरूरी है? दोस्तों एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि हर एक इंसान पैसा कमा सकता है, अपने भविष्य को सुधार सकता है, अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकता है, लेकिन ये जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है ना, वो आने वाली पीढ़ियों को सुधारती है। वो आपके कहते ना खानदान, जो घर परिवार तो अलग बात हो जाती है, एक होता ना खानदान का निर्माण करना, वो करती हैं, वो पुश्तों का निर्माण करती हैं जहाँ पर लोग आपकी बातें करते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि फला इंसान का जो दादा थे या फला इंसान के जो पिताजी थे वो इस तरह के हुआ करते थे। तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि कैरेक्टर का यानी चरित्र का निर्माण करना कितना जरूरी है, वो चाहे आने वाली जनरेशन के लिए हो, या परिवार को सुधारने के लिए हो, या परिवार को बहुत खूबसूरती के साथ चलाने के लिए हो? तो बस अपना मैसेज हमें टाइप करिए FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com पर। और फिलहाल कुमार सानू की आवाज में ये बढ़िया सा ट्रैक आ गया आप सभी की रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ दोस्तों, धड़कन लखनऊ की पर प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई जिंदगी में चरित्र या कैरेक्टर का निर्माण करना कितना जरूरी हो जाता है। मेल्स यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ कुछ मेल्स यहाँ पर शामिल करना मैं शुरू कर देती हूँ। किसका किसका आया है भाई? सुल्तान रजा साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से है ये मेल? कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से है। और इन्होंने देखिए टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा है और ये हमसे कहते हैं कि 8 से 12 बजे वाला प्रोग्राम भी लेकर आइए कभी। ओके, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 8 से 12 वाला भी प्रोग्राम लेकर आऊँ। अच्छा, रामराज जी क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमो, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष धी, नीरज मधु और बजरंगी काका, रामचरण प्रजापति। तो इन्होंने लिखा सबसे पहले हमारी तरफ से बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद दिया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने लिखा है कि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में टॉपिक नहीं बताया और गाना सुना दिया। अच्छा ठीक है, तो मैंने गाने के बाद बता दिया। अब आप आराम से अगर अभी भी टाइप करते हो ना, अगर आप टाइप करने में 10 मिनट भी लेंगे ना, उसके बावजूद हम आराम से आपका जो मेल है वो पढ़ पाएंगे, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। और दूसरी चीज़, हमारे पास तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप हाथ से टाइप ना करिए, आप बोल कर टाइप करिए और फटाफट से हमें भेज दीजिए। ओके, सुधाकर जाधव जी क्या लिखते हैं? प्रोग्राम होटो पे तेरी बात, जरीना मैडम, इस प्रोग्राम के अच्छा टॉपिक ये भी चाहते हैं कि हम इनको पहले ही बता देते, क्योंकि हमारे को ट्रॉफी के बारे में लिखने में टाइम, अच्छा टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते थे, आपने हर बार ट्रॉफी लिख दिया है। और आज के टॉपिक पे ये लिखना चाहता हूँ कि चरित्र अच्छा हुआ तो दुनिया में उस इंसान की इज्जत की जाती है, इंसान के चरित्र अच्छा हुआ तो लोग उनकी दो बातें अच्छी सुनते हैं, मतलब उनकी बातें जो हैं वो ध्यान से सुनते हैं, शायद ये कहना चाह रहे होंगे। और जिसका चरित्र अच्छा होता है वो बहुत ही भाग्यवान होता है। यस, बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिसका चरित्र ऊपर वाला अच्छा दे देता है वो शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे सक्सेसफुल और सबसे बढ़िया इंसान होता है। क्योंकि एक बार इंसान ना आपका पैसा भूल सकता है, आपकी शोहरत को भूल सकता है, आपने जो नाम कमाया उसको भूल सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका नाम ताउम्र चलता है। लोग आपको हमेशा आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से याद रखते हैं और भाई मिसालें देने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है वो मेल आया है किसका भाई? मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रही हूँ। और इन्होंने लिखा है, मैं रामायण का पाठ जब कहीं भी होता है तो मैं जाता हूँ। और इन्होंने लिखा है, गाने के साथ साथ ढोलक भी बजाता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे अपना प्यार देते हैं और इससे मुझे लगता है कि लोग आगे भी मुझे याद करेंगे। और मेरे रेडियो दोस्त हैं कुलदीप जी उधौली, ये कहाँ से क्या है आगे आपने लिखा नहीं, आकाश जी मरारपुर से, अच्छा रिंकी पिंकी और गुलाबशाह जी सभी लिसनर इनके दोस्त हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये जब रामायण का पाठ होता है तो वहाँ पर गाते हैं और बजाते भी हैं तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं ना। अच्छा एक चीज़ सच सच बताइएगा ना, ये चीज़ ज़रूर होती होगी पिंकू जी, कि जो आपको उससे लोगों का प्यार

प्यार पैसों के रूप में, आर्थिक रूप में मिलता होगा, उससे कहीं ज्यादा जो प्यार वहां पर लोग लुटाते होंगे आप पर, उसमें ज्यादा मजा आता होगा ना, सच सच होगा, बताइएगा। मतलब अभी हैं हम आपके साथ तो हाँ या ना में टेक जरूर करिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं, और जब आपका करेक्टर, आपका चरित्र अच्छा होता है तो इस तरह की मूवमेंट्स, इस तरह की खुशी का खजाना आप सबको आसानी से मिल सकता है। मोनो सेठ जी क्या लिखते हैं, भाई जरीना जी नमस्ते, कैसी हैं आप, उम्मीद है अच्छी होंगी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। टॉपिक दोहराने की कृपा करें तो टॉपिक हमारा ये है कि जिंदगी में चरित्र यानी करेक्टर का निर्माण क्यों और कितना जरूरी है। इस पर मोनो जी आप भी अपनी राय भेजिए। नेक्स्ट है सतीश अनेजा जी लिखते हैं, सलाम जरीना बहन जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं, हमारी जिंदगी सार्थक तब होती है जब हम अपना किरदार साफ सुथरा निखार कर रखते हैं। हमारा चरित्र ही हमारी पहचान बनता है। जिंदगी का एक मजबूत वाला उसूल बना लो कि ईमानदारी कायम करते हुए सबसे मोहब्बत से पेश आएंगे। जब हम इस सोच पर चलेंगे आपको सुकून तो मिलेगा ही, समाज में आपकी पहचान बनेगी, आपका चेहरा सामने या जहन में भी आ जाए तो दूसरे के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, तब यकीनन आप बादशाह हैं। बहुत प्यारी बात सतीश जी, और हमेशा ही आप बहुत ही अच्छी, बहुत गहरी बात लिखते हैं और बहुत ही साफ साफ, बहुत प्यारा आप लिख कर देते हैं। सीरियसली जिस तरह से आप फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हाईलाइट भी कर देते हैं, हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है, और बहुत ही गहरी गहरी बातें भी आप लिखते हैं। हम जिंदगी के बादशाह सीरियसली तब हैं जब हमें जहनी सुकून हो, और ये तब होगा जब हम हमारे काम के साथ, हमारे आर्थिक शोहरत के साथ साथ जब हम समाज शोहरत भी हल करते हैं ना। सतीश अनेजा जी ने फिर से ही मेल लिखा था, उसमें ये लिखना भूल गए थे कि कहां से इन्होंने मेल भेजा है, तो चंडीगढ़ सिटी से है सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी, और ये दोनों साथ में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, हम गाना बजाने वाले थे और उसके बाद एक और मेल आ गया, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आपके लिए गाना पेश करती हूँ। मोहम्मद आसिफ जी लिखते हैं, कहाँ से, हैदराबाद तेलंगाना से ये हमें सुन रहे हैं, और लिखते हैं, जरीना अपी, सच्ची सफलता का आधार केवल धन या पद प्राप्त कर लेना नहीं होता है, चरित्र ही आपकी सफलता को स्थायी और सार्थक बनाता है। सही निर्णय लेने की क्षमता, एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है, और ये मुश्किल परिस्थितियों में भी व्यक्ति को डिगने नहीं देता। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, बबीता राव व रोशनी, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है। आई थिंक मोहम्मद आरिफ जी ने ये मेल लिखा है और ये सबके नाम लिख दिए हैं। तो खैर, बात आपने बहुत सही लिखी है कि मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति ना आसान की जगह हमेशा सही रास्ता को चुनता है, और यही रास्ते जो हैं उसको वो दुनिया में, समाज में अलग बनाते हैं, है ना। तो चलिए, अभी और भी मेल्स आ चुके हैं यहाँ पर। सुधाकर जाधव जी का भी मेल आया हुआ है, उसको हम बाद में लेते हैं। फिलहाल जो अगला गाना है वो आप सभी की रेडियो सेट पर भेजेंगे, और आप भी अगर कुछ हमें लिख कर देना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में पैसा, नाम, शोहरत, इन सब के साथ साथ कैरेक्टर का निर्माण यानी चरित्र का निर्माण कितना जरूरी हो जाता है, लिखकर भेजिए हमें अपने ओपिनियन fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इस गाने को, फ्रॉम द फिल्म वीर जरा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
5: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
4: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

हैं तो फटाफट से मेल शामिल करना शुरू कर देते हैं। रामेश्वर जी ने लिखा है, होटू पे तेरी बात कार्यक्रम बहुत प्रस्तुतकर्ता मतलब मुझे सादर प्रणाम इन्होंने लिखा है और हमारी तारीफ लिख दी है। मुंगिसारपुर कानपुर देहात से ये मेल आया है लेकिन टॉपिक पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो रामेश्वर जी, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कि आप प्रॉपर कुछ हमें हमारे टॉपिक पर लिख कर दें। अच्छा, सुधाकर जाधव जी ने फिर से मेल लिखा है, लिखते हैं मेरा मेल शामिल किया आपने, शब्द गलत हुआ, ट्रैफिक वो भी बोल दिया, लेकिन इन्होंने कहाँ से मेल किया ये मैंने नहीं बताया। तो भैया मैं बता देती हूँ, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये मेल आया था और बहुत सारे लोगों के इन्होंने नाम लिख दिए हैं। अब ये नाम मैं क्या करूँ, देखिए अगले प्रोग्राम में ले लेंगे। होता क्या है ना, आप लोग हॉटमेल का कंटेंट भी आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप यही सेम चीज आपके हॉटमेल में भी नजर आती है। तो इतने सारे लोगों के नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास वक्त मुश्किल से 20 से 22 23 मिनट होगा हमारे पास। तो अब यहां पर भी हम हॉटमेल वाले कंटेंट लेंगे तो थोड़ा सा वक्त जाया हो जाएगा। तो देखिए, मैंने बता दिया आपने कहां से भेजा है मेल और इसके आगे अभी और कुछ भी नहीं। वकील अहमद जी क्या लिखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज अच्छी लगती है, होटो पे तेरी बात अच्छा लगता है, चरित्र का होना बेहद जरूरी है, हम सबका नाम उससे अच्छा होता है। और इसके आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। कटका हथूरी जिला सीतापुर से, इस समय हम आम के बाग में साहिबा अंसारी शाजिया अंसारी के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए, लेकिन कुछ बहुत अभी ये मुझे असरदार कंटेंट नहीं मिल रहा है आपके मेल्स में। मतलब जो हम पढ़ना चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे आप सोच रहे हैं और जो आपको लगता है वो आप लिखे, तो शायद वो अभी मुझे बहुत अच्छा वाला नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी बट अभी तो देखिए आगे बढ़ते हैं। विनीत कुमार जी क्या लिखते हैं, विनीत कुमार लिखते हैं ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया व नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून और शुभ दोपहरिया आपको भी। और अच्छा, जो गाना अभी हमने बजाया इनको अच्छा लगा, इन्होंने लिखा है आपने जो विषय लिखा है उस पर मेरा कहना है कि पैसा रुपया तो सभी के पास होता है लेकिन पैसा सभी जगह नहीं काम करता है। कुछ अच्छे जो दोस्त हैं या उनसे अच्छा व्यवहार जो है, अच्छी अच्छी बातें उनकी और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जो रवैया होता है, अच्छी सीख जो होती है, और फिर से इन्होंने रिपीट किया, अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें जिंदगी में बहुत मैटर करती हैं। हाँ, ये मैटर तो करती हैं। देखिए, ये तो सब चीज़ें हम सीख रहे होते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में जब हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं तो वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ये शायद आजकल ना जिंदगी से गायब होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, हर पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छी पढ़ाई वो कर लें, अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छी जगह करियर सेटल कर लें, लेकिन शायद इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आजकल लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि कैरेक्टर का निर्माण कितना ज़रूरी है ना। एक छोटे सा मतलब बहुत छोटा सा आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने कभी किसी से सुना हो या आपने कभी किसी के लिए एक छोटे से प्यारे से मीठे से बोल कुछ बोल दिए हो, वो इंसान के जहन में हमेशा ताउम्र जिंदा रहता है ना, वो हमेशा गूंजा करता है। तो जब ये इतनी छोटी सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो कैरेक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखते हैं नेक्स्ट किसका मेल आया। रोशनी रावत का लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत झकास, एकदम लल्लन टॉप लग रहा है इनको। ओके, मेरा नाम रोशनी रावत है, गाँव बहमना तहसील सफीपुर उन्नाव से इन्होंने मेल लिखा है और लिख दिया है टॉपिक। टॉपिक पर क्या है, उन्होंने ग्रीन कलर से लिखा है, चरित्र जीवन का वो अंग है जो मरने के बाद भी नहीं भूलते लोग, अच्छा करो या बुरा सब कुछ चरित्र से जुड़ा होता है। आज मेरी पहचान मेरा चरित्र ही है, पैसा तो आना जाना है, साथ में आपकी यादें ही रहती हैं। बहुत प्यारी बात लिखी है रोशनी आपने, और ये लाइन जो आपने बीच में लिखी है, अच्छा करो या बुरा सब कुछ चरित्र से जुड़ा होता है। यस, हम सिर्फ पॉजिटिव वे में क्या, नेगेटिव में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी लोगों को याद रहता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि लोगों के जहन में अच्छी यादें छोड़िए, अच्छी चीज़ें, और जो आप अच्छा करते हैं वो अगर आप लोगों के जहन में छोड़ पाते हैं तो शायद ये ज़िंदगी का बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत प्यारा मेल है रोशनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे से मेल के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बात के लिए। अंजू ने क्या लिखा है, लिखते हैं मैम, हेलो जरीना मैम, मैं अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहती हूँ फॉर पर्सनल रीजंस। ओके, और इन्होंने टॉपिक पर लिखा है कि मेरा मानना है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट माँ बाप ही बनाते हैं एंड संगत सही हो तो आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बनता जाता है, एंड कैरेक्टर है तो मन में शांति रहती है, और जो बुरे लोग होते हैं ना वो आपको गाली दे देते हैं
बट आपके स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर की वजह से वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। बहुत सही बात आपने लिखी है। और आगे ये लिखती है, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माँ बाप ही बचपन से बच्चे का बनाते हैं और अच्छी एडुकेशन एंड मोरालिटी की सीख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हो। और बहुत प्यारा मेल है अंजू जी, आपने कहाँ से मेल लिखा है ये आप मुझे बता दीजिएगा, खाली मेल लिख करके वो मैं पढ़ूंगी नहीं। बट बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि पेरेंट्स का, परिवार का और घर में जो सदस्य हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी के भी चरित्र के निर्माण में, है ना। हम जो सीखते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनते जाते हैं। आप देखें ना, एक बच्चा बिल्कुल उसी तरह बोल रहा होता है घर में जैसा उसके घर वाले बोल रहे होते हैं। वही शब्दों का इस्तेमाल बहुत बार उन्हीं सेंटेंसेस को भी वो इस्तेमाल कर लेता है जो घर में परिवार में बोले जाते हैं, तो चरित्र पर भी बिल्कुल वैसा ही असर होता है। मोनू सेठ जी, आहिल खान जी, आपके भी मैसेजेस यहां पर हैं, यहां पर मेल्स आपके आए हुए हैं, तो ये मेल्स मैं शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले जो अगला गाना है वो भेज देते हैं आप सभी के रेडियो सेट पर, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है ना, तो अब गाने की बारी आ ही जाती है और इसके बाद हम और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और अगर आप भी कुछ हमें बताना चाहते हैं, चरित्र कैरेक्टर का निर्माण क्यों और कितना हमारी जिंदगी में जरूरी है, तो इस पर हमें मेल करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप।
4: जी हाँ, आई एम सो श्योर कि आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज प्रोग्राम हो टू भी तेरी बात में मैंने टॉपिक दिया ना कि चरित्र यानी कैरेक्टर का निर्माण क्यों और कितना जरूरी है, उस पर लगातार आपके बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। तो बस इतने सारे मेल्स

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊंचा उठना बड़ी बात नहीं होता, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी मुमकिन है जब जिंदगी में आप अच्छे इंसान बने रहते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं और अपने कैरेक्टर को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। 1:48 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात। और बस कुछ ही मिनट्स में मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी में कैरेक्टर यानी चरित्र का निर्माण क्यों और कितना जरूरी है। बहुत सारे मेल्स और भी आए हुए हैं और मैंने सही टाइम पे मेल्स को पढ़ना शुरू कर दूंगी। मतलब होता क्या ना कि जब लास्ट टाइम बचता है और मेल्स पढ़े तो बहुत सारे लोगों के मेल्स रह जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं आराम से वक्त लूंगी, आपके मेल्स पढ़ूंगी और उसके बाद आपके लिए गाना बजाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट जो मेल है भैया मोनू सेठ जी का, लिखते हैं पद और चरित्र के बीच गहरा संबंध है। पद इंसान को केवल अधिकार, जिम्मेदारी और पहचान देता है, लेकिन उस पद की सार्थकता, सम्मान और सफलता उसके चरित्र पर निर्भर करती है। एक अच्छा चरित्र किसी भी ऊंचे पद का असली आभूषण होता है। इतिहास गवाह है कि कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी अपने बुरे चरित्र के कारण इतिहास में निंदनीय बन गए, जैसे रावण। लेकिन दूसरी ओर कबीर जी और गांधी जी जैसे महान लोग बिना किसी औपचारिक राजकीय पद के अपने चरित्र की वजह से दुनिया में पूजनीय है। बहुत बहुत बहुत प्यारी बात लिखी है भैया मोनू सेठ जी आपने, और बिल्कुल सही बात लिखी है। यही होता है जिंदगी में भी, मतलब इंसान बहुत ऊंचाई पर जाकर भी गिर सकता है क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। और वहीं बहुत सिंपल सिंपल जिंदगी जीकर भी इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा यादगार बन सकता है। और यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, साथ ही मुझे याद आ रही मदर टेरेसा भी, कोई बहुत बड़े पद पर नहीं थी, बहुत सिंपल से काम किया। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विभूतियाँ हैं जिन्होंने ऐसे ही अपने आप को आज भी यादगार बनाया और भविष्य में भी हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। तो मोनू सेठ जी, बहुत प्यारी बात, बहुत सटीक और बहुत सही बात आपने लिख कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और यहाँ पर और किसी का मेल आया हुआ है, किसका किसका है भाई, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी, अच्छा पिंकू सोनी जी का ये मेल है। और लिखते हैं जरीना बहन जी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा इन्होंने लिखा है मैं गर्ल नहीं बॉय हूँ, मैं समझ गई हूँ इस बात को। एक्चुअली पिंकू सोनी, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था पहले, बट अभी मैं बात इस मतलब इस बात को समझ चुकी हूँ और आप बॉय हैं। और टिकैत नगर बाराबंकी से ये हैं और इन्होंने लिख दिया है कि जब ये रामायण करते हैं तो वहाँ पर ये फ्री सेवा देते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते। बहुत प्यारी बात, और अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, क्योंकि हमने ये शायद अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि जो भी हमें आर्थिक मदद या आर्थिक हमें जो भी सुविधाएं मिलती, उससे बेहतर हमको लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, जब हमें हमारे कामों से कोई जानता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मेल लिखने के लिए। अहमद नवाब ने क्या लिखा है आइए देखते हैं। हेलो अप्पी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि इंसान का व्यवहार जिंदगी में उसकी ज़िंदगी के बाद भी कायम रहता है, दोनों जगह काम आता है। और उसके ना होने में लोग उसके व्यवहार से उसको ज़्यादा याद करते हैं, ना कि दौलत से। दौलत यहीं दुनिया में रह जाती, व्यवहार साथ जाते हैं। मैं अपने दादाजी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ, न जाने कितने कितने स्टूडेंट्स दादाजी से पढ़कर एक अच्छी पोस्ट पर हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि आज भी इनके दादाजी को उनके व्यवहार की वजह से उनके स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं और जब बोलते हैं कि अतहर सर इज़ जीनियस,

मुझे बहुत प्राउड होता है मैं उनकी पोती हूँ, मैं भी उनके जैसा बनने की कोशिश करती हूँ, एवन नवाब संडीला से। तो एमन जी बहुत प्यारी बात आपने लिखी और आपके दादाजी आपकी इंस्पिरेशन है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतिहास में या बड़े सक्सेसफुल लोगों में अपने आप अपने जो आइडल हैं उनको ढूंढते हैं, और आपने अपने घर में ढूंढा हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है सोनू परवाना जी का मेल, लिखते हैं टॉपिक बहुत गंभीर है लेकिन कुछ श्रोता सिर्फ नाम गिनवाने में लगे हैं, कृपा टॉपिक से ही जुड़े रहिए, मेल शामिल करें। इन्होंने लिखा है चरित्र एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, धन दौलत सब वापस आ सकता है, इसलिए चरित्र को सुंदर बनाए रखें और चरित्र आपका अपना आप ही बनता जाएगा। बहुत प्यारी बात लिखी सोनू जी। और यस हाँ, ये चीज़ है, मतलब देखिए आप सभी हमारे लिसनर्स हैं और सभी को लगभग सभी लोग जानते हैं, तो अगर हम कहना ये भूल जाएं कि आपने कहाँ से मेल किया, तो वो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा इशू है। और देखिए अंजू जी ने बिल्कुल ऐसे ही मुझे मेल करके बता दिया है कि वो कहाँ से हमें मेल लिख रही हैं, और फिर से इन्होंने कहा है कि प्लीज़ लोकेशन मत बताइएगा, और अंजू जी मैं जानना चाहती थी आपने बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। देखिए कहाँ से मेल कर रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हाँ छूट गया तो ठीक है, आपने मेल फिर से कर दिया और मैंने बता दिया, बट आप सभी हम सभी के लिए बहुत नोन इंसान हैं, बहुत रोज़ ही आप हमसे जुड़ते हैं और रोज़ ही हम आपके मेल्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बहुतों का तो हमारे जहन में हमेशा से ही रहता है कि ये मेल फला जगह से ही आया होगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक सही बात बताऊँ तो मुझे कभी कभार लगता है ना, एंकर से ज़्यादा जो आप हमारे श्रोता है ना, या जो आप हमें मेल्स करते हैं, आप लोग ज़्यादा फेमस हैं, ट्रस्ट मी, ये है। नेक्स्ट है प्रवीण जी, चरित्र के निर्माण से अपनी आत्मा शुद्ध होती है, हम सभी के दिलों में जगह बना लेते हैं लोग, बस इतना ही इन्होंने लिखा है, और कहाँ से मिलाया ये इन्होंने भी नहीं लिखा है। नरेंद्र जी क्या लिखते हैं, नमस्कार जरीना बहन, आज का टॉपिक बेहद खूबसूरत है, मेरा तो मानना है कि अपने आप में चरित्र एकदम शुद्ध और सच्चा रखना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो हमारे से। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार और मनोज सुथार जी ने ये मेल लिखा है, और आज का लास्ट मेल किसने लिखा है कि भाई आहिल खान जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जरीना पी उर्फी खान, अच्छा ये आहिल खान के नाम से आईडी, उर्फी खान फ्रॉम बुलंद शहर, और इन्होंने लिखा है लो भाई कि टॉपिक नहीं सुन पाए, तो टॉपिक पर इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। अच्छा कुछ और भी मेल्स आ गए हैं, देखिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा लेकिन जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। जय जी लिखते हैं जिसका जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं, शुद्धता होती है विचारों में आदमी होते हैं और पवित्रता होती है। इन्होंने लिखा है कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं, इंसान अपने चरित्र से ही पहचान बनाता है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, बहुत प्यारा मेल जय जी, और बहुत अच्छी बहुत गहरी बात आपने लिखी है। और इसके अलावा नेक्स्ट है अंशु गुप्ता जी, मैम जी नमस्ते, नारायण गुप्ता परिजात धाम टिकैत नगर से हूँ, वेरी नाइस सॉन्ग्स, बस इतना ही लिखा है इन्होंने, टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने प्यारे प्यारे विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। तो बस आज के प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का आखिरी मेल, अब आप सभी आखिरी मेल तो हो चुका है, आखिरी गाना भेज देती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर, और ये गाना ये है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात सीरियसली, देखिए सबने बहुत सारी बातें कह दी हैं लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, सब कुछ होगा हमारी जिंदगी में, अगर चरित्र नहीं होगा तो ये मान के चलिए आप आगे की जनरेशन को कुछ नहीं देकर जा पाएंगे, क्योंकि देखिए हर किसी को हर कुछ बनाना होता है, बच्चे पैसा कमा लेंगे सब कर लेंगे लेकिन चरित्र वो आपसे ही लेकर आगे जाएंगे, तो मेक श्योर आपका कैरेक्टर चरित्र जिंदगी में सबसे ऊपर हो। तो चलिए अब मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत, अगला प्रोग्राम हॉटमेल लेकर जल्दी से वापस आती हूँ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श

0: जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटल

0: डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकिंजिया ने 5 से 14 जुलाई तक

ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी दोस्तों, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं ना। एक वक्त हुआ करता था, ये गाना जो अभी आपने सुना है वो बड़ा ही ट्रेंडिंग सॉन्ग था, फिल्म भी बहुत ट्रेंडिंग थी।

जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं ना। एक वक्त हुआ करता था, ये गाना जो अभी आपने सुना है वो बड़ा ही ट्रेंडिंग सॉन्ग था, फिल्म भी बहुत ट्रेंडिंग थी, और अभी भी आप जितनी बार भी इन गानों को, इन फिल्मों को देखते हैं ना, उतनी बार आपको पसंद आती है और आप कहीं ना कहीं दिल से इन फिल्मों को देखते हैं ना। और आपको बता देते हैं, आप में से ही किसी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, जितने मेल्स मैंने पहले पढ़े थे उनमें से ही ये गाना रिक्वेस्टेड था। अब आगे के मेल्स मैं फटाफट से शामिल कर लेती हूँ, तो देखते हैं अगला मेल किसका है। भैया मेरी क्यू कहाँ गायब हो गए। ओके, तो ये मिल गया, मैंने लास्ट मेल पढ़ा था सतीश जी का। तो अब नेक्स्ट जो मेल आया हुआ है वो है नितेश देवांगन जी का। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है और लिखते हैं किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर लिया जाए। तो देखिए, मेल तो आपका शामिल हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से मेल के लिए। नेक्स्ट है अकरम हुसैन प्रिंस जी, सलाम नमस्ते लिखते हैं, प्लीज अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से ये मेल आया है। अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। तो देखिए, सबके नाम भी ले लिए मैंने। कमल कांत गुप्ता जी क्या लिखते हैं, किसी भी गीत में मेल शामिल कर लीजिए। पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। ओके, नेक्स्ट मेल शामिल कर रहे थे, कमलकांत गुप्ता जी का फिर से भी आ चुका है, अकरम हुसैन प्रिंस जी का भी फिर से आया, सतीश अनेजा जी ने भी फिर से मेल लिखा है। नो, ये नहीं शामिल होगा। अब जो शामिल होगा वो है सुधांशु जी का मेल। राधे राधे, सुधांशु जी ने मेल लिखा है, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाना सुनवा दीजिए। और गाना कौन सा है? ओके ओके ओके ओके ओके, बहुत प्यारा सा गाना है, चलिए मैं देखती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि अगला जो गाना है वो आपका बज जाए। अकरम हुसैन प्रिंस जी ने फिर से मेल लिखा है, नो नो नो, बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। और ये 67 मोहाली से भी फिर से आ गया है मेल, नो फिर से नहीं शामिल होगा। नेक्स्ट जो है वो है दिग्दर्शन गौर जी का मेल, मेरठ कैंट से आया है। कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, सबके नाम थे। आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, कृपया इन फिल्मों में से कोई एक गाना इनको सुनवा दे। बहुत सारी इन्होंने लिस्ट दे दी है और बहुत ही प्यारी प्यारी से फिल्मों की लिस्ट है। वीर ज़ारा आपने लिखा है, वीर ज़ारा का भी मैंने थोड़ी देर पहले बजाया था गाना, जानम देख लो। ओके, और क्या है, ठीक है मैं देखती हूँ इनमें से कोई गाना ज़रूर अभी प्ले कर दूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी फिल्में आपने चुनकर हमें दी हैं। ओके, नेक्स्ट है रामेश्वर जी का मेल, लिखते हैं हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन जरीना को सप्रेम नमस्कार, आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉटमेल प्रतिदिन सुनता हूं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है, अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद, आज हमें फिल्म सच्चा झूठा का गीत सुना दें। और ठीक है, ग्राम व पोस्ट मुंगिसारपुर कानपुर देहात से ये मेल है। रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार। और लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जरीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें मेल किया। ओके, कुछ मेल्स फिर से रिपीट हो रहे हैं तो चलिए मैं इनको स्किप मारती हूँ, नेक्स्ट लेती हूँ। किसका है ये मेल? नमस्कार जरीना जी, आपका अभिनंदन। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, आपकी प्रस्तुति लाजवाब इन्होंने लिखा है और गाना बहुत ही प्यारा सा इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। बहुत ही सच में ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और गाना कौन सा है, लेट्स सी, अभी अगर ये बच जाएगा ना तो बस। ओके, नेक्स्ट है किसका मेल? बिट्टू गगनेजा जी। और बिट्टू गगनेजा जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार जी, फिल्म जीने की राह से ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है। और जो गाना अभी अभी मैंने आपको बोला ना था कि बहुत ही प्यारा सा गाना है ये, है ना, वो गाना था फिल्म साजन का। एंड मैं आपको बता दूं, ये फिल्म साजन का ही गाना जो है वो अगला आपके रेडियो सेट पर आने वाला है। लेकिन कुछ मेल्स अभी मैं और भी शामिल करूंगी। सुधांशु एस लिखते हैं, राधे राधे सुधांशु। अच्छा, ये मेल मैंने शामिल कर लिया है तो दोबारा

नहीं लेते हैं। सतीश अनेजा जी का भी फिर से आ गया है, और किसका मेल नहीं शामिल हुआ। आलोक कुमार खरे जी लिखते हैं, अनिल कुमार खरे, संजय खरे, अरुण खरे, मंसूर नागर, शहाबाद पिहानी हरदोई से, और गीत की फरमाइश है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ओहो हो, साजन फिल्म का इन्होंने भी गाना रिक्वेस्ट कर लिया। अच्छा, साजन ही फिल्म का किसी ने रिक्वेस्ट किया था, देखा है पहली बार भी। अब ये दोनों गानों में लड़ाई हो चुकी है, चलिए देखते हैं साजन फिल्म का कौन सा गाना अभी बजेगा, और डेडिकेट इन्होंने किया है सभी सुनने वालों को। ओके, नेक्स्ट है किसका मेल। डियर एंकर, आपको विनम्र आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि 3-4 लिसनर्स एक दूसरे का और उनके, हाँ ये आपने पिछली बार भी मुझे लिखकर दिया था, कैथल हरियाणा से ये मेल आ रहा है, और इस पर मैंने आगे बात भी आपकी पहुंचाई थी कि इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि कौन ऐसा कर रहा है कि नाम बिगाड़ कर लिख करके मेल किए जा रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम भी उसमें मेंशन कर दिया है, तो इस पर ज़रूर देखिए कार्रवाई होगी। अभी मैंने सैटरडे को ही ये बात की थी और आज वेंसडे, आई होप कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लिया गया होगा। नेक्स्ट भी मेल शामिल कर लेती हूँ फिलहाल के लिए। सुधाकर यादव जी लिखते हैं, प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, प्रथमेश सरवद, प्रणाली सानवी और कल्पना, और समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार, और फिल्म प्यासा सावन का ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके, तो चलिए काम करते हैं। इतने सारे मैंने मेल्स पढ़ लिए हैं और उनमें से जैसे कि मैंने कहा था कोई एक गाना ही बजेगा, तो ये वाला जो गाना है उसको भेजती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। और ये देखिए, देखा है पहली बार जो है ना वो जीत गया है, तो बहुत ही प्यारा गाना है। आइए मिलकर इंजॉय करते हैं इस गाने को, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और आप भी अगर कोई अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो हमें मेल लिखिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, यूथ वेव के लिए शाम 4 बजे तक का इंतजार करिए। फिलहाल आपको बता दें कि प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और आपके प्यारे प्यारे से हॉट हॉट से मेल हमारे पास हैं। वकील अहमद जी क्या लिखते हैं ये देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज अच्छी लगती है, हॉट मेल अच्छा लगता है, इनको गाने के बोल इन्होंने लिख दिया है और ये गाना सुनना चाहते हैं। अहमद मंसूरी कटका हथूरी, जिला सीतापुर से, रिंकी पिंकी और सभी का। ओके, थैंक यू सो मच मेल लिखने के लिए। और इसके अलावा और किसका है ये, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और ये डियर प्रोग्राम एंकर लिखते हैं, ग्रीटिंग फ्रॉम आवर साइड, प्लीज इंक्लूड आवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग गिवन। ओके, कहाँ दिया है आपने, ओके गाना कहाँ है, ओके किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये गाना ये सुनना चाहते हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये गाना आगे बच पाएगा कि नहीं। वैसे मुझे पूरा अच्छे से याद है, पिछली बार मैंने गाना आपका ये जरूर बजाया था। ओके नेक्स्ट देखते हैं किसका मेल आया हुआ है। अनिल जी का है, अनिल कटारिया जी का मेल है। नमस्कार जी, लिखते हैं पानीपत हरियाणा से, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा जी, फिल्म आमने सामने का गाना सुनना चाहते हैं ये। ओके नेक्स्ट है आफ्ताब अंसारी जी। आफ्ताब अंसारी जी, आई थिंक आपका मेल हम पहले भी शामिल कर चुके हैं, सो स्किप करते हैं इसको। बबलेश जी, इनका मेल हमने शामिल नहीं किया है, लिखते हैं बबलेश पनवार जी, प्रसारक महोदय जी, सप्रेम नमस्कार और गाना आप भी सुनना चाहते हैं, और पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, जैनी पवार, मनीष पवार

और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम राजपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। तो ये सारे रेडियो के दीवाने हैं जिन्होंने प्यारा प्यारा सा मेल हमें भेजा। इसके अलावा राजेश वर्मा जी का क्या मेल है, आइए देखते हैं। अपने अच्छा लिखते हैं, अपने पसंद का कोई भी गीत सुनवा दे। गोल्डन रेडियो श्रेता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, रिंकी पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और लिखते हैं आपका धन्यवाद। महेंद्र प्रसाद मोदी जी क्या लिखते हैं, गाने की फरमाइश इन्होंने भी की है। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब बिहारी बाबू, इन्होंने मिलकर मेल लिखा है। ओके, और देख लेते हैं किसका मेल छूट रहा है। यासीन अनजान जी लिखते हैं, पुरखलूस आदाब कबूल करें, आपके प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं और आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, और गीत को इन्होंने लिखा है कि सुनवा दे। साथ ही बहुत सारे नाम लिख दिए हैं, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, बिफरा नवाज, बेबी चाहत सादिया। ओके, राधेश्याम शर्मा जी क्या लिखते हैं, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा लिखते हैं धन्यवाद, गाने की फरमाइश आपने भी की है। बाबू अंसारी ने क्या लिखा है, नमस्ते आरजे विनय सर के अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा संदेश ये है कि इंसान को किसी को देख कर कॉपी नहीं करना चाहिए जो भी चीज़ें, बल्कि अपना अच्छा मतलब कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करे, अपना खुद का जज्बा होना चाहिए हर चीज़ को बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारा सा मेल और एक फोटोग्राफ भी इन्होंने ऐड कर दी है, थैंक यू सो मच। दीपेश वर्मा क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ से ये मेल आया है, पीपर रोड सरगांव, दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश और पत्थर के सनम का गाना सुनना चाहते हैं। राजेश वर्मा लिखते हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दे, और ये मेल पहले भी शामिल हो चुका है। मूसा शेख जी क्या लिखते हैं, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखें, गाने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने भी। और इसके अलावा अभी भी बहुत सारे मेल्स हैं, खैर तो एक काम करती हूँ, अगला गाना मैं प्ले करती हूँ और उसके बाद देखते हैं किसका किसका मेल छूट रहा है, तो वो मेल्स पहले शामिल कर लेंगे। तो फिलहाल ये जो अगला गाना है आप में से किसी की रिक्वेस्ट का है, मतलब इतने सारे मेल्स मैंने जो पढ़े उनमें से किसी एक ने ये गाना रिक्वेस्ट किया था, तो ये गाना आ गया आप सभी के रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और जिस तरह से मेरी स्टूडियो की क्लॉक इशारा कर रही है ना, वो कहती है कि बस अगला एक ही गाना आई थिंक बच पाएगा, क्योंकि ये जो गाना है वो लगभग ये देखिए 7.5 मिनट का बल्कि है, तो मुझे एक की भी गुंजाइश दिख नहीं रही है। लेट्स सी, कुछ मेल जरूर कवर करने की कोशिश करूंगी।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नाम हैं जो रह गए हैं, तो फटाफट से वो नाम ले लेती हूँ क्योंकि जो स्टूडियो की क्लॉक है वो इशारा करिए कि आगे शायद हम

और जो गाने हैं आपके वो नहीं बजा पाएंगे, तो किसने किसने हमें मेल्स लिखे हैं जिनके शामिल नहीं हो पाए हैं। गगनदीप थांडी जी, आपका भी मेल शामिल नहीं हुआ था। उसके अलावा दारा सिंह जी का भी मेल हम शामिल नहीं कर पाए थे, आई एम सो सॉरी। अब्दुल गफ्फार खान जी का भी मेल आई थिंक मैंने शामिल नहीं किया था। उदय भानपाल जी, आई एम सो सॉरी, आपका भी मेल शामिल नहीं हुआ था। और उसके अलावा और कोई है, और कोई है, और कोई है, लेट्स सी। मसरूर हसन जी, बहुत प्यार से उन्होंने आदाब लिख कर दिया है, आदाब आपको भी, हम मेल शामिल नहीं कर पाए। अजमत अली जी का भी हम नहीं शामिल कर पाए थे। दिलीप कुमार जी, आई एम सो सॉरी। और इसके अलावा सोम दत्त जी, जिला पटियाला से इन्होंने मेल लिखा है। और इसके अलावा नरेश जी का भी हमने मेल शामिल नहीं किया। सो जितनों के मेल आज शामिल नहीं हो पाए, अनिल मोहन जी, इन्होंने लिखा था एनी सॉन्ग, मतलब कोई भी सॉन्ग हम प्ले कर दें, तो मेल नहीं शामिल हो पाया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। अगली बार पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के मेल शामिल हो जाएं, और कुछ के गाने हमेशा से ही बजते हैं तो वो गाने ज़रूर बचे। तो चलिए, ये जो गाना बज रहा था बस यही बनता है हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक। इसी के साथ अब जरीना को दीजिए इजाज़त प्रोग्राम हॉट मेल से। अगला प्रोग्राम सतरंगी दुनिया लेकर के आपकी प्यारी सी दुनिया में जल्दी से वापस आती हूँ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ऋतु निगम है आज आपके साथ और हम आपको बता दें कि आज का हमारा म्यूजिक आर प्रोग्राम केंद्रित है नशा मुक्ति स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम। आप भी अपने विचार हमसे साझा कीजिए। ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

तो दोस्तों, नशा प्यार का कीजिए, लेकिन तंबाकू, सिगरेट, शराब और ड्रग्स का नशा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। तंबाकू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ धीरे धीरे इंसान के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नशे से दूर रहना और दूसरों को भी जागरूक करना समय की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आवश्यकता है एक ब्यूटीफुल ट्रैक की।

दोस्तों हमारे पास चंद्र प्रकाश का गुरुग्राम से मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि मेरे विचार से नशा अल्कोहल टोबैको ड्रग्स या किसी भी नशे की आदत शुरू में थोड़ी देर के लिए अच्छा या राहत देने वाला लग सकता है, लेकिन लंबे समय में अक्सर नुकसान ही पहुंचता है। नशा सेहत को खराब करता है, कर देता है, पैसे की बर्बादी कर सकता है, पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते बिगाड़ सकता है, आदमी की सोचने और फैसला लेने की क्षमता को कम कर सकता है, आदत बनने पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने चंद्र प्रकाश जी, जब आदत बन जाती है तो उसे मुश्किल होता है छोड़ना। आपके इतने प्यारे से मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। दोस्तों भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं समय समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा छोड़ने में सहायता प्रदान करना है। हमारे युवा देश का भविष्य है, लेकिन नशे की गिरफ्त में आने पर उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है, जैसे कि पढ़ाई में कमी, आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और परिवार से दूरी। इसलिए युवाओं को खेल, संगीत, साहित्य और रचना गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। फिलहाल हम जोड़ रहे हैं आपको एक और ट्रैक के साथ।

दोस्तों एक और मैसेज हम तक पहुंच चुका है नईम अहमद जी का। ये मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि आज दिनांक 24 जून 2026 का आपके कार्यक्रम की थीम नशा मुक्ति है और नशा रूपी दानों से पूरे समाज, पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व निश्चित तौर पर प्रभावित होता है और हम सभी मानवों को नशे की दुष्प्रवृत्ति से बचना होगा, फिर चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे पान मसाला, सिगरेट अथवा शराब हो अथवा ड्रग्स इत्यादि कुछ भी हो, लेकिन बचना होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने नईम अहमद जी की, इन भी चीजों से हमें बचना ही होगा। और आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिक आर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं FM रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वन जीरो 2.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, और आज के प्रोग्राम की हमारी थीम है नशा मुक्ति। और इसी से संबंधित एक और हमारे पास मैसेज आया है नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। लिखते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ आजकल के युवा पीढ़ी के बच्चे नशे के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे कैसी संगत में जा रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ नशे की लत में घूमते हैं। पेरेंट्स को ऐसी संगतों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। नशा हानिकारक चीज़ होती है। और इन्होंने लिखा है साथ ही कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने भी सुपर हिट लग रहे हैं। नीलू शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे से मैसेज के लिए। और आपने जो आपने बताया है पेरेंट्स को कि वो ध्यान रखें अपने बच्चों का कि वो कैसी संगत में जा रहे हैं, बिल्कुल मैं भी कहती हूँ ये बात कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। और फिलहाल पहुँच रहा है आप तक ये ट्रैक।

बेलगाइज, यदि कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो चुका है तो उसे डिस्करेज करने के बजाय सहयोग की जरूरत होती है। परिवार का सहयोग, चिकित्सीय परामर्श, काउंसलिंग, योग और ध्यान, अच्छे दोस्त, खेलकूद और व्यायाम, ये सारे उपाय हैं जिनमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, नशा छोड़ना कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं।

दोस्तों, देश और दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे की लत को हराकर नई जिंदगी शुरू की। उनकी सफलता हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। नशा छोड़ने का निर्णय जीवन की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। दोस्तों, बातें जारी रहेंगी लेकिन इस ट्रैक के बाद।

पर नई जिंदगी शुरू की। उनकी सफलता हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। नशा छोड़ने का निर्णय जीवन की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। दोस्तों, बातें जारी रहेंगी लेकिन इस ट्रैक के बाद।

तो गाइस यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है तो उसका मजाक न उड़ाएं, उसे सहयोग दें, प्रेरित करें और सही मार्गदर्शन दिलाएं। नशा व्यक्ति की शक्ति को कमजोर करता है, जबकि संयम और सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आइए आज हम सभी ये संकल्प लें, स्वस्थ रहेंगे, जागरूक रहेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

चलते चलते दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और नशे से दूर रहिए, और सुनते रहिए FM रेनबो कानपुर को 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम है फीडबैक शो मेल मिलाप। तो मिलते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मेल मिलाप में, जो कि है हमारा फीडबैक शो। और आज के इस फीडबैक शो को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं मैं दीपशिखा गुप्ता और
1: ऋतु निगम।
0: तो श्रोताओं, 27 मई को आपने हमारे इस कार्यक्रम का पहला अंक सुना और उसके बाद आज 24 जून यानी कि महीने के चौथे बुधवार को 4:15 बजे फिर से हाजिर हैं मैं आपके सामने लेकर अपना ये कार्यक्रम।
1: तो दीपशिखा जी, सबसे पहले पत्रों के माध्यम से आई प्रतिक्रियाएं हम अपने श्रोताओं से साझा करते हैं।
0: बिल्कुल ऋतु जी, और चलिए आप ही शुरुआत करिए, देखिए कौन से पत्र आए हैं हमारे पास।
1: ये एक पत्र आया है मोहम्मद अहमद रायनी का। ये लिखते हैं कि दीपशिखा गुप्ता जी द्वारा डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र से की जाने वाली बातचीत इन्हें बहुत ही अच्छी लगी और गरिमा जी ने जितना भी कुछ कहा ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगा। और गरिमा जी ने फिल्म सज्जो रानी का जो गीत सुनवाया 36 साल बाद, ये भी इन्हें बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही ये लिखते हैं आगे कि दीपशिखा गुप्ता जी के साथ FM रेनबो से इन्होंने दीपशिखा गुप्ता जी का जो प्रोग्राम है हेल्थ मैगजीन, ये इन्होंने सुना और इन्हें ये कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम में खून में होने वाली बीमारियों के बारे में जो डॉक्टर साहब ने बातचीत की, ये भी इन्हें बहुत अच्छी लगी। साथ ही अतीक हुसैन सिद्दीकी जी को भी इन्होंने नमस्कार भेजा है और लिखा है कि बहुत दिनों के बाद इनकी आवाज़, अल्फाज और अंदाज़ इनसे मिलिए कार्यक्रम के ज़रिए इन्होंने सुनी और इन्हें बहुत अच्छी लगी जो बातचीत उन्होंने की, ये उन्हें बहुत अच्छी लगी। और उस दिन का जो विषय था वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा।
0: जी हाँ ऋतु जी, उस दिन का विषय था योग दिवस के अवसर पर इनकी बातचीत जो इन्होंने राहुल यदुवंशी जी से की थी।
1: जी,
0: और रायनी जी का ही एक पत्र हमको और मिला है जिसमें वो लिखते हैं कि आज यानी कि दिनांक 29 मई 2026 को हमने कुमार गौरव जी द्वारा पेश किए सारे कार्यक्रम सुने FM रेनबो के साथ और वो सब हमें बहुत अच्छे लगे। हमनवा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत शायर बशीर बद्र जी और बाबू जगजीवन जी से हुई और एक बढ़िया सी रेसिपी तक पहुँचा, ये कार्यक्रम इस रेसिपी तक पहुंचकर समाप्त हुआ। और इनका साथ दिया RJ रंजना यादव ने, रंजना यादव जी को भी इन्होंने नमस्कार बोला है और बोला है कि उनके द्वारा प्रस्तुत म्यूजिक आर प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगा। साथ ही रायनी जी लिखते हैं कि कानपुर केंद्र से जितने भी प्रोग्राम हम सुन रहे हैं वो सारे प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और आजकल सभी कार्यक्रमों में आलेख सभी अनाउंसर्स द्वारा जो किया जा रहा है, साउंड इंजीनियर्स की जो मेहनत है, प्रसारण अधिकारियों की मेहनत है और सभी की मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है क्योंकि बहुत ध्यान दिया जा रहा है प्रोग्राम्स की क्वालिटी पर। तो इतने सारे अच्छे अच्छे फीडबैक्स के लिए मोहम्मद अहमद रायनी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ऋतु, इसी क्रम में दो लेटर्स हमें और मिले हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगी। एक लेटर तो भेजा है हमें आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा जी और इनकी पूरी फैमिली ने और दूसरा लेटर हमें मिला है मुरादाबाद दौलतबाग से जाफर हुसैन और इनकी पूरी फैमिली की ओर से। दरअसल मैंने इन लेटर्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इन्होंने ये कार्यक्रम आपकी पसंद के लिए लेटर्स भेजे हैं और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम आपकी पसंद ईमेल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम लेटर्स को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर ईमेल के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ऋतु बता दीजिए क्या है हमारा ईमेल एड्रेस।
1: हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। इस पर आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं और पत्र के लिए हमारा एक प्रोग्राम जा ही रहा है ऑलरेडी, आपकी फरमाइश।
0: जी हाँ, जिससे आप अपने विविध भारती केंद्र कानपुर के माध्यम से 103.7 की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं। ऋतु, फिलहाल लेटर्स के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर दी हैं, मेल्स के माध्यम से भी बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिले हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए क्यों ना कार्यक्रम में पहले एक अच्छा सा गाना हमारे सभी लिसनर्स को सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: ऋतु, गाना सुनकर वापस आ चुके हैं अपने कार्यक्रम मेल मिलाप में, और क्यों ना मेल के माध्यम से जो हमारे फीडबैक्स आए हैं उन्हें भी पढ़ लिया जाए।
1: बिल्कुल दीपशिखा जी, और ये पहला मेल जो हमारे पास आया है ये है हमारे अमृत चौरसिया शाहपुर धनवा कर्नल गंज गोंडा से, इन्होंने लिखा है। ये लिखते हैं कि मैं आपके प्रिय स्टेशन FM रेनबो कानपुर का नियमित श्रोता हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रमों को नियमित सुनते हैं, हमें ईमेल करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और ये दूसरा ईमेल है हमारे पास गोविंद परमार का आया है। ये रेनबो कानपुर के सभी कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार आपको ईमेल कर रहा हूँ।
0: गोविंद जी, आपको भी ईमेल का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि यूं ही आप हमसे जुड़े रहें।
1: बिल्कुल। और ये एक और हमारे पास ईमेल है, संदीप कुशवाहा जी का है। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी कानपुर द्वारा अनुरोध गीत और पसंद आपके कार्यक्रम दोबारा चालू किया जाए।
0: संदीप जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि पसंद आपकी कार्यक्रम हमारा रेनबो पर चल रहा है, जिसका समय है शाम को 4 से 5, जिसे आप इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सुन सकते हैं। और अनुरोध गीत जैसा ही एक कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, जिसे आप हमारे विविध भारती केंद्र से सुन ही रहे हैं। फिलहाल इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये एक और है, ये है प्रिया का है मैसेज। इन्होंने लिखा है कि हेलो कानपुर को लाइव किया जा सकता है या नहीं।
0: आपको बताना चाहेंगे कि हेलो कानपुर पहले हमारे यहाँ से लाइव जाता था, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसे पुनः लाइव किया जाए, लेकिन उसके लिए कुछ तकनीकी तैयारियों की ज़रूरत होगी, तो थोड़ा सा समय दें और जुड़े रहें हमारे साथ। आगे मेल पढ़ना चाह रही हूँ मैं, ये मोहम्मद वकार जी ने की है, और इसमें लिखा है कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं और हमें बहुत पसंद आते हैं। मेल मिलाप प्रोग्राम शुरू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो कानपुर के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा, और आगे ये लिखते हैं कि मेल मिलाप प्रोग्राम हर हफ्ते कर दीजिए और 30 मिनट का कर दीजिए। खैर मोहम्मद वकार जी, आपकी ये सलाह बहुत अच्छी लगी हमको, और हम देखेंगे इस बारे में क्या कर सकते हैं। अगला मेल पढ़ रही हूँ मैं इशाक मोहम्मद जी का, इन्होंने लिखा है कि मेल मिलाप कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को हमारा आदाब, और आपको और आकाशवाणी कानपुर परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है, जो उस समय मनाया जा रहा था, और इन्होंने लिखा है कि हेलो कानपुर कार्यक्रम बहुत पसंद आया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद करने के लिए। मोहम्मद मूसा शेख भी लिखते हैं कि आकाशवाणी कानपुर के सभी प्रस्तुतकर्ताओं की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है, हर एक प्रोग्राम को हम दिल लगा कर सुनते हैं, आप हर प्रोग्राम में बहुत जानकारी देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर सीखने को तो हम लोगों को भी आपसे बहुत कुछ मिलता है, आपका इतना प्यार जो है हमारे साथ।
1: बिल्कुल।
0: और अगला मेल सतीश अनेजा जी ने लिखा है, और ये लिखते हैं कि रेनबो कानपुर के नियमित श्रोता हैं, शिद्दत से प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, विशेषकर गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक लगता है, जिसमें सुबह सुबह बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं जो सारा दिन सकारात्मकता बनाए रखती हैं। इसके साथ ही रविवार और सोमवार की शाम को हेलो कानपुर सुना, जो कि बहुत अच्छा लगा, ये मोहब्बतों का सिलसिला बरकरार रहे, यही दुआ है।
1: क्या बात है भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हम सबको।
0: और एक मेल और पढ़ना चाह रही हूँ ऋतु, ये अभिजीत गम्हाड़कर जी ने लिखी है, और लिखा है कि हम आपके नियमित श्रोता हैं, FM रेनबो को सुनते हैं, लेकिन हमारे मेल कभी कभी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं। देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते होंगे, बहुत ही मन से सुनते होंगे, लेकिन मेल चूंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास आते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे नाम ले पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे।
1: बिल्कुल। और हमारे जितने श्रोताओं ने आज हमें ईमेल किया है या पत्र लिखे हैं, उन सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं उन्हें। और दीपशिखा जी बताइए।
0: और ऋतु, जो नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो ऐसे जुड़ सकते हैं? ऋतु जी बताइए ना, आप क्या है ईमेल आईडी हमारे इस प्रोग्राम की?
1: इस प्रोग्राम की हमारी ईमेल आईडी है fmmelmilaap@gmail.com। मतलब fmmailmilap@gmail.com।
0: और जो श्रोता पत्रों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो किस एड्रेस पर अपने पत्र भेज सकते हैं ये भी बताएं।
1: बिल्कुल, हमारा एड्रेस है कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। हमारा नंबर है
0: जी, पिन कोड
1: हाँ, हमारा पिन कोड है 208002।
0: श्रोताओं, कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी और एड्रेस दोनों पर आप भेज सकते हैं, और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। और कौन कौन से और भी कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का अगला अंक आप सुन सकेंगे 22 जुलाई यानी कि जुलाई के चौथे बुधवार को।
1: बिल्कुल, और दीपशिखा जी, अब हमारी जो टाइम है वो बिल्कुल कह रहा है कि हम अपने प्रोग्राम से वाइंड अप कर दें।
0: बिल्कुल तो, रितु जी, और अब आप आएंगी ना थोड़ी देर में आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर।
1: बिल्कुल, और तो फिर मेल मिलाप कार्यक्रम से मुझे यानी रितु और
0: मुझे यानी दीपशिखा गुप्ता को
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।
0: इसको पहले बंद करके फिर वो चलाएंगे।
1: अरे इसको बंद करना पड़ेगा।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को और आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु निगम है आज आपके साथ।

जीत तो फिल्म का गाना अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें थी, समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइशें आई, हॉली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू, राजेंद्र सिंह, पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और परिवार के सभी लोग, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां की फरमाइश आई है। और आपकी पसंद प्रोग्राम में चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं दूसरा आदमी फिल्म का गाना, जिसे आवाजें दी हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, राजेश रोशन ने इस गीत को लिखा है और मजरूह सुल्तानपुरी ने संगीत दिया है। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आ चुकी हैं, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नभाकर, निर्मला विशाल, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी, दादरी गेट

भवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भिलाई गढ़ राजस्थान से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।

आपकी पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। प्रोग्राम में अब आ रहा है सत्या फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडेकर ने। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल ने। इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइशें आ चुकी हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगदाप, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा घोटके, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पू भाटिया, पोटिया कला दुर्ग से फरमाइश आई है संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू की।

शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जिया और दर्शन भाई, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश, सोनाली नारंग, खंडवा रोड सनावद से शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, मोइन शेख, योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सोनी, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से इनकी फरमाइश आ चुकी है, स्नेहा, सोनी, पीहू, मनु, आरती, फरहद, ये सभी आप सभी सुनना चाहते हैं अर्पण फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सोना फिल्म का गाना लीजिए सुनिए। आशा भोसले और डैनी की आवाजें हैं इस गीत में। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइशें आई हैं धनौरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद बेबियालिया, आयान नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, सुनना चाह है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हमारे पास फरमाइश आई है, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की। तो चलिए आप सभी की पसंद पर आप तक पहुंच रहा है काला सोना फिल्म का ये ट्रैक।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

आपके पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रही हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, और प्रोग्राम में अब आ रहा है डॉन फिल्म का गाना। किशोर कुमार की आवाज में अनजान ने इस गीत को लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइश आई है, चंडीगढ़ सिटी से सतीश और बिमला अनेजा, बीरशहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा अदिति, वैभव आकाश और प्रिया, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत, रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी।

अभ्यानंद परमानंद राज एस डी अंसारी आसमा खातून मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन संयम मुस्कान जीवीएम जैन आदि जैन अंश और भव्य जैन की फरमाइश आई है। और इसी के साथ फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं नासिर शेख नाजियान सिर साजिद शाहिद सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

0: आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे, यह बंबई नगरिया, तू देख बबुआ, यह बंबई
1: जाने दुश्मन। फिल्म का गाना आ रहा है अब आपके रेडियो और मोबाइल सेट पर। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं। वर्मा मिलक का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइशें आई हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। सराफा नगर जालंधर से जी आर पॉल और समस्त पॉल परिवार। और इसी के साथ चंडीगढ़ सिटी से सतीश, अनेजा, विमला, अनेजा, इनका नाम हम पढ़ चुके हैं एक बार। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। और इसी के साथ नूर नगर गंज डुंडवारा से उजमा शेख, शिफा शेख और रिफा शेख की भी फरमाइश आ चुकी है हमारे पास।

नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, सिया, आरती, अरुण धोगड़े, भाव साहब धोगड़े। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश आई है टेडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल, बिट्टा बजाज। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। इसी के साथ सप्तरंग श्रोता परिवार कुभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने, आप सभी की फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं हीरांजा फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। कैफी आज़मी ने इस गीत को लिखा है और मदन मोहन ने दिया है इस गीत के लिए संगीत।

आपकी पसंद प्रोग्राम के अंत में लीजिए सुनिए बरसात फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा गीत है और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशाही अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, आजाद अली।

पर रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता और गीता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार और ये आई है फरमाइश आप सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना ताई प्रणय हीरामन शिंदे ये आई है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से और इसी के साथ ज्योति मक्कार मन्नत मक्कार भरत मक्कार कमल सहानी पिंका वाला चौक गौराया जालंधर से इस गीत इन्होंने सुनना चाहा है। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूरत नेहा जैन दीपक मयंक मूरत और चेतन नाहटा की फरमाइश आ चुकी है। इसी के साथ मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी सुहेल हसन अब्बासी रसीद वारसी अनम अब्बासी अशफ अब्बासी सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी इशरत परवीन की फरमाइश आई है। साथ ही मूदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आपकी पसंद प्रोग्राम का ये है अंतिम ट्रैक।

प्रोग्राम टाइम हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो आपकी पसंद प्रोग्राम से अपनी दोस्त रितु को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है FM रेनबो कानपुर को। हमारा अगला

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात भी की। लखनऊ के अलीगंज स्थित जिस इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बिल्डिंग को अवैध करार दिया गया है। विभाग ने बिल्डिंग की दीवार पर आज नोटिस चस्पा कर 15 दिन में मालिक से जवाब मांगा है। उचित जवाब न मिलने पर इमारत को गिरा दिया जाएगा। इस संबंध में LDAVC प्रथमेश कुमार ने बताया कि 2016 में ही बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ था, बाद में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का ताजिकिस्तान के भारत में राजदूत लुकमोन ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। राजदूत ने इन पांडुलिपियों को अधिक लोगों, छात्रों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भविष्य में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी घोषणा की। रजा लाइब्रेरी के निर्देशक पुष्कर ने बताया कि यहां मौजूद कई पांडुलिपियां सीधे ताजिकिस्तान के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी हैं। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में मॉनसून आने में देरी हो रही है, इसकी वजह से ही मिला जुला मौसम बना हुआ है और प्रदेश की कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं कहीं भीषण गर्मी और लू चल रही है। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर मॉनसून आ सकता है। इसके बाद मॉनसूनी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। इटावा में आज रक्षा मंत्रालय के निदेशक अभिषेक चौहान अनुवेशी ने अपनी उड़ चल अपने देश नामक पुस्तक का विमोचन किया। श्री चौहान ने बताया कि यह पुस्तक युवाओं के लिए नैतिक अपील है, इसकी साथ ही साथ पर्यावरण और समाज के प्रति दायित्व को महसूस करें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम FM टॉप 10। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका, जिसे आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज पर। अगले कुछ घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। जी हाँ, आज शाम 8 बजे तक श्वेता हाजिर है ओनली ऑन FM रेनबो। फिलहाल तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल काउंटडाउन के लिए, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में स्पॉटलाइट उन ट्रैक्स पर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड रीमिक्स रील्स पर धूम मचा रहे हैं। तो चलिए भाई, इंतजार किस बात का, काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फ्रेश और पावरफुल ट्रैक के साथ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है इस वक्त ये सॉन्ग बहुत ही वायरल हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं ये सॉन्ग। उससे पहले आप भाई अपनी चाय वाय रेडी कर लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि बेहतरीन गाने आज प्ले होने वाले हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड 200.7 FM, धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जी हाँ, ये बेहतरीन सा सॉन्ग अभी जो आपने सुना है, जान से गुजरते हैं, दिस वॉज फ्रॉम द मूवी धुरंधर टू। और इतनी खूबसूरत आवाज भाई है खान साहब और शाश्वत सचदेवा की। जी फिलहाल हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर जो हमारे काउंटडाउन नंबर 9 पर है, पर उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसे ट्रैक का जो 3 दशकों बाद भी डांस फ्लोर्स की जान बना हुआ है। आप क्या सोच सकते हैं वो गाने कौन से हैं और मैं किस गाने की बात कर रही हूँ? देखिए, जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था तब इसकी बीट्स और जो ये स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, इसने यूथ को दीवाना बना दिया था। क्योंकि भाई आवाज किसकी थी? इसमें आवाज थी बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल जी की। जी हाँ, इन आवाजों से सजा ये अगला गाना आज भी उतना ही एनर्जेटिक लगता है और उतना ही हिट है जितना उस वक्त था। सो एफएम टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 9 आपके रेडियो सेट्स पर, स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों, बॉलीवुड में रिमिक्स कल्चर आज भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन कुछ ओरिजिनल सॉन्ग ऐसे होते हैं जिनका चार्म ना कभी कम नहीं होता। जैसे कि ये सॉन्ग अभी आपने सुना, तम्मा तम्मा, उन्हीं सॉन्ग्स में से है। तो फिलहाल इस पार्टी मूड को ऑन ही रखते हैं और वक्त आ गया है नेक्स्ट ट्रैक बजाने का। तो सॉन्ग नंबर 8 पे है, काउंटडाउन 8 पे है, ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर मूवी का ये एनर्जेटिक ट्रैक, जो कि आई एम श्योर जिम प्लेलिस्ट एंड पार्टीज दोनों में खूब पॉपुलर है। बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने भी इस ट्रैक को यूथ का फेवरेट बनाया हुआ है। तो FM टॉप 10 पर ये सॉन्ग ऑन नंबर 8, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। स्टे ट्यून्ड।

तो दोस्तों आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज हमारे एफएम टॉप 10 के काउंटडाउन्स में। और अभी तक तो मैंने बजाए हैं कुछ धमाकेदार मजेदार सॉन्ग्स, और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक है वो कॉलेज फेस्ट फेवल पार्टीज में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट ये उस जगह पे तो परफेक्ट फिट है, क्योंकि ये गाना है फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स, एंड यस ऑफ कोर्स लेट्स नाचो। गाना गाया है बादशाह और बेनी दयाल इनके वोकल्स में। ये सॉन्ग लेट्स नाचो फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स आज भी हमारी आपकी पार्टी प्लेलिस्ट का परमानेंट मेंबर है। तो चलिए सुनते हैं एफएम टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 7।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
3: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
2: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
3: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
4: धड़कन लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपने FM टॉप 10 शो में उन सुपर हिट्स की ओर जो 90s के दौर में ब्लॉकबस्टर्स थे। और इन सॉन्ग्स का मैं बता दूं आपको, इन जादू इतना था कि आज भी इन्हीं गानों का रिमिक्स वर्जन में इन्हें लॉन्च किया जा रहा है। आपने सुना ही होगा आजकल इतने न्यू वेब सीरीज आ रही हैं, न्यू मूवीज आ रही हैं, उनमें ये ट्रैक्स या ये साउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड ट्रैक्स कहीं ना कहीं रिमिक्स करके लॉन्च हो रहे हैं, बिकॉज ये थे ही इतने दमदार जबरदस्त। तो जी हाँ, अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब प्ले होंगे पावरफुल एवरग्रीन फेवरेट्स। जो अगला सॉन्ग आने वाला है ऑन सॉन्ग नंबर 6, ये है अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज में FM टॉप 10। So song number 6, aapke radio sits par. Enjoy and keep listening to 100.7 FM Shweta ke saath.

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना कोई जाए तो ले आए फ्रॉम द मूवी घायल। इतना खूबसूरत सा ट्रैक और अगला गाना भी आपके रेडियो सेट्स पर कुछ ही देर पर, जो है फ्रॉम द मूवी फिजा। याद है आपको ये मूवी? तो ये खूबसूरत सा गाना महबूब मेरे फ्रॉम द मूवी फिजा आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों अभी आपने सुना एक बेहतरीन सा गाना फ्रॉम द मूवी फिजा और ये आवाज थी सुनिधि चौहान जी की। जी हाँ, अगले कुछ गाने और भी बेहतरीन होने वाले हैं और आपको आपकी वेंसडे की शाम को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं। जो नेक्स्ट ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करूंगी वो है फ्रॉम द मूवी यादें। जी हाँ, ये मूवी थी ऋतिक रोशन की और गाना है जब दिल मिले। आई एम श्योर आपको इस मूवी का बैकड्रॉप भी याद आ गया होगा सुन के, क्योंकि है ही ये मूवी बड़ी खूबसूरत सी थी, आई और दिलों में छा गई थी, बड़ी प्यारी सी। सो स्टे ट्यून्ड और लुफ्त लीजिए एफएम टॉप 10 में। हमारा अगला सॉन्ग कुछ ही देर में आपके लिए ओनली ऑन 100.7 एफएम धड़कन लखनऊ की। स्टे ट्यून्ड विद श्वेता।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी

0: देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं एफएम टॉप 10 मेरे यानी श्वेता के साथ, और अभी हम पढ़ते हैं अपने सॉन्ग नंबर कौन से सॉन्ग पे. जी हाँ, हमारा सेकेंड लास्ट सॉन्ग जिसे हम कहेंगे सॉन्ग नंबर 2, क्योंकि इसके बाद आएगा हमारा टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 1. तो फिलहाल तो म्यूजिक लवर्स के लिए ये नेक्स्ट ट्रैक एक इमोशनल जेम से कम नहीं है. ये गाना जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, ये फिल्म बॉम्बे की म्यूजिक है, और अब लिसनर्स के दिलों में खास जगह ये रखता है सॉन्ग और बनाने आ रहा है रेमो फर्नांडिस की अनकन्वेंशनल वॉइस में. ये ट्रैक बन गया है हमारे एफएम टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 2, ओनली ऑन 100.7 एफएम. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.

हम्मा जी हाँ, ये ट्रैक हम सभी का फेवरेट है, चाहे ये पुराना वाला सॉन्ग हो या रिसेंटली एक मूवी में रिमिक्स वर्जन वाला। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं और अब बारी आ गई है नंबर वन सॉन्ग की, जिसने रिसेंटली जबरदस्त कमबैक किया है। जी हाँ, ये गाना इज नन अदर देन द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गुप्त का। यस, गुप्त का सुपरहिट ट्रैक दुनिया हसीनों का मेला, ये आपने रिसेंटली सुना होगा और बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। लगभग 3 दशकों बाद फिर से ट्रेंड कर रहा है और इस सॉन्ग को एक नया अवतार में रिसेंटली जो फीचर किया गया है उसके बाद ये ऑनलाइन वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरिजिनल सॉन्ग ने तो कुछ ही दिनों में इतने ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं जो ये लाखों के पार हो चुके हैं व्यूज। और एक पूरी न्यू जनरेशन को कहें तो इस सॉन्ग, मतलब एक न्यू जनरेशन ने सॉन्ग को डिस्कवर किया है। तो ये गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, हमारे टॉप 10 का नंबर 1 गाना गाया है उदित नारायण जी ने। जी हाँ, तो अब इंतजार किस बात का, इस टाइमलेस गाने को और भी पॉपुलर बनाते हैं और अपने टॉप 10 के नंबर 1 पे लाते हैं। सो आपके लिए ये सॉन्ग, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि हर जमाने में कुछ आवाजें ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं। ये वही सॉन्ग्स हैं जो मास हिट्स बन गए। जी हाँ, और आपके लिए ये गाना सिर्फ और सिर्फ FM टॉप 10 काउंटडाउन में, ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं श्वेता अब इजाजत चाहती हूँ, कुछ ही देर में फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सरकार निवेशकों को बेहतर आधारभूत ढांचा, सुशासन और सुरक्षित कारोबारी माहौल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बनेगा। लखनऊ में हालिया अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने भवन निर्माण से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन 2016 में मालिक ने व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया। इस पर एलडीए ने नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किए, हालांकि बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया, जिसकी उचित जांच नहीं की गई। मामले की आंतरिक जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना के बाद जालौन जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 संयुक्त जांच टीमों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित कोचिंग संस्थाओं की जांच की और मानकों की अनदेखी करने वाले दर्जन भर से अधिक कोचिंग सेंटर सील किए गए। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि जहां बचाव के पर्याप्त संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली, वहां के संस्थानों को सील किया गया है। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओबीसी समाज के इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई 2026 तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थाओं के चयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1 अगस्त 2026 से प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम के 7 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM।

0: शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है।
1: बारिश में भीगता सतर आया।
0: शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वेलकम बैक, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 6 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वक्त होता है शाम का जब आप एंजॉय करते हैं हमारा आपका शो, आपका प्रोग्राम शामी आवर्त। मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी। इस घंटे एक बार फिर से आपके साथ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके प्रोग्राम शामी आवर्त में, जहाँ लखनऊ की दिलचस्प बातें होंगी और यहाँ पे तो लखनऊ का दिल धड़कता है जी। हाँ जी, बात होगी तमाम अपडेट्स की और उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड 200.7 FM विद श्वेता।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: तो दोस्तों, अभी इतना खूबसूरत सा ट्रैक बज रहा था और उनमें हवाएं और मौसम की बात सुन के तो भाई मुझे भी अब इंतजार है कि कब वो आएंगे बादल, और यू नो बादलों की दस्तक कब शुरू होगी, और कब ये गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, कब हवा में नमी, आसमां में बादल और लखनऊ वालों का कब यू नो मानसून सजेगा। क्योंकि हमें भी भाई इंतज़ार होता है ज़बरदस्त बारिश का, जब हमारे लखनऊ बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, स्पेशली कैंट, हज़रतगंज और वो भीगी सड़कें, चाहे मरीन ड्राइव की हवा हो या गोमती रिवर फ्रंट में मौसम का लुफ्त उठाना हो, अपने अपने घरों में चाय पीनी हो पकौड़ों के साथ और फैमिली गपशप हो। लेकिन क्या करें, अभी तो फिलहाल गर्मी तो वही है, मौसम का अगर मिजाज देखें, अपडेट देखें तो वही 40-42 डिग्री सेल्सियस इसी यही चल रहा है फिलहाल तो, और देखते हैं हीट वेव की कंडीशंस तो भी लगातार जारी ही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कहा तो जा रहा है नेक्स्ट वीक तक मॉनसून की दस्तक होगी, भाई हमें तो इंतजार है एंड आई एम श्योर आपको भी बेहद इंतजार होगा। तो ठीक है, आप बस ये ध्यान रखिए कि जब भी घर से बाहर निकलें पानी साथ रखिए, और दिन में ज़रूरी ना हो तो धूप को अवॉइड करें, बच कर निकलिए। और भाई इस वक्त बच्चों और सीनियर सिटीजन्स का तो खास ध्यान रखिए, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, स्कूल्स भी खुलने वाले हैं और घर में इंसान रहते रहते थोड़ा बोर होने लगता है, तो ऑफकोर्स शाम को निकलते हैं, सुबह खेलिए कूदिए निकलिए घूमिए, बट दोपहर में थोड़ा अवॉइड करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। फिलहाल हम भी आपका ख्याल रखते हैं और बढ़ते हैं अगले प्यारे से गाने की ओर। 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ श्वेता के साथ।

0: selling. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तो दोस्तों इस वक्त 6:24 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शामी आवाज। और फिलहाल मैं आपको ट्रैफिक अपडेट दे देती हूँ। तो इस वक्त क्योंकि ऑफिस आवर्स चल रहे हैं और इस वक्त जाहिर सी बात है कि बहुत ही रश हो जाता है और सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं ऑफिस से, स्पेशली हजरतगंज, सिकंदरबाग चौराहा, पॉलीटेक्निक, शहीद पथ और गोमती नगर

एक्सटेंशन के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी 7-7:30 बजे तक काफी बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो एक्सपेंशन जो है हमारा चल रहा है और इसके चलते काफी रूट्स पर काम चल रहे हैं और अभी भी ये कन्वीनियंट ऑप्शन है। थोड़ा स्लो मूवमेंट हो सकता है मगर कोई बात नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है अब रूट के ट्रैफिक को अवॉइड करना और ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सो घर से निकलने से पहले आप या ऑफिस से निकलते वक्त आप जरा ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं उसको जरा चेक कर लीजिए, वो प्लान कर लीजिए कि किधर से निकलना इस वक्त बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जिस इलाके में हैं और खासकर जो भी मैंने नाम बोले इन इलाकों में हैं तब तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक। और डेली कम्यूटर्स हैं तो मेट्रो आपके लिए, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। फिलहाल देखिए ट्रैफिक चलता रहता है, सब चलता है, बट दूरियां आपको मिटानी होती हैं जब निकलना होता है किसी से मिलने या घर की ओर, तो दूरियां किस बात की। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं सॉन्ग ये दूरियां।

दोस्तों अभी जो आपने सॉन्ग सुना ये दूरियां है ना, कितना खूबसूरत सा ट्रैक। इसके जो बैकड्रॉप में जो रेलवेज का ट्रेन का जो जिक्र है, जब ये सॉन्ग प्ले होता है हमारी इमेजिनेशन में वो पूरा प्ले होने लगता है। एंड आई एम श्योर आपको भी याद होगा इसकी वीडियो में कैसे कितनी खूबसूरती से हमारे इंडियन रेलवेज और जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स के कुछ कुछ बाइट्स दिए गए हैं, लाइक कैलकाटा एंड ऑल। सो इतना खूबसूरत सा इन्होंने इसको इंक्लूड करके एज अ एलिमेंट जो सिनेमेटोग्राफी की है बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक पुराने दौर का एक जैसे सिलसिला उन्होंने जो दिखाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। इसी के साथ मुझे याद आया कि मैं आपको रेलवेज अपडेट भी दे दूं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियां मना के वापस आ रहे हैं। तो फिलहाल लखनऊ जंक्शन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक ब्लॉक वर्क के चलते कुछ ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म टर्मिनल के रूट बदलने के समय समय पर बदल रहे हैं, और इसके चलते आपको ये करना है कि इंक्वायरी आपकी जो भी जिस भी ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं आप जरूर चेक कर लीजिए, या फिर NTES जो ऐप है उस पर अपने ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस चेक करके ही निकलिए, तो ये बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। और साथ ही साथ एक और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जीबिशन के बारे में, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अभी टाइम है और ये एग्जीबिशन जो चल रही है बहुत ही खूबसूरत सी हमारी लखनऊ की तहजीब और यहाँ की कला को एकदम बरकरार रखते हुए वो एक एग्जिबिट कर रहे हैं। तो शहर में चल रहा है इस वक्त 18th इंटरनेशनल मुहर्रम आर्ट एग्जिबिशन, और ये जो एग्जिबिशन है ये कला प्रेमियों के लिए खास अट्रैक्शन बना हुआ है। तो मैं ये बता दूं ये 5 दिन से चल रहा है और अभी मेरे ख्याल से ये फ्राइडे तक चलेगा, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है वन वॉइस ट्रस्ट और एट द स्टेट ललित कला एकेडमी, हमारे जो ललित कला एकेडमी है लखनऊ केसरबाग में वहाँ पे। तो आप ज़रूर शाम को वक्त निकालिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ विजिट करिए, बिकॉज देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया चीज़ें हैं, स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड हैं फोटोग्राफी में या फिर पेंटिंग्स में और साथ ही साथ कैलीग्राफी। तो क्योंकि मेन बात यह है कि यहाँ पे कई देशों से आर्टिस्ट आए हुए हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 68 कैलीग्राफी यहाँ पे एग्जिबिट की गई हैं, अराउंड 70 फोटोग्राफ्स एग्जिबिट किए गए हैं, पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा 30-32 पेंटिंग्स को एग्जिबिशन में लगाया गया है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड जो क्यूरियस हैं जो देखना चाहते हैं डेफिनेटली आप जाइए देखिए इस एग्जिबिशन को और एनालाइज करिए, क्योंकि ये

के आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ अपने कंट्री, अपने सिटी, अपने स्टेट को ही नहीं, डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर. और आर्ट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज. सो मुझे पता है हमारे शहर में बहुत से कला प्रेमी हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं ऐसे एग्जिबिशंस में जाना. तो मौका भी है, दस्तूर भी है, बिल्कुल जाइए इससे पहले कि ये एग्जिबिशन ओवर हो जाए. और उससे पहले हम भी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर. और भाई ये गाना मैं इसलिए प्ले कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ ये शाम, ये वक्त आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और थोड़ा सा रूहानी हो जाएं. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं

0: साथ शाम बेहद दिलकश और रोमानी होगी, एक चांद, कुछ किताबें और तेरी मेरी कहानी होगी।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप। डियर रेनबो लिस्ट

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

नए प्रोग्राम शामियावंत श्वेता के साथ। तो दोस्तों, हमारा शहर, आपका शहर और मेरा शहर लखनऊ, इसकी पहचान सिर्फ नवाबी अंदाज नहीं बल्कि बदलती हुई अर्बन आइडेंटिटी भी है। आपको लगता होगा, आप जरूर इस बात से इत्तफाक रखेंगे, क्योंकि जहां हमारे शहर में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कई स्तर पर कई तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, चाहे वो कैफे कल्चर हो या फिर आप इवेंट्स हों, स्पोर्ट्स इवेंट्स हों, फूड फेस्टिवल्स हों, वीकन कम्युनिटी इवेंट्स हों, इतनी ढेर सारी चीज़ें तो हमारे शहर में होती रहती हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को लेकर भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे शहर में आ रहे हैं उन पर काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ना शहर की तस्वीर और भी बेहतर होगी, और ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे यू नो प्रोग्राम्स हमारे शहर को और बेहतर बनाएगा, स्पेशली एक यू नो बुनियादी कनेक्टिविटी के स्तर पर, क्योंकि मेट्रो में भी जैसा मैंने बताया काफ़ी बड़े तौर पर काम चल रहे हैं न्यू कॉरिडोर्स को लेकर। और इसी के साथ साथ, क्योंकि देखिए हमारा शहर बड़ा ही यूनिक शहर है और यहाँ पे एक हमारी एक जो हमारा कल्चर, हमारे रूट्स, चाहे वो फूड कल्चर की बात हो या एक टेक्सटाइल कल्चर की बात हो, फिर यूथ भी आजकल इतना ज़्यादा एक्टिव है कि पोइट्री कल्चर की बात हो, हर तरीके से लखनऊ इज़ सो रिच। तो जाहिर सी बात है कि हमारा शहर अब फिल्म मेकिंग और वेब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, और ये जितनी भी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंसी एरिया, चाहे वो केसर बाग वाला एरिया हो, गोमती रिवर फ्रंट में लगातार आप देख रहे होंगे कि शूटिंग चल रही है, फिल्म मेकर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं ये जगहें। तो सिटी का जो कल्चरल बैकड्रॉप है, इसकी वजह से यहाँ कई स्तर पर शूटिंग्स और इस तरीके की एक्टिविटीज एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का ट्रेंड इस चीज को लेकर। आपको नहीं लगता हमारा शहर लखनऊ, आप देखते होंगे किसी ना किसी सीरियल के बैकग्राउंड में या किसी मूवी के बैकग्राउंड में जब वो दिखता है तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, राइट? तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये हमारा फर्ज है कि हमें अपनी सिटी को बहुत ही अच्छे से रखना, क्लीन रखना, ध्यान रखना और थोड़ा सा सिविक सेंस जरूर अच्छे से फॉलो करना। तो भाई ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा तो यहाँ पे ड्यूटी है कि आपकी शाम को और बेहतर बनाऊं। मेरी ड्यूटी पे मैं अमल रहूंगी और आपके लिए और खूबसूरत से ट्रैक्स ला रही हूँ सिर्फ 100.7 FM मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप सुनकर रिलैक्स करिए, मजे कीजिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM विद श्वेता।

दोस्तों, इसी के साथ आज के शामी अवध का सफर यहीं तक। याद रखिए, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, उन लोगों से बनते हैं जो उसकी कहानी को रोज जीते हैं। लखनऊ की तहजीब, उसकी मुस्कुराहट और उसका अंदाज हमेशा यूं ही कायम रहे। मैं हूं श्वेता, आपसे इजाजत चाहती हूं। खुश रहिए और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। कुछ देर में हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में सोमवार को आग लगने की घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण में वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाई जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक बलदेव पूर्ण प्रकाश ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के लाखों रेहड़ी पटरी और पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडे ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। संत कबीर नगर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए कमिश्नर व डीआईजी बस्ती ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने दौरे को सफल सुव्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बलिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत स्वावलंबन कैंप एवं सहकर्मी सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कैलों जोडा ने रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में महत्वपूर्ण है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM।

तो दोस्तों 7:03 का ये वक्त है और आप बने हैं श्वेता के साथ, तो प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम। भाई ये प्रोग्राम है जहां आप भी चाह रहे होंगे कि हमारा भी फोन लग जाए आज, जी हाँ, और हमारी भी फरमाइश पूरी हो जाए। तो भाई बिल्कुल होगी, अगर आपका फोन लगेगा तब ना। भाई नंबर तो आपके पास है, आपको बस डायल करना है, फोन घुमाना है। तो देखिए नंबर मिलाइए, हम बैठे हैं आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए, और जरूर आपकी फरमाइश पूरी होगी, आपकी रिक्वेस्ट हम आपके चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो 7:04 का ये वक्त, मैं हूं श्वेता, एक बार फिर से आपके साथ आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए, आपका फोन अटेंड करने के लिए। तो भाई देर किस बात की, शुरू हो जाइए, लग जाइए, उठाइए फोन और लगा दीजिए हमारा नंबर।

0: नर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: हीरो है हीरो 1983,
3: राइट? जी।
2: ओके, तो किस किस को सुना रहे हैं आपको गाना?
3: जी बिल्कुल, आपके लिए डेडिकेट रहेगा।
2: थैंक यू।
3: और आप ही के यहाँ पे अलका जी है, उनके लिए डेडिकेट रहेगा।
2: ओके
3: जी। और हमारा ग्रुप बनाया हेलो फरमाइश एक्टर ग्रुप, उनके सभी श्रोता के लिए। और हाँ, एक उत्तर प्रदेश के हमारे दोस्त है मिंटू तिवारी जी।
2: जी जी, ओके,
3: उनके लिए रहेगा। और एक है उत्तर प्रदेश से ही ओमकार जी।
2: ओके, तो भाई आपके सभी चाहने वालों के लिए और आपके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। और हम जानते हैं आप हमारे काफी पुराने लिसनर हैं, हमें अक्सर कॉल करते हैं, हम तक पहुंचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर। आप सुनते रहिए और हम आपके लिए ये गाना प्ले कर रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। सो एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM धड़कन,
3: थैंक यू सो मच,
2: लखनऊ की। ओके, बाय बाय।

0: हाँ जी दोस्तों, हमारे साथ देखिए कॉलर्स काफी जुड़ रहे हैं और अभी फिलहाल जो कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उन्होंने आज उनका फोन पहली बार लगाया और इस बात को वो सुन के बहुत ही एक्साइटेड थे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, उन्हें लाइन पर लेते हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैम बहुत बढ़िया।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश, विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा, कहा दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
3: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है, और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
2: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
4: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, के क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
5: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com के साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में FPO राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा

0: करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
1: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
2: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR की तैयार होनी है जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दोस्तों 7:30 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो FM। तो न्यूज ब्रेक से पहले ये फरमाइश हुई थी, जो गाना अभी आप सुन रहे हैं, इन्होंने पंजाब से हमें कॉल किया था आपके लिए ये गाना।

0: तो दोस्तों इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम और 7:35 हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ काफी कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं, अभी हम एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्होंने फरमाइश की है, और उससे उनकी फरमाइश पर जाने से पहले चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने हमें कहाँ से कॉल किया है। हेलो
1: हेलो, वेरी गुड इवनिंग सुवेता मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं?
1: मैं यासिर अमित जी, मैं यासिर अमित बात कर रहा हूँ मियांगंज उन्नाव से।
0: हाँ जी यासिर जी, बताइए।
1: मैं तो बहुत अच्छा, आप बताओ।
0: मैं भी बढ़िया। आप

0: फरमाइश की है और उससे उनकी फरमाइश पर जाने से पहले चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने हमें कहाँ से कॉल किया है। हेलो,
1: हेलो, वेरी गुड इवनिंग सुवेता मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसे
1: मैं
0: हैं आप?
1: यात्रा में जी मैं यात्रा में बात कर रहा हूँ मियांगंज उन्नाव से।
0: हाँ जी यासिर जी, बताइए।
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ।
0: मैं भी बढ़िया। आप ने हमें कॉल किया, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, मुझे याद है जी। तो आपकी
1: 3 मंथ हो
0: फरमाइश।
1: गए तब बात हुई थी और जब से अब बात हो रही है आपसे।
0: अच्छा जी, आपको ये भी याद है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बढ़िया। अच्छा आप बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है और आपकी
1: जी
0: फरमाइश
1: मुझे
0: किस तक पहुंचानी
1: जी
0: है?
1: मुझे उमंग मूवी से सॉन्ग सुनना है। गाने के बोले तूने एक पल के लिए प्यार से देखा मुझको, कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति जी की
0: जी
1: आवाज में।
0: बिल्कुल,
1: जी एक दो नाम है ले लें।
0: हाँ बिल्कुल।
1: नीलू शर्मा दीदी हैं रूपपुर चंदेला उन्नाव से, और अमीन भैया हैं गंगागंज लखनऊ से, और रोशनी दीदी हैं चंडीगढ़ से।
0: ओके, तो आपके
1: और आप
0: सभी
1: भी मैम?
0: थैंक यू सो मच, आपके सभी चाहने वालों और
1: ओके
0: फैमिली फ्रेंड्स के लिए ये गाना। टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय, कीप लिसनिंग टू 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से जिन्होंने हमें कॉल किया है, और जानते हैं वो कौन सा सॉन्ग प्ले करवाना चाहते हैं, उनकी फरमाइश क्या और किन किन तक वो ये अपना गाना पहुंचाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी। देवगली अहमदुल बाजार बारामती से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं मैम
0: अच्छा जी, आप हमारे रेगुलर लिसनर्स में से हैं।
1: जी।
0: हाँ जी, तो जल्दी से बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है और किन किन तक
1: जी
0: अपनी
1: मैम,
0: फरमाइश पे
1: फिल्म का
0: जाना।
1: नाम है बादल और गाने के बोल हैं यार मेरे यारा मेरे यारम, और मैम डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को।
0: जी बता दीजिए जल्दी जल्दी
1: सबसे
0: ना।
1: पहले मैम आपको
0: ओके थैंक यू।
1: और कुलदीप गुप्ता है डोली बाराबंकी से, सुरभि सिंह है सीतापुर से, मोहम्मद फैजन साहि रामपुर कटरा से, और नवनीत मौर्या जी, शिवप्रकाश तिवारी जी, साहिबा अंसारी जी, समा परवीन अंसारी जी हैं।
0: लिस्ट बहुत लंबी है। चलिए आपके सभी चाहने वालों और फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए ये सॉन्ग हमारे स्टूडियो से आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे
1: जी मैम,
0: ट्यून्ड,
1: थैंक यू, बाय
0: यो मोस्ट वेलकम एंड बाय बाय। चलिए एंजॉय
1: बाय
0: करते
1: मैम।
0: हैं आपकी फरमाइश और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन 107 FM मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जी बिल्कुल, 100.7 FM ने चुराया है आपका दिल और धड़कन दोनों ही। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर की ओर, क्योंकि हमसे जुड़ चुके हैं एक और कॉलर और वो फरमाइश कर रहे हैं बेहतरीन से गाने की। चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनका नाम और जानते हैं उन्होंने कहाँ से कॉल किया है, किन तक वो अपना सॉन्ग पहुंचाना चाहते हैं। हेलो,
1: सभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, अपना नाम बताइए।
1: मैम रजनीश चौरसिया, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ से।
0: अच्छा रजनीश जी, आप हमारे क्या रेगुलर लिसनर हैं?
1: बिल्कुल मैम, आपके रेगुलर लिसनर हैं और महीने में 4-5 कॉल तो लग ही जाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा जानकर। आप बता दीजिए आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे और फरमाइश किन किन तक पहुंचानी है।
1: मैम फिल्म है राधा का संगम और गाने बोल हैं दो बोल कह के, मोहम्मद तालिब जी हैं, और इसके अलावा अकबर अच्छी चौकंडी 12 से रिंकी पिंकी जी हैं, और जितने लोग तो ना सभी से हैं।
0: ओके ठीक है, आपका गाना मैंने क्यू कर दिया है और आपके लिए ये आपकी फरमाइश मैं होप करती हूँ पहुंचे आपके फैमिली फ्रेंड्स और चाहने वालों तक, और आप इंजॉय
1: धन्यवाद मैम।
0: कीजिए। यस बाय बाय, आप इंजॉय कीजिए ये बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों 7:55 हो रहे हैं, कुछ ही देर में 8 बज जाएंगे। और चलिए अब वक्त हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। आपसे मैं अलविदा लेती हूँ और मुझे इजाजत दीजिए, फिर जल्दी मिलूंगी आपसे किसी दिन प्रोग्राम लेकर। तब तक सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM धड़कन लखनऊ की। और आपको मैं छोड़ जाती हूँ एक खूबसूरत से प्यारे ट्रैक के साथ, इस उम्मीद में कि हम जल्दी मिलेंगे। और इंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने से मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार के बीच आवागमन न केवल तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक होगा, बल्कि यह पूरा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद बागपत ने बड़ौत क्षेत्र में गढ़ी खत्री में बिना अग्निशमन विभाग की NOC संचालित 17 कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि निरीक्षण में कई संस्थानों में गंभीर खामियां पाई गईं, सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं। UPTET 2026 की परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य में के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

का वक्त आप सुन रहे हैं आबशार आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी मेजबान रिचा के साथ। न जाने कौन सी धड़कन है जो चलती है मेरे सीने में, न जाने कौन सी धड़कन है जो चलती है मेरे सीने में, तेरा नाम लेती हूँ तो एक रोशनी सी होती है जीने में।

अब इसे मोहब्बत का जादू कहें या क्या कहें, जब भी कभी दिल किसी केश की गिरफ्त होता है ना, तो फिर नहीं करता जमाने की परवाह, नहीं फर्क पड़ता उसे कि लोग दुनिया में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे। शायद अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता, वो तो बस हो जाता है किसी की राहों में जैसे मजबूर हो जाता है, और फिर दिल से यही आवाज़ आती है कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, बस दिल से दिल को राह जो हो जाती है। 8:21 का वक्त, आप शायर आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी मेजबान रजा के साथ।

गजल में इश्क लिखते हैं तो चाहत सांस लेती है, गजल में इश्क लिखते हैं तो चाहत सांस लेती है, हमारी धड़कनों में खुद तुम्हारी मोहब्बत सांस लेती है।

सबके साथ मोहब्बत का कुछ ऐसा ही हश्र हो ये हमेशा जरूरी नहीं होता। कई बार दिलों से दिलों की राह होती है, मोहब्बत को उसका मंज़िल की मंजिल मिली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप अपनी मोहब्बत की अगर बात करें तो हाँ, हमें और आपको हमारी मोहब्बत की मंजिल मिलती है। रात के 8:41 का वक्त हो चुका है, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मोहब्बत के सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे। दीजिए आपकी मेजबान ऋचा को आबशार से इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और 9 वापस हाजिर होंगे हम लेकर आपके लिए आपका शो पॉप टाइम। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल

0: में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: We had 26 delegates from
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा

0: दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSK अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज

0: उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and fraternity.
1: Fugitive diamond merchant Nirav Modi has been directed by a UK court to pay over $11 million to the Bank of India. The ruling was delivered by the High Court in London. Justice Simon Tinkler held that Modi is liable under a personal guarantee linked to a loan extended to a Dubai-based firm, Firestar Diamond FZE. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. We have a report.
2: Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 8 paise to close at 94 rupees and 66 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.9% lower at 1,44,050 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
1: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Farmers and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम को सुनकर पता ही नहीं चलता सच बताऊं पता तो हमको भी नहीं चलता कई ऐसे घंटा हो जाता है बस आपके साथ ये वक्त बीत जाता है सोचते हैं अच्छा ये वाला गाना बजाना था अरे वो तो रह ही गया लेकिन चलो फिर भी बच जाते हैं बहुत सारे गाने और आपने हमें हमेशा की तरह कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल लिखा दिल से धन्यवाद आपके इतने खूबसूरत प्यारे भरे प्यार भरे ईमेल के लिए एक ईमेल और उसके बाद गानों का सिलसिला ठीक है राम राज जी का ईमेल है और हमेशा की तरह आपने हमें जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से आपका ईमेल भेजा है आपके साथ रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु रामचरण बजरंगी काका सब हैं और सबसे पहले आपकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आपने हमें भेजा आशीर्वाद दी भेजा है दिल से आपका धन्यवाद गाने सुपरहिट होते हैं आपका कार्यक्रम रोज सुनते हैं फरमाइश अच्छा फरमाइशी गाना ये नहीं है आपको मालूम है रामराज जी हैं लेकिन फिर भी मतलब कहना जरूर है चलो कोई नहीं क्या पता किसी दिन कहते ना गुहार लगाते रहो किसी दिन तो पुकार सुनी जाएगी अच्छा करते हैं बहरहाल 9:16 का वक्त हो चुका है पॉप टाइम इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर एंड यस आपकी दोस्त आपके रुचा के साथ और अगला गाना हमने भेज दिया है आपको आपके रेडियो सेट्स पर तो चलिए इस गाने के साथ मिलाइए ताल से ताल और ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर है मुझे आपके खूबसूरत प्यार भरे ईमेल्स का इंतजार

हाँ, बस बस बस बस थक गए होंगे, थोड़ा देर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगर आप लगातार डांस करते रहेंगे मेरे साथ तो भैया फिर कैसे। हाँ बिल्कुल, डांस करने वाली बात है, लेकिन जरा थम थम के करेंगे ना, तो ज्यादा आप डांस और अच्छे से कर पाएंगे। 9:00

27 मिनट का वक्त हो चुका है, वापस आपके साथ आपके ईमेल्स को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। यकीन मानिए मस्ती का ये जो मौका है ना, माहौल है ना, आपके ईमेल्स भी बिल्कुल वैसे ही मेरे पास है। राजकमल यादव जी का ईमेल है मेरे पास, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से है, लिख रहे हैं प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चल रहा है, 20 मिनट चला गया है इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा रुक गया है, सुन नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगल बगल वालों से पूछ लीजिएगा, आपको सारी खबर मिल जाएगी क्या था कैसा रहा। और आपने लिखा है कि आपके साथ आपकी वाइफ संगीता यादव, सावन कुमार यादव, अर्चना भाभी पकड़ियापुर से सुन रहे हैं। तो सबसे कहिए बस पकड़ के रखें रेडियो को अपने ढंग से, क्योंकि इतनी तेज तेज से गाने बज रहे हैं, ऐसा ना हो कि गिर जाए नीचे उछल कर आपका रेडियो भी, है ना, तो ये भी जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए, आपने हम तक पहुंचाया, दिल से धन्यवाद आपका। बबीता राव आ चुकी है मेरे साथ, क्या लिख रही है बबीता? लिख रही है आपको आपका गजलों का आपशा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम में तो आपका जलवा रहता ही है, एकदम झक्कास गर्दा उड़ाने वाला, और रजनीगंधा तो सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट होता है, पढ़ के बड़ा मजा आया, रोज से कुछ अलग था इसलिए मुझे लगा मुझे पढ़ देना चाहिए, है ना। लिख रही है कि यूं तो मैं हजारों लफ्ज आपकी तारीफ में कह दूं तो भी कम लगते हैं, शायद इस कायनात में वो लफ्ज ही नहीं जो आपकी तारीफ में बयां कर सकूं। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, रोज से हटकर है। और आपने लिखा है कि आपके साथ आपके आपका जो प्रोग्राम है, रजनीश भाई, विनीता दी, रोशनी वेक और रवि भैया, लॉन वाले सोम, रवि शंकर भैया, पिंटू और सीटू सब सुन रहे हैं, राधा भाभी, खुशबू भाभी और हेलो भाभी हैं, और हर्षवर्धन सब एक साथ सुन रही है। हेलो भाभी नाम थोड़ा समझ नहीं आया हमको, सब लोग सुन रहे हैं साथ में। आपने लिखा है, अच्छा इन सबको मैंने स्पेशली बोला है कि ऋचा दीदी, ऋचा मैम को सुनो। वाह क्या अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपने हमारी सिफारिश कर दी, भाई सुन लो, दिल से धन्यवाद आपका। और आपने ईमेल किया बबीता, इसके लिए भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। बेबी कला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से है, बेली कला से है आप हमारे साथ, दिल से धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। वकील अहमद साहब आ चुके हैं, क्या लिखते हैं, चलो पढ़ दें, आवाज आपको अच्छी लग रही है, दिल से धन्यवाद है इसके लिए भी, चलो कम से कम किसी लाइक तो हुई हमारी आवाज। आपने लिखा पॉप टाइम आपको अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, और इस समय गर्मी, हाँ गर्मी तो देखिए बहुत जबरदस्त है, थोड़ा पानी वानी का इनटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि अभी तो गर्मी है फिलहाल, बारिश के आसार हैं, लेकिन जब तक अभी नहीं आ रहे तब तक तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। और आपने हमें कटका हथूरी जिला सीतापुर से लिखा है, और आपके साथ साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ शाह सिद्दीकी और अमन नवाब भी हैं। अमन ने आई भी बड़ी देर से आती होंगी, वो भी थोड़ी देर में अपना ईमेल लेकर हमारे पास। अरविंद कुमार दुबे जी का भी ईमेल आ चुका है, ग्राम धर्मदेवा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। लिख रहे हैं आपके एंकरिंग का अंदाज भाई हमें तो बेहद पसंद है, तो दिल से आपका धन्यवाद ये लिखने के लिए, आपने जिस अंदाज में लिखा ना भाई हमें तो बेहद पसंद है, तो हम भी कह रहे हैं भाई बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। और आपने लिखा है कि हम सभी रेनबो लखनऊ के सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, मौसम में उमस है, आपकी संगीत से कुछ उपाय कीजिए तो कुछ राहत मिले। मेरे ख्याल से हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी राहत मिल सके, कितना सफल हो रही है बता दीजिएगा वापस हमें, ठीक है। अरविंद, गोविंद, प्रतिमा, दीपा, प्रतिष्ठा, तन्वी, श्याम कुमारी हैं हमारे साथ, थैंक यू सो वेरी मच अरविंद जी आप कितने खूबसूरत प्यारे से ईमेल के लिए। मोइनुद्दीन अंसारी भी हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और हुस्बा अंसारी लखीमपुर खीरी से, अच्छा अच्छा अच्छा आपने मोइनुद्दीन साहब की ईमेल आईडी से आपका ईमेल भेजा, चलो कोई नहीं पहुंच गया। कमल पांडे जी का ईमेल, ग्राम मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल है। और आप रमाकांत विश्वकर्मा बिल्डिंग वाले मोहलिया कला, ओम प्रकाश भार्गव जी हैं, सुरेश जायसवाल भी हैं और सहदेवा हैं, आप लोग सारे लोग मिलकर प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, दिल से धन्यवाद आप सभी जो जुड़े हैं कीमती वक्त लेकर देकर। हाँ क्योंकि ये नहीं, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हमें कौन सुनेगा, बात सही है भाई, देखो सीरियस बात है जो है वही बता रहे हैं आपको। विनीत कुमार जी का भी ईमेल आ चुका है, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाली रिचा बहन जी को गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि का शत शत प्रणाम स्वीकार करें। और लिखा है जो हंसती तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे पता है आप ये कहकर मुझे वापस हंसा देते हैं ना। और सुरीली मीठी बोली सुपर हिट, आप आती हैं तो बाहर आती है ये, देखो जो अच्छी लाइन होती है उसको हम पढ़ देते हैं, छोड़ते नहीं उसे वापस, कुछ नया जब दिख जाता है तो जरूर पढ़ देते हैं। और आपने लिखा है कि आपके दोस्तों के नाम कहाँ हैं, ये आजाद सिमरी से, ओमकार अतरौली सीतापुर से है, सुरभि सीतापुर से है, शर्मा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, और वीरपाल पट्टी अतरौली से है, ममता हरदोई से है, संजय अतरौली से है, रिंकी पिंकी रायबरेली से है, नवनीत हरिकेश लखनऊ से है, और मोहिनी हरदोई से। अब ठीक है मेरे ख्याल से मैंने सारे नाम ले लिए हैं, बाकायदा जो जगह आपने मेंशन करी है उसके साथ भी। मोनू सेठ जी वापस आ गए, मतलब वापस क्या आ गए, अभी तक नहीं आए थे अब आ गए। लिख रहे हैं कैसन है, तो उम्मीद है कि हम ठीक हैं।

आपको लग रहा है, आपने लिखा उम्मीद है बहुत नीक हुई, हाँ अंजू बहन आई तो पता चला कि आप भी आ जाएंगे क्योंकि जोड़ी साथ साथ चलती है। देखो बाद में दम है भाई ये, और ये कुछ ऊपर वाले का कर्म भी है, हो जाती हैं चीजें, ऐसे आप लोग दिल से चाहते हैं तो ऐसा कुछ हो भी जाता है। बट हम अच्छे हैं, शुक्रिया हाल चाल पूछने के लिए। मोबाइल में नेट खत्म हो गया था, लिख रहे ईमेल मेल नहीं भेज पाएंगे, अरे भेजा तो है आपने, पर 11 बजे तक साथ रहेंगे वादा है मेरा। 12 बजे तक हम रहते हैं तो 11 बजे तक का क्यों, 12 बजे तक का साथ निभाइएगा, ठीक है। मनीष गुप्ता जी है, और आपने गुस्साई से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम शिमला में सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, जबरदस्त प्रोग्राम, बेहतरीन सॉन्ग, शुक्रिया धन्यवाद। वहां का मौसम कैसा जरा बताइए, यहाँ तो भाई बड़ी गर्मी है, लोग परेशान है इस गर्मी से, उम्मीद करती हूँ कि वहां थोड़ी राहत जरूर होगी। एक ईमेल और लेते हैं फिर गाने की तरफ चलेंगे, ठीक है। अरविंद आनंद तिवारी जी हैं, लिख रहे हैं वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं, जो दिया रात भर रोशनी देता है सुबह होते ही लोग उससे भी बुझा देते हैं, अब है कुछ ये दस्तूर क्या किया जाए, आसमान में सूरज निकल आता है फिर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। बट एनीवेज आपका ईमेल आया, आपने लिखा है दारुकुइया मल्लावा हरदोई यूपी से, जबरदस्त प्रोग्राम, जब कोई सी बात लिखता है तो हम उसको तेज कर देते हैं, ये देखो धन्यवाद। एक ईमेल और लेते हैं, ठीक है। अमित बहेलिया जी का ईमेल है और आपने लिखा नमस्कार बाराबंकी से हूँ, सॉन्ग मस्त है, शुक्रिया धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। अमित जी आगे भी ईमेल कीजिएगा और कुछ अच्छा और अपने बारे में बताइएगा, अच्छा लगता है जब आप सब जुड़ते हैं, अपनी बातें हम तक रखते हैं। तो 9:33 का वक्त, पॉप टाइम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी अपने 107 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी आरजे ऋचा के साथ। चलिए गाना अगला दे रहे हैं, गाने को एंजॉय कीजिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।

तो रात के 2:29 का वक्त हो चुका है। गाना पता आपको मैंने क्यों बजाया, क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा प्यारा सा ईमेल खुला हुआ था, जिसको देखने के बाद मेरे भी जो है मुंह से निकल गया वाह। जानते हैं ईमेल किसका है? ईमेल भेजा मुझे डॉक्टर सुमित कुमार चौहान जी ने जसपुर उत्तराखंड से, और जो बात इन्होंने लिखी ना बड़ी प्यारी सी बात है। लिख रहे हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, जहां हर बात में एक अलग ही अदा है, यहां की हवा में भी शायरी घुली है, ये शहर नवाबों और अदब का गढ़ है। आपने लिखा कि आप कोई भी चैनल सुन रहे हो, रेडियो से जुड़ा हुआ कोई भी चैनल सुन रहे हो, जो भी हो, लेकिन जब बात शाम की है तो सिर्फ लखनऊ के नाम है ये शाम। चाय की चुस्की के साथ गूंज रही है कोई पुरानी गजल और दिलों में धड़क रही है सिर्फ लखनऊ की हलचल, और ये जो चैनल है ये है सिर्फ और सिर्फ आपका अपना 100.7 FM। क्या बात है! इसको लिखने के बाद जब इन्होंने मुझे भेजा, इसको पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि मेरे मुंह से वाओ निकलना तो बनता ही था। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इतने प्यारे खूबसूरत ईमेल के लिए और इतनी खूबसूरती के साथ ये बताने के लिए कि 100.7 FM रेनबो का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अगले ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। लिखने में प्रोग्राम के साथ मैथ के प्रश्नों को झूम झूम कर हल कर रहा हूं। अरे भैया बड़ा जिगरा आपके अंदर, एक तो गणित के सवाल भी आप झूम झूम के हल कर रहे हैं। आपको शायद पता हो गणित में बड़ा थोड़ा मतलब मामला हमारा सही नहीं है, 20 में 00 मिले थे किसी दौर में तो भाई ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात है कि आप झूम झूम कर सवाल हल कर रहे हैं, वो भी गणित के। चलो अच्छी बात है, ईश्वर करे आप ऐसे ही यूं ही ना मतलब ये करते रहे, आपकी गणित ऐसे ही अच्छी बनी रहे। आपने लिखा है, मैं सौरभ प्रजापति उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से हूँ, और वेलकम और शुभ संध्या के साथ लहजों की मलिका, आशा है कि हर दिन की तरह आज भी आपकी तबीयत चकाचक है। वैसे मुझे लगता तो ऐसे ही है, बाकी आपको सुनकर कैसा लग रहा बता दीजिए। कह रहे लिख रहे हैं तभी तो कहूँ, आते आते करंट लगने वाला गाना बजा रही हूँ। कुछ लाइन लिखी है पढ़ लो। वो आईना थी मेरी जिसको देखने पर खुद ब खुद सवर जाता था मैं, वो आईना थी मेरी जिसको देखने के बाद खुद ब खुद सवर जाता था मैं, वो रूह थी मेरी जिसे एहसास कर खुद को भूल जाता था मैं। बहुत प्यारा सा ये आपने भेजा है लाइक में लिख करके, और जिनके लिए भी लिखा है दिल से लिखा ही है तो दिल से धन्यवाद आपका। अगला ईमेल किसका है मेरे पास? सुल्तान रजा जी वापस आए, लिख रहे हैं, अरे अपने ईमेल में एक बार लिखना भूल गया था, वो थी रॉकिंग रिचा अपी कैसी आप वही हम सोचे सुल्तान रजा साहब का ईमेल मुझे कुछ छोटा सा क्यों लग रहा है, कुछ कम क्यों लग रहा है, तो उसमें ये मिसिंग था। चलो आ गया। शैलेश कुमार उर्फ यानी कि नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से आ चुकी हैं। रजा दी को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। 21 को मिसले नहीं सुन पाए थे कि अच्छा आप कहीं गई हुई थी, कोई बात नहीं आज सुन लिया, अच्छी बात है। और आपने लिखा यासिर भैया, रोशनी बबीता, गुलफसा सिद्दीकी, दीपशिखा, दीपू दीदी, पीहू को नमस्कार। तो मेरी तरफ से नमस्कार पहुंच चुका है, आपने लिखा है, धन्यवाद उसके लिए आपके ईमेल के लिए। और अगला ईमेल किसका है? एमके राज जी का ईमेल मेरे पास है। मुनेश कुमार राज हैं और आपने हमें भानपुर हरनवा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल लिख रहे हैं। एवरी प्रोग्राम इज अनमैच्ड, इयर्स हैव पास्ड लिसनिंग टू यू, योर प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज एक्सलेंट। रुचा मैम थैंक यू सो वेरी मच, आगे पढ़ने से बोल दूं पहले बोल दूं, योर वॉइस मेक्स अ नाइट इवन मोर ब्यूटीफुल, लिसनिंग टू यू हैज बिकम अ वंडरफुल हैबिट फॉर मी। देखो कितनी अच्छी बात आपने लिखी, मैं क्या कहूँ, ये लाजवाब उसके बाद हो जाते हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते, हम क्या आपसे कहें, बस धन्यवाद कह सकते हैं। आपने लिखा कि प्लेइंग ग्रेट सॉन्ग्स, कोशिश कर रही हूं पूरी कि हाँ आप तक अच्छे गाने पहुंचा सके। आपने लिखा विल कीप लिसनिंग टू एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए मुनेश कुमार राज जी। ऐसे ही अपने प्यारे जो आपके मन के भाव है ना हम तक पहुंचाते रहा करिए, हौसला बढ़ जाता है हमारा। मुजम्मिल शेख साहब आ चुके हैं, लिख रहे हैं लिस्टिंग फ्रॉम जुबली हिल्स हैदराबाद तेलंगाना। क्या बात है, देखो इसी बात पे खास लिखा कारले वाली बात आ गई। और आपने लिखा गाने एकदम मस्त बज रहे हैं, प्रोग्राम में बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है मैडम जी। शुक्रिया मुजम्मिल शेख साहब, आपका ईमेल भेजा आपने इसके लिए। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से है मेरे पास, लिख रहे हैं, अरे भैया सब लोगन का हमारा

राम राम, का हाल चाल है सबका? मेरे ख्याल से जितने सुनने वाले लोग हैं सबके हाल बिल्कुल बढ़िया चका सके हैं, तभी सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप मेरे हाल चाल पूछना चाहते हैं तो हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। आपने लिखा बहुत बढ़िया, बारिश हुई है हमारे यहाँ, है यहाँ तो अभी फिलहाल नहीं हुई है, उम्मीद है कि हो जाएगी। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम ऐसा कहा जाता है। लिख रहे हैं अउरी मौसम के साथ भैया प्रोग्राम ने चार चांद लगाई दी। क्या बात है, मतलब ये आपने पॉप टाइम में ना सुगंध माटी वाला तड़का लगा दिया। बता देंगे आपकी प्यारी जो अंजू शुक्ला मैम है ना, जो आपके लिए लेकर आती है सुगंध माटी की, हम कह देंगे यहाँ भी एक ईमेल आया था सुगंध माटी के नाम से, फिर हम बताएंगे कि कैसा रहा उनका रिएक्शन। ठीक है, तेज बहादुर यादव जी का भी ईमेल है और आपने लिखा रॉकिंग ऋचा जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बहुत शुक्रिया तेज बहादुर जी, लिखकर इतनी खूबसूरती से हमें एड्रेस करने के लिए। बहुत गजबो गजब बोली है आपकी और गाने तो एकदम नाचने वाले बजाती, पर क्या करें हम तो भी दुकान पर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। रजनीगंधा का भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, सुनेंगे जरूर, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा और जो कोशिश हम सब करते हैं वो पूरी हो जाती है इसी बहाने आप सबके रहने से। और आपने हमें गांव मऊ शरकी जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल भेजा, दिल से धन्यवाद। आप लिख रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है ना, इतनी दूर दूर से भी लोग सुनते हैं भला ऑडियोज़ ऑन AIR ऐप का, और जो ऑनलाइन आप हमसे जुड़ जाते हैं उसका, है ना, कितनी अच्छी सारी चीजें हो जाती हैं कई बार लाइफ में। नेक्स्ट ईमेल है मनीष गुप्ता जी का। मनीष जी शायद आपका ईमेल मैंने शामिल किया था, बट कोई बात नहीं, आपने लिखा अच्छा मौसम कैसा ये पूछा था मैंने, तो आपने दोबारा मेल किया है और लिख रहे हैं मौसम इतना मस्त है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति ने चारों तरफ AC लगा दिया। देखो कितनी अच्छी बात है ना, नेचुरली आपके शिमला में AC वाला माहौल है, हम लोग तो अभी तरस रहे हैं गर्मी के मारे, सब परेशान है। कोई नहीं, यहाँ भी बहारें आएंगी, फिलहाल आप उसका मजा लीजिए। स्वतंत्र सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं और लिख रहे हैं प्रोग्राम इज माइंड ब्लोइंग। देखो बजा दिया हमने तेजी से ये वाली बात, जब कोई ऐसा कुछ बढ़िया लिख देता है तो हम ये कर देते हैं। और आपने लिखा है योर प्रेजेंटेशन इज आल्सो हाईली अप्रिशिएबल, दिल से धन्यवाद, कीप रॉकिंग। आपने हमें लिखा है सीतापुर सफीपुर उन्नाव से आपका ईमेल है, बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी आपके ईमेल के लिए। मिराज अली साहब हैं, लिख रहे हैं मैं कह रहा हूं, अच्छा हैदराबाद तेलंगाना से आप कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? रहने वाले हैं झंडे राज जिला लखीमपुर खीरी की और जीमेल अपनी मॉम को डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरा नमस्ते दुआ सलामन को कहिए। लिखने हजार गम है फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ। जब हंसती है मेरी माँ तो सारे गम भूल जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो माँ के चेहरे पर खुशी हंसी बना के रखिए, उनसे बेहतर तो कुछ होता नहीं है, है ना। और आपने लिखा है कहाँ से आपका ईमेल आ चुका, अच्छा गाने की फरमाइश आपने की है तो मैं बता दूँ कि रिक्वेस्टेड शो नहीं है, 2 से 3 दोपहर में एंड शाम को 7 से 8 यहाँ पर आपके रिक्वेस्टेड गाने सुन सकते हैं। सत्यम पाल जी हैं रिफतपुर जिला मुरादाबाद से और कार्यक्रम मस्त चल रहा है, कंपनी ऑडिट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जानता हूँ कार्यक्रम फरमाइशी नहीं लेकिन अगर हो सके तो। चलिए आपने भेज दिया है, हम इसको नोट कर लेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हो तो फिर आपके जो गाने आप हमको यहाँ लिखकर अभी भेजते हैं उन्हें किसी दौर में हम आप तक पहुंचा सकें, है ना। और अभी क्या है कि 9:46 का वक्त, गाना आप तक दे रहे हैं, गाने को इंजॉय कीजिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना 107 FM रेनबो आपकी दोस्त।

वैसे तो हम इस गाने के बाद एक और गाना बजाने की मूड में थे, लेकिन 9:50 हो चुके हैं, ईमेल से बड़े सारे मेरे पास, तो मुझे लगा कि वापस आपके ईमेल तक आ जाना चाहिए। विजय पाल यादव जी का ईमेल वापस आया, लिख रहे हैं कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति अच्छी है, इसलिए दोबारा ईमेल करने पर मजबूर हो गया। आपके यहाँ मेहमान आए हैं, सभी के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, वो सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद हमें सुनकर तारीफों के 2 शब्दों तक पहुंचाने के लिए। और आपका ईमेल हमेशा है जिला लखीमपुर खीरी से, शुक्रिया धन्यवाद ईमेल के लिए। शर्नीलू जी आपका ईमेल, इतने सारे आप नाम लिखती हैं, मैं कई बार बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं। दीप शिखा जी हैं, तो वापस उनका नाम आप तक पहुंचा दिया है हमने, उम्मीद करती हूँ अब उनका नाम उन तक सही से पहुंच गया होगा। हाउस दीक्षित जी, यानी के हमेशा की तरह अनिल कुमार दीक्षित जी हैं, जब इस दरवाजे को नॉक करो ना तो अंदर से वही निकलते हैं। और लिख रहे हैं, आज मैं सोच रहा था कि आप शायद आज आए, क्योंकि दिन में आई थी परसों, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है इस वक्त। और लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों ईमेल करने से खुद को रोक नहीं पाता, तो मेरा भी सवाल आपसे है कि आप ये सोचते ही क्यों है कि आपको खुद को रोकना है, हमें तो आप सबके ईमेल्स का इंतजार रहता है। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम सोच रहे हैं कि ईमेल करें कि ना करें, तो कैसे काम चलेगा, समझा करिए, तो आप ईमेल किया कीजिए, ठीक है ना। और आपने हमें LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ से आपका ईमेल हर बार की तरह भेजा है, पहुंचाया। दीपिका शर्मा जी हैं और लिख रही हैं, हेलो मैम, सुपर डुपर शानदार जबरदस्त प्रोग्राम, काफी दिनों बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है, आपने लिखा और मूड फ्रेश हो गया, अच्छा लग रहा है हमें ये पढ़ के कि आपको ऐसा लगा और जो कोशिश हमने की है वो सक्सेसफुल हो रही है, और क्या चाहिए हमें, है ना, कीप इट अप, आपने लिखा है, बहुत शुक्रिया दिल से, धन्यवाद आपका। कहाँ से आपने लिखा था ये नहीं बताया, अगली बार जब दोबारा हमें ईमेल भेजे ना तो बताइएगा कि अच्छा रायबरेली से मिल गया आपका नाम, बहुत शुक्रिया दीपिका जी प्यारे ईमेल के लिए। मिराल यासिर मियागंज उन्नाव से आ चुके हैं और लिख रहे हैं, मुझे डांस करना नहीं आता, एक बार सच बोलूं तो ठीक है, कौन कह रहा है कि प्रॉपर डांस करिए, दो एक हाथ उठाकर ऐसे डांस कर दीजिए, बोलिए हाँ हमने डांस कर लिया, तो जो प्रथा है डांस करने की वो भी रह जाएगी, हमारी बात भी रह जाएगी, और लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि आपको डांस करना नहीं आता, समझा करिए। आपने लिखा है कि आपको अगर हम खाने तो बिना देर किए मियागंज चले आओ, तो देखो अभी तो भाई नहीं आ पाएंगे, जो वो सही बात है बिल्कुल, 12 बजे तक हम यही है ना, पूछना आपका फर्ज था तो हमने बता दिया कि मेरी ये मजबूरी है, आपका फर्ज था मेरी ये मजबूरी है, बाकी जब फुर्सत होगी तो हा हा हा जो आपने लिखा है ना तो हम भी आएंगे, ठीक है। शुक्रिया ईमेल के लिए। राधे श्याम जी का ईमेल और लिख रहे हैं कसन कासगंज से।

और मास्टर राधेश्याम शाक्य हैं. गुड इवनिंग, शुक्रिया. और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस. थैंक यू सो वेरी मच राधेश्याम जी आपके प्यार भरे ईमेल के लिए. अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं और आपने हमें रायपुर उडारा मितौली से आपका ईमेल भेजा है. गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, करम, मेहरबानी. एंड दिग्दर्शन गौर जी भी हैं और लिख रहे हैं ईमेल के माध्यम से फरमाइश आप कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है दिग्दर्शन जी. दोपहर में 2 से 3 और शाम को 7 से 8, ये 2 ऐसे वक्त हैं जब आपके गानों को जो आप रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें आप सुन सकते हैं. कहां से भेजा आपने ये मुझे बता दें. मेरठ स्कैन से आपका ईमेल है. शुक्रिया आपके ईमेल के लिए. अगला ईमेल किसका है मेरे पास, ये भेजा है मुझे रूबी श्रीवास्तव जी का ईमेल है और लिख रहे हैं कि मैं पहली बार इस शो को सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. रूबी अगली बार भी सुनिएगा, मेरा वादा है आपसे और उम्मीद भी है कि आपको आगे भी ये प्रोग्राम उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा आपको अभी लग रहा है. जानते हैं अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि आप सब जब जुड़ जाते हैं तो अंदर से उत्साह आता है, वो उत्साह ये फिर बढ़िया वाले गाने आप तक पहुंचा ही देता है. चलिए गाना और दे रहे हैं, इस गाने को एंजॉय कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ. 9:54 का वक्त है फिलहाल ये गाना. अब आपने इतनी अच्छी बारी सारी सारी बातें करी हैं तो कहते नहीं उस दिल पे छुरियां ना चलें, कैसे हो सकता है. लीजिए गाना सुनिए.

तो जानते हैं गाना किसके लिए बजाया, यासिर साहब के लिए। उन्हें डांस करना जरा कम आता है ना, तो हल्के फुल्के स्टेप्स के साथ एक दो ठुमके लगा लीजिए तो मन भी शांत होगा और लोगों को लगेगा कि आपको डांस भी करना आता है। क्या समझे आप?

रोशनी जी ने वापस ईमेल किया, लिखा इन्होंने आपने मौसम का हाल पूछा था तो 9 बजे से लाइट नहीं है चंडीगढ़ में, गर्मी का प्रचंड रूप है, सुन के अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते, मौसम है ये।

बस आपके दिलों को ऐसे ही फड़कने और धड़कने दीजिए। रात के 9:56 का वक्त हो चुका है। फिलहाल पॉप टाइम को वाइंड अप करने की है बारी, तो दीजिए आपकी दोस्त आपकी उर्जा को आज के पॉप टाइम से इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले घंटे भी हम रहेंगे आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं रजनीगंधा। और आपको पता है कि आपका रहना हमेशा हमेशा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके बिना कहाँ कोई जर्नी पूरी होती है ना, जानते हैं ना। तो चलिए फिलहाल दीजिए रिचा को इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ। बट हम मिलेंगे अभी ठीक 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपके

नमस्कार। रात के 10 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत रोड शो में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी व स्पीड का 3S मॉडल बन चुका है। उद्योग के लिए तीनों आयाम सबसे महत्वपूर्ण हैं, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेमिसाल कनेक्टिविटी, पारदर्शी प्रशासन और संस्थाओं का बेहतर नेटवर्क नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। स्किल्ड टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेंडली पॉलिसी, कुल मिलाकर एक संपूर्ण इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के नए यूपी में मौजूद है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में 17 जून से 26 जून तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक व्यापक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के 66 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू निषेध एवं नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नाव के नवाबगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 53 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक दवाएं प्रदान की गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं की समय रहते पहचान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। सहारनपुर के गांव सावंतखेड़ी में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से दो महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो घर में भट्टियां सुलगाकर बड़े पैमाने पर अपमिश्रित कच्ची शराब तैयार कर रहे थे। छापेमारी के दौरान 610 लीटर अवैध कच्ची शराब, 800 लीटर लहन, 5 किलोग्राम यूरिया तथा शराब बनाने में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: तो रात के 10:05 का वक्त, धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का स्वागत।

रात ढलती रही चांद चमकता रहा, रात ढलती रही चांद चमकता रहा, दिल में उनकी यादों का चिराग जलता रहा। ये इश्क है या रजनीगंधा का कोई जादू, ये इश्क है या रजनीगंधा का कोई जादू जो बिना कुछ कहे भी हवाओं में महकता रहा। तो रात के 10:09 और कुछ सेकंड्स और खूबसूरत से चांद को वापस एक बार साथ लेकर फिर से आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपके चाचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम रजनीगंधा में। वो रजनीगंधा जहाँ दिलों के गलियारों से आती है बहुत मीठी सुरीली मोहब्बत भरी बातें, जो कभी कुछ कहकर और कभी सुनकर मुकम्मल कर जाती हैं हमारी आपकी मुलाकात को आसमान में धीरे धीरे चलते उस चांद के साथ। तो चलिए उस चांद का साथ लेकर, आपकी हमारी मुलाकात की बात लेकर रजनीगंधा के सफर को हम बढ़ाते हैं आपके साथ। और आप जानते हैं हमेशा की तरह आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो ये सफर पूरा होगा और शिद्दत से पूरा होगा। तो गुजारिश, इल्तजा कि आप इस सफर में रहें मेरे साथ।

जब कभी गहराई से सोचती हूँ ना, तो लगता है कि वाकई ये बहाने भी कितने जरूरी है ना जिंदगी में, क्योंकि अगर ये बहाने नहीं होते तो आपकी और हमारी मुलाकातों के फसाने कैसे बनते। वैसे भी लोग कहते हैं कि मुलाकातें जरूरी होती हैं, वरना लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। इसीलिए मुलाकातों के दौर में बहाने और वो फसाने बेहद जरूरी हैं। वो फसाने जो जिनसे गुलजार होते हैं आपकी हमारी मुलाकातों के ऊंचे सिलसिले हैं ना, जिनने बसी मोहब्बत के फूल अपनी खुशबू से दिल के आंगन को महका जाते हैं कई बार। जिक्र जब भी हुआ मोहब्बत का, जिक्र जब भी हुआ मोहब्बत का, हमने खुद को खुश नसीब पाया। जिक्र जब भी हुआ मोहब्बत का, हमने खुद को खुश नसीब पाया। तेरी यादों का रजनीगंधा दिल में आंगन में महकता पाया। रात के 10:14 का वक्त, रजनीगंधा का सफर आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

तो रजनीगंधा इस फूल की जब भी बात आती है ना, तो यकीन मानिए ये महज एक फूल नहीं बल्कि मिसाल है मोहब्बत की पाकीज़गी की। लोग कहते हैं कि मोहब्बत शोर मचाती है अक्सर, पर मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहब्बत तो रजनीगंधा जैसी होती है, खामोश, सफ़ेद, सादगी से भरी, जो रात के सन्नाटे में चुपचाप बस अपनी महक को बिखेरती है। जैसे चांद अपनी चांदनी से धरती को चूमता है, वैसे ही ये फूल अपनी खुशबू से कहीं रूह को छू लेते हैं और फिर फिजाओं में बिखरती है एक आरज़ू हवाओं के साथ किसी के आने की, जैसे हर बार हमें आरज़ू रहती है आपके आने की। मध्यम सी हो गई हैं धड़कने आज फिर, मध्यम सी हो गई हैं धड़कने आज फिर, आज फिर उसका ख्याल छू गया मुझे।

सच है ये बात, आसमान में जब तारों की बारात चलती है, ठंडी हवाएं जब चांद का साथ लेके साथ चलती हैं, तो यकीनन दिल में ऐसी आरजुओं का पलना बहुत जाहिर सी बात होती है। घड़ी की सुइयां जैसे ही एक दूसरे से मिलती हैं, शहर की रफ्तार कहीं थम सी जाती है। खिड़की से बाहर अगर जाकर देखें तो एक मध्यम सी चांदनी जैसे पूरे आसमान को गले लगाई बैठी हुई लगती है। रात की खामोशी, ठंडी हवाओं का रुख, ये सब मिलकर जैसे दिल के किसी कोने में सोई हुई यादों को, उनके एहसास को जगा देते हैं, किसी आरजू को जगा देते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे ये रात खुद हमसे कह रही हो कि चलो मोहब्बत के

सफर पर चलते हैं। वो मोहब्बत का सफर जो शुरू होता है रजनीगंधा के उस गलियारे से, जिसे हर रात 10 बजे हम और आप मिलकर यहाँ जीते हैं।

मौसम खूबसूरत हो, हम सफर दिल का हो, तो फिर कैसे कोई मोहब्बत के रास्तों पर चलना नहीं चाहेगा। वैसे कहते हैं कि मोहब्बत का सफर भी बहुत अजीब है ना, इसके के लिए ना किसी गाड़ी की जरूरत है ना किसी टिकट की, बस एक ख्याल, एक चेहरा और बंद आंखों में तैरते हुए

कुछ हसीन लम्हे। जब बाहर ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हों तो दिल किसी के साथ बिताए उस वक्त को ढूंढ ही लेता है, उन पलों को कहीं ना कहीं वो खोज कर ले ही आता है, तब जब बातें कम थीं और खामोशियां ज्यादा, जिनमें सिर्फ नजरों से इजहार होता था और दिल की धड़कने पूरी दास्तान कह जाती थी। तभी तो शायद वो कह बैठे कि दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, क्योंकि ये राज सिर्फ नजरें ही समझ पाती हैं, वही कह पाती हैं, और दिल उन्हें बहुत खूबसूरती के साथ अपने अंदर सहेज पाता है। यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है ना।

यादें, क्योंकि ये दिल से निकलने वाले किस्से हैं जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचते हैं और उस राज को दो दिल ही समझ पाते हैं। तो जैसे ये दिलों के राज गहरे हैं ना, वैसे ही अगर इस रात को भी देखें ना, तो इस रात की गहरी खामोशी में भी कहीं एक राज सा नजर आता है। रात की इस गहरी खामोशी में भी एक अजीब सा जादू नजर आता है। दिन के उजाले में हम भागते रहते हैं, भागते फिरते हैं जिंदगी की तलाश में, मगर अजीब बात है ना ये कि जिंदगी हमें तब मिलती है जब हम इस रात के सन्नाटे में कहीं अकेले बैठते हैं, खुद से बातें करते हैं। और फिर उस वक्त ये खामोशी ही है जो हमें बताती है कि ठहरना भी कितना जरूरी है। और इसी ठहराव के बीच जब कभी ठंडी हवा का कोई झोंका खिड़की से बाहर आता हुआ अंदर आता है ना, तो यकीन मानिए वो सिर्फ हवा का झोंका नहीं होता, बल्कि अपने साथ किसी की याद को भी लेकर आता है। और तब समझ आता है कि जिंदगी और कुछ नहीं, बस प्रेम का एक अंतहीन सफर है, जिस सफर पर दो दिल एक दूसरे के हम सफर बनकर चलते चले जाते हैं, जैसे हवा और खुशबू, जैसे पंख और परवास, एक दूसरे के साथ बस उस सफर पर चलते चले जाते हैं।

पर तभी तो मैंने आपसे बात कही कि अगर हम सफर दिल का हो तो रास्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं, और फिर वो सफर जिस सफर पर दो दिल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, वैसे जैसे पंख और परवाज, जैसे हवा में बिखरी खुशबू, तो यकीन मानिए वाकई उस वक्त वो सफर फिर कहीं जैसे एक अंतहीन सफर की तरह ही लगता है। और जब ये खुशबू सांसों से होती हुई दिल तक पहुंचती है तो सिर्फ महज खुशबू नहीं होती, बल्कि वो खुशबू जो यादों के बंद दराज को भी खोल देती है कहीं जाकर। और बात जब यादों की हो तो कहते हैं कि यादों का सीधा ताल्लुक तो मोहब्बत से ही है, वो मोहब्बत जो दिलों में पलती है बहुत सारे अफसाने लेकर, बहुत सारे जज्बात लेकर, कभी कुछ तल्ख तो कभी कुछ मीठी सी याद लेकर। कुछ खटकता है पहलू में मेरे रह रह कर, कुछ खटकता है पहलू में मेरे रह रह कर, अब खुदा जाने दिल है मेरा या है याद तेरी।

तभी तो कहती हूँ कि यादों का सीधा ताल्लुक मोहब्बत से है, वो मोहब्बत जो वाकई उन्हें नसीब होती है जो खुशकिस्मत होते हैं। हालांकि लोगों को कई बार ऐसा भी लगता है कि मोहब्बत क्या है, वो तो कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो मोहब्बत क्या चीज़ है। पर वो ये नहीं जानते कि मोहब्बत कोई चीज़ नहीं जो ढूंढने से मिल जाए, ये तो वो एहसास है जो तब जागता है जब चांदनी रातों में कहीं किसी झील के साहिल से उठती हुई ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ किसी की याद का अक्स दिल के आईने में उतर जाता है। याद आया कुछ, कोई लम्हा, कोई पल जब किसी पल कहीं चांदनी रात में किसी को देखा था और उसके बाद वो अक्स हमेशा हमेशा के लिए दिल में कहीं उतर सा गया, नजरों में कहीं बस सा गया। और जब भी कभी ऐसा होता है ना, उस वक्त आसमान से बरसती उस चांदनी के नूर और रात की तन्हाई में मोहब्बत फिर कोई कहानी नहीं रह जाती, यकीन मानिए वो किसी इबादत की तरह हो जाती है, वो इबादत जिसे आप हर पल जीना चाहते हैं। खामोश रात के पहलू में सितारे सो गए, खामोश रात के पहलू में सितारे सो गए, चांदनी के साए में हम तुम खो गए, ठंडी हवाओं ने जब चुपके से कान में कुछ कहा, ठंडी हवाओं ने जब चुपके से कान में कुछ कहा, हम फिर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हो गए। तो चलिए एक बार फिर से याद कीजिए उसी चांदनी रात को जब किसी वक्त किसी दौर में किसी को देखना और फिर उसका अक्स सीधा दिल में उतर जाना।

ऐ सनम, जैसे चांद के रोशन होने से ये रात है, जैसे चांद के होने से रोशन ये रात है, हाँ तेरे होने से मेरी जिंदगी में भी वैसी ही कुछ बात है। बेशक तुझे चांद सी सूरत दी है उस खुदा ने, बेशक तुझे चांद सी सूरत दी है उस खुदा ने, लेकिन मेरी मोहब्बत में भी कुछ अलग ही बात है। रात के 10:54 का वक्त और ये खूबसूरत सा नगमा आप दिए रेडियो सेट पर।